हम बोल रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना।

ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना अपनी रेडियो दो शशि।

बोल रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना।

0: 91.2 मेगाहर्ट्ज पर ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे थे भक्ति संगीत आराधना अपनी रेडियो दोष शशि के साथ। तो श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला
1: 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ए तुहां सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। जी श्रोताओं, कन तुहां सारे कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक अपनी रेडियो दोस्त रुचिका कन्ना।

तुहां सारेयां दा अपना सामुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला कने श्रोताओ तुहां सारे इस कार्यक्रम सुनण दे माटी दी महक तां सुणदे ना कार्यक्रम दा अगला गीत तुहां सारे इयां ही बनी रहा कने सुणदे रहा रेडियो गुंजन धर्मशाला गूंज अपने बंदी।

92.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये तोहा सारे दा अपना पसंदीदा रेडियो गुंजन धर्मशाला कनेक्शन तोहा सारे अपने पसंदीदा कार्यक्रम सुना दे जिसका नाम है माटी दी महक। सुन दिन कार्यक्रम दा अगला गीत।

तुहां सारेयां दा अपना सामुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला कनिष्ठो तुहां सारे इस कार्यक्रम सुनने दे माटी दी महक ता सुनदे न कार्यक्रम दा अगला गीत तुहां सारे इयां ही बनी रिया कने सुनदे रिया रेडियो गुंजन धर्मशाला गूंज अपने बंदी।

92.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ए है तुहां सारियां दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला जी श्रोताओं कने तुहां सारे कार्यक्रम सुना दे थे माटी दी महका। आज दे कार्यक्रम च बस इतना ही, तुहां सारे ए बनी रिया कने सुन दे रिया रेडियो गुंजन धर्मशाला।

0: खोलो।
1: अरे ये क्या कर रहे हो?
2: डॉक्टर मुन्नी सही तो है, हमारा मुंह है हमारी सेहत का आईना। मुंह को स्वस्थ रखने से दांत और मसूड़ों के साथ पूरा शरीर स्वस्थ रहता है। मुंह में पायरिया होने से कमजोर नवजात शिशु, मधुमेह, दिल की बीमारी और मस्तिष्क आघात होने की संभावना बढ़ जाती है। मुंह का स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए दिन में 2 बार ब्रश करें और खाने के बाद कुल्ला।
3: अगर दांत में दर्द हो या कोई भी तकलीफ हो तो तुरंत दांतों के डॉक्टर से मिलें,
2: क्योंकि स्वस्थ मुंह है।

0: गुड़िया आकर गुड़िया गुड़िया आकर आ गुड़िया
1: गोरिया।
2: प्लास्टिक गोरिया जैसे नादान जानवरों की जान ले सकता है। आप भी छोटी सी शुरुआत कीजिए, प्लास्टिक को अलग डस्टबिन में डाल के शुरू करें एक छोटी सी अच्छाई।
3: भगवान श्री राम कहते हैं, रूप और रुपया पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि गरीबी और बीमारी कभी पूछकर नहीं आती। इसलिए हमेशा विनम्र रहो और जरूरतमंद की मदद करो।
4: कैसे
5: कर्तव्य?
4: सड़क सुरक्षा का सबसे पहला और सबसे जरूरी पार्ट है कर्तव्य। ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने साथ साथ दूसरों के बारे में भी सोचें। अरे हाँ भाई साहब, अगर सड़क के बीचों बीच इस तरह से ट्रक छोड़ेंगे और चले जाएंगे तो पीछे से स्पीड में आ रही गाड़ी जो है ठोक देगी ना आपको। ये हमारा कर्तव्य है कि हम इस निर्धारित पार्किंग स्पॉट में ही गाड़ी को लगाएं, और अगर किसी कारण बीच सड़क में आपकी गाड़ी खराब हो जाती है तो हमेशा पार्किंग लाइट ऑन करें और वार्निंग ट्रायंगल गाड़ी से थोड़ी दूर जाकर के लगे, ताकि आने वाला जो ट्रैफिक है उसे पता चले कि सामने गाड़ी रुकी हुई है।
6: समझ गए सर।
4: तो याद रखना, कैसे कर्तव्य निभाएंगे तभी तो दूसरों से अपेक्षा रख पाएंगे।
7: चाय मांगी थी, क्या है ये?
8: ग्रीन टी, आपसे यही मिलेगी।
7: भाई मम्मी की इन्फ्लुएंसर वो मिसेस शर्मा उठ पटांग टिप्स देती रहती है, झेलना हमें पड़ता है।
9: अब क्या देख रहे हो पापा?
7: तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ।
9: किससे?
7: अरे एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है।
9: पापा इन वीडियोस पे ना जाए, अपना रिसर्च खुद करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा।
8: ग्रीन टी नुकसान तो नहीं करती।
10: सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर।
11: 16 सोमवार के व्रत में पता नहीं कौन सी ऐसी गलती हो गई मुझसे जो तुम्हारे जैसा पति मिल गया मुझे।
12: अरे किस्मत वाली हो तुम, तुम्हें अपनी गलती तो पता है, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरे से ऐसी कौन सी गलती होगी जो मेरी तुमसे शादी हुई।

मेरे प्यारे दोस्तों, 91.2 MHz रेडियो गुंजन धर्मशाला से शुरू हो गया है कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने। मैं आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ हूँ, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। तो लीजिए कार्यक्रम का पहला गीत प्रस्तुत करते हैं आपकी नजर।

गीत सुहाने नए पुराने, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

श्रोताओं, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर सा गीत।

91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ।

श्रोताओं, ये है रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम है गीत सुहाने नई पुरानी। फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम पर आप हैं और इस कार्यक्रम में आपकी हम सफर हूँ मैं, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। लीजिए कार्यक्रम में अगला नगमा आपके रेडियो सेट्स पर।

0: गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग
1: बेटा।
2: यस पापा।
1: बरखोरदा।
0: यस डैडी।
1: अपनी भाषा में बोलो।
0: अरे हाँ हाँ आई एम सॉरी।

गीत सुहाने नए पुराने, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

श्रोताओं, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर सा गीत।

91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ।

श्रोताओं, ये है रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम है गीत सुहाने नए पुराने। फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम पर आप हैं और इस कार्यक्रम में आपकी हम सफर हूँ मैं, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। लीजिए कार्यक्रम में अगला नगमा आपके रेडियो सेट्स पर।

गीत सुहाने नई पुरानी, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

श्रोताओं, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर सा गीत।

91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ।

श्रोताओं, ये है रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम है गीत सुहाने नए पुराने। फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम पर आप हैं और इस कार्यक्रम में आपकी हम सफर हूँ मैं आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। लीजिए कार्यक्रम में अगला नगमा आपके रेडियो सेट्स पर।

गीत सुहाने नई पुरानी, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

श्रोताओं, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर सा गीत।

91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ।

श्रोताओं, ये है रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम है गीत सुहाने नए पुरानी। फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम पर आप हैं और इस कार्यक्रम में आपकी हम सफर हूँ मैं, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। लीजिए कार्यक्रम में अगला नगमा आपके रेडियो सेट्स पर।

श्रोताओं, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर सा गीत।

91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ।

श्रोताओं, ये है रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम है गीत सुहाने नए पुराने। फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम पर आप हैं और इस कार्यक्रम में आपकी हम सफर हूँ मैं, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। लीजिए कार्यक्रम में अगला नगमा आपके रेडियो सेट्स पर।

गीत सुहाने नए पुराने, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 MHz रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

श्रोताओं, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर सा गीत।

91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ।

श्रोताओं, ये है रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम है गीत सुहाने नए पुराने। फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम पर आप हैं और इस कार्यक्रम में आपकी हम सफर हूँ मैं, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। लीजिए कार्यक्रम में अगला नगमा आपके रेडियो सेट्स पर।

कुछ तुम जो कहो हमसे तो

0: तुम जो कहो मुझे तो कुछ तुम तो करेगी, खुल जाए कभी राह मुहब्बत की किसी दम।
1: गीत सुहाने नए पुराने, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

नमस्कार दोस्तों, रेडियो गुंजन धर्मशाला से अब आप सभी सुनेंगे आज का ये न्यूज बुलेटिन। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों की हेडलाइंस पे। रोपवे से जुड़ेंगे हिमाचल के चार धार्मिक पर्यटन स्थल। मनाली में अगले माह होगा पैराग्लाइडिंग प्री वर्ल्ड कप। गाँवों में प्लास्टिक निस्तारण के लिए अत्याधुनिक मशीनें लगेंगी। हिमाचल प्रदेश में इको टूरिज्म को लगेंगे पंख। अब समाचार विस्तार से। दुर्गम धार्मिक और पर्यटन स्थलों तक पहुंच आसान बनाने के लिए केंद्र की पर्वतमाला परियोजना के तहत चार रोपवे परियोजनाओं की डीपीआर तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड एनएचएलएमएल की ओर से प्रस्तावित इन परियोजनाओं में सिरमौर, कांगड़ा और चंबा की प्रमुख धार्मिक व पर्यटन स्थल शामिल हैं। परियोजनाओं का बड़ा उद्देश्य सर्दियों में भारी हिमपात के कारण बंद होने वाले रास्तों की समस्या कम करना है। चुंजा साहसिक पर्यटन के लिए लोकप्रिय है। डीपीआर तैयार करने वाले कंसल्टेंट अत्याधुनिक तकनीक, भू तकनीकी जांच, स्थलाकृतिक सर्वेक्षण और यातायात मांग का आकलन करेंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश की इंजीनियरिंग कॉलेजों की बीटेक के 44 मेधावियों को जापान के अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक भ्रमण 2026 के लिए वर्चुअल माध्यम से रवाना किया और विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। ये अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर टूर तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा 6 से 12 सितम्बर 2026 तक आयोजित किया जा रहा है। विभाग द्वारा ये दूसरा अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर टूर है। इससे पहले आईटीआई के विद्यार्थियों के लिए कजाकिस्तान का अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर टूर आयोजित किया गया था। इस टूर के माध्यम से विद्यार्थियों ने कौशल विकास की विविध पद्धतियों और वैश्विक व्यावसायिक शिक्षा प्रणालियों की जानकारी प्राप्त की थी। इस अभिनव पहल को आगे बढ़ाते हुए अब बीटेक के मेधावी विद्यार्थियों को भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक्सपोजर प्रदान किया जा रहा है। सरकार कौशल शिक्षा से लेकर उच्च तकनीकी शिक्षा तक विद्यार्थियों को वैश्विक अनुभव प्रदान करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। इस शैक्षणिक भ्रमण में विभिन्न इंजीनियरिंग विषयों के 24 छात्र और 20 छात्राएं भाग ले रही हैं। विद्यार्थी जापान की प्रमुख शैक्षणिक, अनुसंधान एवं औद्योगिक संस्थानों का भ्रमण करेंगे। इनमें टोक्यो मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी, जैक्सा सुकुबा स्पेस सेंटर, साइबरडाइन रोबोटिक स्टूडियो, जेएल एरोस्पेस फैक्ट्री, क्योसीरा फैक्ट्री तथा ओसाका स्थित विभिन्न उद्योग शामिल हैं। इस यात्रा के माध्यम से विद्यार्थियों को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, रोबोटिक्स, एरोस्पेस, उन्नत विनिर्माण, नवाचार और आधुनिक परिवहन प्रणालियों का अनुभव मिलेगा। इसके अलावा विद्यार्थी जापान की अनुशासित जीवन शैली, विरासत, कार्य संस्कृति और तकनीकी पारिस्थितिकी तंत्र की जानकारी प्राप्त करेंगे। ये कार्यक्रम सांस्कृतिक आदान प्रदान को भी बढ़ावा देगा। ये पहल राज्य सरकार की मेधावी युवाओं को वैश्विक अनुभव प्रदान करने, उनकी रोजगार क्षमता बढ़ाने तथा नवाचार और तकनीकी उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करने की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित कर रही है। पर्यटन नगरी मनाली में पहली बार पैराग्लाइडिंग प्री वर्ल्ड कप का आयोजन होने जा रहा है। 5 से 8 अक्टूबर तक सोलंग नाला की स्की ढलान में होने वाली इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर की साहसिक खेल

0: आयोजन में देश विदेश के पैराग्लाइडिंग पायलट हिस्सा लेंगे। आयोजन को लेकर पैराग्लाइडिंग से जुड़ी संगठन और पर्यटन कारोबारी तैयारियों में जुट गए हैं। प्री वर्ल्ड कप के लिए अब तक 64 पायलटों का पंजीकरण हो चुका है। पंजीकरण की अंतिम तिथि 25 सितंबर निर्धारित की गई है। इनमें 4 महिला पायलट भी शामिल हैं। देश के विभिन्न हिस्सों से पायलट प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए मनाली पहुंचेंगी। प्रतियोगिता के दौरान पायलट फाथू से उड़ान भरेंगी और सोलंग नाला में लैंडिंग करेंगी। करीब 10,000 फीट की ऊंचाई से आसमान में उड़ान भरती पायलटों का रोमांच देखने लायक होगा। प्रतियोगिता का आयोजन 3 वर्गों में किया जाएगा। इसमें हिस्सा लेने वाले पायलटों के लिए FEI लाइसेंस अनिवार्य होगा।
1: प्रदेश सरकार के प्रभावी कदमों से स्वास्थ्य क्षेत्र सुदृढ़ हो रहा है और हिमाचल देश का स्वास्थ्य हब बनकर उभर रहा है। राज्य में प्रशिक्षित एलाइड एवं स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा विशेष चिकित्सा सेवाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने हमीरपुर में एलाइड एवं स्वास्थ्य सेवा महाविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया है। इस कॉलेज में विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की 330 सीटें होंगी, जिसमें BSc लैबोरेटरी साइंसेज, BSc रेडियोलॉजी, BSc एनेस्थीशिया, BSc ऑप्टोमेट्री, BSc फिजियोथेरेपी की 60-60 सीटें तथा डायलिसिस टेक्नीशियन की 30 सीटें शामिल हैं। राज्य सरकार ने इस संस्थान की सुचारू संचालन के लिए आवश्यक मशीनरी और उपकरणों की खरीद के लिए 6.87 करोड़ रुपए जारी करने का भी निर्णय लिया है। ये कॉलेज राज्य के विद्यार्थियों को विशेष प्रशिक्षण की अवसर उपलब्ध करवाएगा और स्वास्थ्य संस्थानों की बढ़ती आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए कुशल एलाइड एवं हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स का एक मजबूत कार्यबल तैयार करने में मदद करेगा। विशेष स्वास्थ्य शिक्षा के विस्तार की दिशा में एक अन्य महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सरकार ने इंदिरा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय IGMC शिमला और डॉ. राजेंद्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय टांडा में बैचलर ऑफ रेडिएशन थेरेपी टेक्नोलॉजी पाठ्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया है। प्रत्येक संस्थान में 30 सीटों की वार्षिक प्रवेश क्षमता के साथ ये पाठ्यक्रम वर्ष 2026-27 के शैक्षणिक सत्र से शुरू किया जाएगा। इन पहलों का उद्देश्य हिमाचल प्रदेश में एलाइड एवं हेल्थकेयर शिक्षा को और अधिक सुदृढ़ करना है। इससे कुशल तकनीकी कार्यबल तैयार होगा, स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार आएगा और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। इन पाठ्यक्रमों की शुरुआत और विस्तार से स्वास्थ्य संस्थानों में प्रशिक्षित पेशेवरों की उपलब्धता बढ़ेगी और विद्यार्थियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए राज्य से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी।
2: स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के फ्लेक्सी फंड से अब गांवों की स्वच्छता व्यवस्था को आधुनिक बनाया जाएगा। शिमला में शनिवार को मुख्य सचिव कमलेश कुमार पंत की अध्यक्षता में हुई राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति की पहली बैठक में करीब 4 करोड़ रुपए की स्वच्छता योजनाओं को मंजूरी दी गई। बैठक में ठोस कचरा प्रबंधन के तहत सिंगल यूज प्लास्टिक के निस्तारण के लिए अत्याधुनिक मशीन स्थापित करने को मंजूरी दी गई। इससे गांवों में बढ़ते प्लास्टिक कचरे के निस्तारण की व्यवस्था मजबूत होने के साथ पर्यावरणीय चुनौती से निपटने में मदद मिलेगी। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाले राष्ट्रीय, जिला और अन्य बड़े आयोजनों के लिए 15 मोबाइल शौचालय स्थापित किए जाएंगे। इससे अस्थायी आयोजनों में स्वच्छता सुविधाएं उपलब्ध कराने और खुले में शौच रोकने में मदद मिलेगी। हिमाचल प्रदेश की खूबसूरत वादियों में अब पर्यटन के साथ साथ रोजगार और आर्थिकी की नई बयार बहने वाली है। प्रदेश में इको टूरिज्म पारिस्थितिकी पर्यटन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए वन विभाग ने एक मास्टर प्लान तैयार किया है। सरकार ने अगले 5 सालों में इको टूरिज्म के जरिए 200 करोड़ रुपए का भारी भरकम राजस्व जुटाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस पूरी योजना की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसके केंद्र में हिमाचल के स्थानीय लोग होंगे। नई इको टूरिज्म साइट्स पर अब 80% रोजगार स्थानीय हिमाचली युवाओं को देना अनिवार्य कर दिया है। इस विस्तृत रूपरेखा को धरातल पर उतारने के लिए धर्मशाला कॉलेज की सभागार में वन विभाग की ओर से 3 दिवसीय अहम वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है। धर्मशाला में आयोजित वर्कशॉप में इको टूरिज्म सोसाइटी की CEO एवं IFS अधिकारी की तिरुमल ने विभाग का विजन साझा किया। उन्होंने बताया कि वर्तमान में प्रदेश को इको टूरिज्म से करीब 15 करोड़ रुपए का सालाना राजस्व मिल रहा है। विभाग की तैयारी इस आय को महज 1 साल के भीतर बढ़ाकर 55 करोड़ रुपए तक पहुँचाने की है। इसके लिए शिमला और धर्मशाला सहित विभिन्न वन सर्किलों को अलग अलग टारगेट दिए गए हैं। पर्यटन के विस्तार के लिए प्रदेश में 26 नई इको टूरिज्म साइट्स विकसित की जा रही हैं। इनमें से 17 साइट्स ऑपरेटरों को आवंटित हो चुकी हैं, जबकि 9 पर मुहर लगनी बाकी है। आज की समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। धन्यवाद। सुनते रहिए गुंजन रेडियो धर्मशाला 91.2 FM। आपकी आवाज़, आपकी पहचान।

0: हेलो।
1: अरे ये क्या कर रहे हो?
2: डॉक्टर मुन्नी सही तो है, हमारा मुंह है हमारी सेहत का आईना। मुंह को स्वस्थ रखने से दांत और मसूड़ों के साथ पूरा शरीर स्वस्थ रहता है। मुंह में पायरिया होने से कमजोर नवजात शिशु, मधुमेह, दिल की बीमारी और मस्तिष्क आघात होने की संभावना बढ़ जाती है। मुंह का स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए दिन में दो बार ब्रश करें और खाने के बाद कुल्ला।
3: अगर दांत में दर्द हो या कोई भी तकलीफ हो तो तुरंत दांतों के डॉक्टर से मिलें,
2: क्योंकि स्वस्थ मुंह

0: गोरिया आ कर आ गोरिया आ
1: हटो हटो हटो हटो एले गोरिया।
2: प्लास्टिक गोरिया जैसे नादान जानवरों की जान ले सकता है। आप भी छोटी सी शुरुआत कीजिए, प्लास्टिक को अलग डस्टबिन में डाल के शुरू करें एक छोटी सी अच्छाई।
3: भगवान श्री राम कहते हैं, रूप और रुपया पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि गरीबी और बीमारी कभी पूछकर नहीं आती। इसलिए हमेशा विनम्र रहो।

0: और जरूरतमंद की मदद करो।
1: कैसे?
2: कर्तव्य।
1: सड़क सुरक्षा का सबसे पहला और सबसे जरूरी पार्ट है कर्तव्य। ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने साथ साथ दूसरों के बारे में भी सोचें। अरे हाँ भाई साहब, अगर सड़क के बीचों बीच इस तरह से ट्रक छोड़ेंगे और चले जाएंगे तो पीछे से स्पीड में आ रही गाड़ी जो है ठोक देगी ना आपको। ये हमारा कर्तव्य है कि हम इस निर्धारित पार्किंग स्पॉट में ही गाड़ी को लगाएं। और अगर किसी कारण बीच सड़क में आपकी गाड़ी खराब हो जाती है तो हमेशा पार्किंग लाइट ऑन करें और वार्निंग ट्रायंगल गाड़ी से थोड़ी दूर जाकर के लगे, ताकि आने वाला जो ट्रैफिक है उसे पता चले कि सामने गाड़ी रुकी हुई है।
3: समझ गए सर।
1: तो याद रखना, कैसे कर्तव्य निभाएंगे तभी तो दूसरों से अपेक्षा रख पाएंगे।
4: चाय मांगी थी, क्या है ये?
5: ग्रीन टी, आपसे यही मिलेगी।
4: भाई मम्मी की इन्फ्लुएंसर वो मिसेस शर्मा ऊट पटांग टिप्स देती रहती है, झेलना हमें पड़ता है।
6: अब क्या देख रहे हो पापा?
4: तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए। बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा।
6: किससे?
4: अरे एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है।
6: पापा इन वीडियोस पे ना जाए, अपना रिसर्च खुद करे। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा।
5: ग्रीन टी नुकसान तो नहीं करती।
7: मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरे से ऐसी कौन सी गलती होगी जो मेरी तुमसे शादी हुई।

सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, शुरू हो गया है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला और मैं हाजिर हो गई हूँ आपकी सेवा में, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। जी हाँ, तो आप जुड़ चुके हैं अपनी पसंदीदा चैनल 91.2 FM से, रेडियो गुंजन धर्मशाला से हम बोल रहे हैं। और आप सुन रहे हैं हमें अपने अपने रेडियो सेट्स से, चाहे वो रेडियो सेट्स हो या फिर मोबाइल हो, चाहे वो आप आसपास में हो, कहीं दूर हो, देश विदेश में हो, तो मोबाइल से हमें ऐप के थ्रू भी सुना जा सकता है।

तो हम प्रवेश कर गए हैं 7 सितंबर में। जी हाँ, आज दिन है सोमवार का, तो वीकेंड पर भी मिलने आए थे आपसे, और आज जब वीक शुरू होता है तो भी हम आपसे मिल रहे हैं। बस श्रोताओं, ऐसे ही दिन निकलते चले जाते हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि हम फिर से कब साल के एंड में पहुंच जाएंगे, क्योंकि एक और महीना तो हमारी लिस्ट से अब खत्म हो चुका है। और अब ये सितंबर शुरू हुआ, तो सितंबर भी दिन त्योहारों के चलते चलते, और आप लोग बिजी भी होंगे बहुत, तो कब निकल जाएगा नहीं पता चलेगा। और आज के मौसम की बात करूं तो आज मौसम जो है, आसमान में धूप खिली है, लेकिन आसपास के कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है।

और इस समय की बात करूं तो 18 डिग्री सेल्सियस तापमान बताया जा रहा है और हवा में नमी है 70%। और आज का न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 19 से लेकर 23 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने का अनुमान है। अब पूर्व अनुमान तो ये भी है कि दोपहर या शाम के समय गरज के साथ आंधी बौछारें पानी या बौछारें पड़ने की संभावना भी है, लेकिन वो करीब 46 से 55% तक चांस है कि ऐसा हो सकता है। तो चलिए फिर इसी जानकारी के साथ आगे बढ़ते हुए सुन लेते हैं ये हम प्यारा सा गीत।

जी श्रोताओं, इतनी सालों का लंबा इंतजार नहीं, इतने दिनों की लगातार बारिश और आज आखिरकार आसमान ने अपनी खिड़की खोली है और एक प्यारी सी धूप खिली है।

जब काले बादलों के बाद ये सुनहरी किरणें चेहरे पर पड़ती हैं ना, तो बस दिल यही कहता है कि हर अंधेरे के बाद उजाला तो तय है। आज का आप इसको विचार भी ले सकते हैं। तो चलिए आज इस धूप को समेट लेते हैं, थोड़ी सी कड़क चाय बनाते हैं और इस हसीन मौसम को जीते हैं। तो आप भी सोचिए कि आज इस धूप को देख करके आपके दिल में कौन सा गीत बज रहा है, यही जो हम बजा रहे हैं या फिर कोई और।

भैया जिस सूरज दादा ने जो दर्शन दिए हैं उसे देख करके तो बस मज़ा ही आ गया। ऐसा लग रहा है जैसे सूरज ने आज छुट्टी से वापस आकर के हम सबको एक जादू की झप्पी दी हो। जी हाँ, जैसे कि आज मंडे है ना, आप सब भी कल की छुट्टी के बाद अपने अपने कामों पे वापस लौट रहे हैं, वैसे ही सूरज जी भी बड़ी लंबी छुट्टी के बाद आज वापस आ गए हैं। और घरों की बालकनी में कपड़े सूखने के लिए डाल दिए गए होंगे, लोग छतों पर आ गए होंगे और हर कोई इस सुहाने मौसम का लुत्फ उठा रहा है। और मैं तो छत पर सारे काम करके पहुंच गई हूं आपके साथ यहां पर बातचीत करने। तो आप भी अगर इस धूप का आनंद ले रहे हैं तो तुरंत हमारे नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा, मैसेज कीजिए कि क्या वाकई में ऐसा कर रहे हैं। ये आपको भी खुशी हुई इस धूप को देख करके?

तो श्रोताओं, आप भी किन ख्वाबों ख्यालों में खो गए? भाई निकल आइए बाहर, आप इस वक्त 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ हैं। और हाँ, इस वक्त हम अपने फेसबुक पेज से भी लाइव हैं, तो वहाँ पर भी आइए और कीजिए कमेंट्स, लाइक कीजिए और कीजिए हमसे बात। तो जैसा कि मैंने कहा कि आप मैसेज भी कर सकते हैं कि भाई कैसा लग रहा है आज आपको ये मौसम। वैसे धूप पहले भी निकल रही थी, बहुत बीच बीच में दिनों में निकली है, लेकिन हाँ आज की जो धूप है ना वो बिल्कुल क्लियर कट, इस वक्त तो आसमान साफ है। आगे जैसे मैंने अभी मौसम का हालचाल आपको बता ही दिया है, तो दोपहर होते होते तक क्या हो जाए वो नहीं पता, क्योंकि ये धर्मशाला का मौसम है। और कहते भी है ना कि सब्र का फल मीठा होता है, पर आज तो सब्र का फल एकदम चमकीला है, सुनहरा है। तो चलिए 91.2 MHz रेडियो गुंजन धर्मशाला से अब हम ले लेते हैं आज का विचार। तो विचार कुछ ऐसा है कि डिग्रियां तो शिक्षा में हुए खर्चे की रसीदें हैं, यानी कि ये जो डिग्री अभी अभी हमने शिक्षक दिवस मनाया है ना, तो उसी से संबंधित भी है ये विचार। और कुछ विचार तो मैंने आपको इस गीत के माध्यम से बीच बीच में बता ही दिए। तो डिग्रियां शिक्षा में हुई खर्चे की रसीदे हैं, और ज्ञान वो है जो कि किरदार में झलकता है। और हमारे फेसबुक पेज इस लाइव से लोग जुड़ भी गए हैं। इंदु बालाजी कह रही हैं, गुड मॉर्निंग मैम, आज सुबह में भी यही गाना गुनगुना। अच्छा, आप भी यही गाना गुनगुना रही थी, देखिए फिर आपके दिल की बात हमने पूरी कर दी। और आप ही नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि आज ज़्यादातर लोग यही गीत गुनगुना रहे होंगे कि ये मौसम आया है कितने सालों में। तो आपको बता दूं, आक्रमण फिल्म का ये गीत था, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में। और अब चलते हैं हम कार्यक्रम में आगे अगले गीत की ओर। लीजिए, ये भी आपके दिल को बाग बाग करने वाला है। I hate love stories फिल्म से आ रहा है ये गीत, सोना महापात्रा की आवाज में।

0: श्रोताओं, ये गीत आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से, और कार्यक्रम है गुड मॉर्निंग धर्मशाला। इस कार्यक्रम का शेष भाग आप सुनेंगे 9:30 पर। अब चलते हैं आकाशवाणी शिमला के स्टूडियो प्रादेशिक समाचारों के लिए।
1: आकाशवाणी शिमला है, अब आप शशि चौहान से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, सरकार का प्रयास युवा सिफारिश नहीं बल्कि अपनी काबिलियत के दम पर बढ़ें आगे। मुख्यमंत्री का आज दिल्ली जाने का कार्यक्रम, केंद्रीय मंत्रियों के अलावा पार्टी हाईकमान के साथ करेंगे मुलाकात। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने सेवा, सुशासन और विकास के क्षेत्र में हासिल की अभूतपूर्व उपलब्धियां। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान के अनुसार, प्रदेश में प्रस्तावित 4 नए औद्योगिक पार्क से लगभग 20,000 युवाओं को मिलेगा रोजगार। और मणिमहेश यात्रा के दौरान अब तक करीब 15,000 श्रद्धालुओं ने डल झील में लगाई आस्था की डुबकी। प्रशासन की श्रद्धालुओं से मौसम की जानकारी लेने के पश्चात ही यात्रा पर निकलने की अपील। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि सरकार का प्रयास है कि युवा सिफारिश नहीं बल्कि अपनी काबिलियत के दम पर आगे बढ़ें। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि युवाओं को नौकरी के लिए अब किसी की सिफारिश या किसी के दरवाजे के चक्कर लगाने की जरूरत ना पड़े, इस दिशा में सरकार काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति में अब नेट सेट के बाद लोक सेवा आयोग की परीक्षा होगी और वाइवा के लिए 20 अंक निर्धारित होंगे और मेरिट के आधार पर नियुक्ति की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में एक संशोधन विधेयक हाल ही में प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र में पारित किया गया है। राज्य सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए पशुपालन को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गांवों की खुशहाली खेत और पशुधन की समृद्धि से जुड़ी है और किसानों को उनकी मेहनत का उचित मूल्य मिले, इसी सोच के साथ सरकार ने गाय और भैंस के दूध की कीमतों में वृद्धि की है। उन्होंने कहा कि इसी के परिणाम स्वरूप प्रदेश में दूध की खरीद भी 1,57,000 लीटर से बढ़कर लगभग 2,70,000 लीटर प्रतिदिन हो गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कई फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में भी वृद्धि कर किसानों की आर्थिकी को मजबूत करने का प्रयास किया गया है। इस बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज दिल्ली जाएंगे। उनका केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल, सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और वन व जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात का कार्यक्रम है। इस दौरान राज्य की विभिन्न लंबित परियोजनाओं पर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री के इस दौरे को राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उनकी दिल्ली में सरकार के कामकाज व संगठन को लेकर पार्टी हाईकमान से चर्चा करने की भी उम्मीद है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने सेवा, सुशासन और विकास के क्षेत्र में अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल की हैं। बिलासपुर जिला के बरमाणा में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं ने देश के विकास को गति देने के साथ रोजगार और अवसरों के नए द्वार खोले हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि देश आज आत्मविश्वास से भरा हुआ है और धरती से अंतरिक्ष तक और गांवों से लेकर वैश्विक मंच तक भारत अपनी क्षमता, सामर्थ्य व नेतृत्व का लगातार परिचय दे रहा है। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा है कि प्रदेश में प्रस्तावित 4 नए औद्योगिक पार्क लगभग 20,000 युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाएंगे। उन्होंने कहा कि लगभग 500 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता से विकसित होने वाले इन पार्कों में आधुनिक सड़क व मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी से लेकर डिजिटल प्रशासन और श्रमिक हितैषी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। उद्योग मंत्री ने कहा कि इन पार्कों को धरातल पर उतारने के लिए 14 सितंबर को दिल्ली में उद्योग विभाग के अधिकारियों के साथ एक बैठक प्रस्तावित है। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में चंद्रभागा नदी का बढ़ता जलस्तर जोबरंग, राशेल और रापे गांवों के लोगों की परेशानी का सबब बन रहा है। हमारे लाहौल स्पीति जिला संवाददाता के अनुसार, कई बार पानी पुल के ऊपर तक पहुंच जाता है, इससे मरीजों को अस्पताल पहुंचने और जरूरी राशन लाने में परेशानी होती है।
2: किसानों को फल और सब्जियां बाजार तक पहुंचाने में भी दिक्कतें आने लगी है। ग्रामीण लंबे समय से इस समस्या के स्थायी समाधान की मांग कर रहे हैं। इसी सिलसिले में पूर्व विधायक रवि ठाकुर ने पूर्व मंत्री गोविंद ठाकुर के साथ जोबरंगपुर का निरीक्षण किया और ग्रामीणों की समस्याओं को जाना। निरीक्षण के दौरान पूर्व मंत्री गोविंद ठाकुर ने भी नदी से ऊंचाई पर नया पुल बनाने की जरूरत बताई। उन्होंने तत्काल राहत के लिए छोटे रोपवे की व्यवस्था पर भी विचार करने की बात कही। पूर्व विधायक रवि ठाकुर ने भी सरकार से जल्द धनराशि जारी करने की मांग की है। आकाशवाणी के लाहौल स्पीकर से मैं सुरेंद्र कुमार।
1: ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। शेष समाचार इस अंतराल के बाद।

0: प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। मुख्य न्यायाधीश हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय व मुख्य संरक्षक राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में प्रदेश भर में मीडिएशन फॉर द नेशन 3.0 के तहत विशेष मध्यस्थता अभियान शुरू किया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि जिला शिमला में भी इस अभियान को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित किया जा रहा है।
1: राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा निर्देशों के अनुपालन में जिला शिमला में इस अभियान को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित किया जा रहा है। 30 सितंबर तक लंबित मामलों को मध्यस्थता से निपटाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश को प्रभारी बनाया गया है। आम जनता से अपील की गई है कि वे सौहार्दपूर्ण निपटारे के लिए मध्यस्थता का लाभ लें। अभियान का मुख्य उद्देश्य लंबित मामलों का सौहार्दपूर्ण और शीघ्र निपटारा करना है। सभी न्यायिक अधिकारियों को उपयुक्त मामलों की पहचान कर उन्हें मध्यस्थता हेतु रेफर करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। बार एसोसिएशन अधिवक्ताओं और बीमा कंपनियों एवं वित्तीय संस्थानों का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ताओं से भी उपयुक्त मामले चिन्हित कर मध्यस्थता से निपटाने की अपील की गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए शिमला से युवराज शर्मा।
0: चंबा जिला में चल रही विश्व विख्यात मणिमहेश यात्रा के दौरान श्री कृष्ण जन्माष्टमी से लेकर अब तक करीब 15,000 श्रद्धालुओं ने मणिमहेश डल झील में आस्था की डुबकी लगाई है। वहीं इस यात्रा पर लगातार यात्रियों के आने का क्रम जारी है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए जहां जगह जगह लंगर, अस्थायी आवास व अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं, वहीं रास्तों की भी मुरम्मत की गई है ताकि किसी तरह की परेशानी इस दौरान श्रद्धालुओं को न हो। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से मौसम की पूर्ण जानकारी लेने के पश्चात ही यात्रा पर निकलने की अपील की है ताकि बारिश के दौरान उन्हें किसी तरह की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। सिरमौर के पारंपरिक परिधान लोहिया को जुलाई 2026 में आधिकारिक तौर पर जीआई टैग मिलने के बाद अब इसे संरक्षण और बाजार से जोड़ने की पहल तेज हो गई है। जिला में लोहिया का पहला सेंटर खुल गया है। अधिक ब्यौरा हमारे सिरमौर जिला संवाददाता से।
2: खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा नौराधार के बांदल में सिरमौर का पहला लोहिया सेंटर शुरू किया गया है। सेंटर में स्थानीय लोगों को लोहिया तैयार करने का प्रशिक्षण देने के साथ इस पारंपरिक हुनर को स्वरोजगार से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। सेंटर के लिए इंस्ट्रक्टर को भी नियुक्त किया गया है, जिनकी देखरेख में स्थानीय कारीगरों को लोहिया बनाने, गुणवत्ता बनाए रखने और उत्पादन से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाएगा। इससे क्षेत्र के लोगों को पारंपरिक हुनर को रोजगार में बदलने का अवसर मिलने की उम्मीद है। लोहिया सेंटर की शुरुआत को स्थानीय पारंपरिक कला को संरक्षित करने और इसे व्यावसायिक स्तर पर बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए सिरमौर से सतीश शर्मा।
0: उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया ने कांगड़ा जिला के हारचक्किया में आयोजित 3 दिवसीय अंडर 19 छात्रा जोनल स्तरीय खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस प्रतियोगिता में 17 विद्यालयों की लगभग 150 छात्राएं विभिन्न खेल प्रतिस्पर्धाओं में भाग ले रही हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय व एशियाई खेलों में पदक विजेताओं की पुरस्कार राशि में ऐतिहासिक बढ़ोतरी की है। और अब एक नज़र आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। अमर उजाला की सुर्खी है, आईजीएमसी व टांडा में शुरू होगा रेडिएशन थेरेपी टेक्नोलॉजी कोर्स। दैनिक जागरण ने मुख्यमंत्री के हवाले से लिखा है, इंजीनियरिंग के 44 विद्यार्थी गए जापान, अब मेडिकल की बारी। दिव्य हिमाचल का शीर्षक है, आज दिल्ली जाएंगे मुख्यमंत्री सुक्खू, 11 को मंत्रिमंडल की बैठक संभव। हिमाचल दस्तक ने खबर दी है, 3,445 ग्रामीण सड़कों का होगा QR कोड, खुलेगा पूरी सड़क का नक्शा, पुलों की मिलेगी जानकारी। पंजाब केसरी लिखता है, चंबा मेडिकल कॉलेज में समय पर उपचार नहीं मिलने से बच्ची की मौत, परिजनों ने किया हंगामा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, सरकार का प्रयास युवा सिफारिश नहीं बल्कि अपनी काबिलियत के दम पर बढ़े आगे। मुख्यमंत्री का आज दिल्ली जाने का कार्यक्रम, केंद्रीय मंत्रियों के अलावा पार्टी हाईकमान से करेंगे मुलाकात। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने सेवा, सुशासन और विकास के क्षेत्र में हासिल की अभूतपूर्व उपलब्धियां। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान के अनुसार, प्रदेश में प्रस्तावित 4 नए औद्योगिक पार्क से लगभग 20,000 युवाओं को मिलेगा रोजगार। और मणिमहेश यात्रा के दौरान अब तक करीब 15,000 श्रद्धालुओं ने डल झील में लगाई आस्था की डुबकी। प्रशासन की श्रद्धालुओं से मौसम की जानकारी लेने के पश्चात ही यात्रा पर निकलने की अपील। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।

0: जी श्रोताओ, क्या
1: तो मेगाहर्ट्स रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप हैं इस वक्त और कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया आज के इस कार्यक्रम में।

कुछ रिश्ते प्यार से नहीं चल रहे होते, चुप रहने से चल रहे होते हैं। मनमानियां सहन करने से चल रहे होते हैं। और ये जो लोग कहते हैं ना कि ज़रा सी बात पर रिश्ता टूट गया, वो ज़रा सी बात दरअसल बर्दाश्त की आखिरी हद होती है। तो रिश्ता तो कब का टूट चुका था, बस बर्दाश्त की छोटी सी कील की कील के ऊपर झूल रहा था। और जिस दिन थक करके कील ने बर्दाश्त करने से मना कर दिया, रिश्ता ढह गया। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि सहने की भी कोई हद होती है। जी हाँ, कहने से पहले थोड़ा सोचना चाहिए कि दूसरा जो व्यक्ति है उसके सहने की क्षमता कितनी है, या फिर उसने किस हद तक सह लिया है ताकि आपके जो रिश्ते हैं वो बचे रहें। और ये बात सभी पर लागू होती है, आप पर, हम पर, सामने वाले पर, तीसरे व्यक्ति पर, चौथे पर, मतलब समाज के हर व्यक्ति पर। जब आप खुद समझेंगे तो ही अपने बच्चों को समझा पाएंगे। और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं होती है कि जो आप बोल बोल करके समझाएंगे, करके समझाना पड़ता है। जी हाँ, अपने एक्शंस में लाना पड़ता है। चलिए, एक बात मेरे जहन में आई थी तो मैंने आपसे कह दी। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और बड़ा संजीदा नहीं बनाएंगे आज के इस कार्यक्रम को। बहुत सारी बातें हैं हमारे पास आपसे करने के लिए आज, और ऐसा विषय भी है, अंतर्राष्ट्रीय विषय है, दिवस है, यानी कि उन पर भी बात करने वाले हैं हम। लेकिन कार्यक्रम में अब समाचारों के बाद और ये थोड़ी सी संजीदगी के बाद आ रहा है आप सभी के रेडियो सेट्स पर ये प्यारा सा गीत। और देखिए, फिर से ये ऐसा ही गीत है कि धूप निकलने से क्या खुशी मन को मिल रही है।

चित चोर फिल्म का ये गीत सुना आपने केजे यशुदास की आवाज में। आपको भी लग रहा है कुछ कुछ ऐसा कि

मैसेज कर दीजिए। मैसेज करने की कोई मना ही नहीं है, हाँ फोन कॉल्स के लिए समय हम आपको बताएंगे 10 बजे के बाद, आप कॉल कीजिएगा और किस विषय पर बात करनी है उस पर भी धीरे धीरे हम आ रहे हैं। तो चलिए श्रोताओं जान लेते हैं फिर कि आज क्या क्या विशेष है। तो आज है स्वच्छ वायु और नीले आकाश का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, और जी हाँ आज हमारा विषय भी यही रहने वाला है कि आप क्या कद्र करते हैं इन सब चीज़ों की, कि अगर आपको ये स्वच्छ वायु और नीला आकाश मिला हुआ है तो आप कितना सहेज कर समेट कर इन सब चीज़ों को रखते हैं। और इसके साथ ही स्वच्छ जल क्या बचाते हैं, क्या केयर करते हैं कि आगे आने वाली पीढ़ियां भी ये थोड़ा बहुत जो हम देख पा रहे हैं वो भी उसको महसूस कर पाएं। कहीं ऐसा ना हो कि केवल किस्से कहानियों में ही उनको ये लगे कि भाई कोई शुद्ध हवा भी होती थी, क्योंकि आजकल बहुत सारे देशों में तो जो सिलेंडर्स हैं उससे भी सांस ली जा रही है। कुछ समय पहले तो ऐसा सुनने को आ ही रहा था, और कोरोना समय में तो हमने ये सब कुछ देखा भी है, झेला भी है। और आज संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के सितंबर के पहले सोमवार को मनाया जाता है श्रमिक दिवस यानी लेबर डे।

और अगर मैं अपने देश की बात करूं तो आज दिल्ली में दो बड़े अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और प्रदर्शनियों की शुरुआत हो रही है जो कि 9 सितंबर तक चलने वाली है। और संजीवनी 2026 ये स्वास्थ्य और वेलनेस यानी हेल्थ केयर एंड वेलनेस क्षेत्र का एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय आयोजन है जिसका उद्देश्य भारत के मेडिकल टूरिज्म और स्वास्थ्य सेवाओं को वैश्विक मंच पर बढ़ावा देना है। और एक है भारत न्यूट्रावर्स एक्सपो 2026 वैश्विक न्यूट्रास्यूटिकल हर्बल और वेलनेस उद्योग से जुड़ा ये प्रमुख ट्रेड शो भी इसी दिन शुरू हो रहा है। और अगर धार्मिक महत्व की बात करूं तो आज 7 सितंबर को अजा एकादशी का व्रत रखेंगे कुछ लोग। पंचांग के अनुसार उदय तिथि के आधार पर यह व्रत सोमवार को ही रखा जाएगा जिसमें कि भगवान विष्णु के ऋषिकेश स्वरूप की पूजा की जाती है। और हाँ, आज ज्योतिषीय गणना के अनुसार 7 सितंबर की रात 8:58 पर पूर्ण चंद्र ग्रहण यानी टोटल लूनार एक्लिप्स शुरू हो जाएगा जो कि मध्य रात्रि के बाद 8 सितंबर को तड़के यानी सुबह 2:25 पर समाप्त होगा। लेकिन और ये खगोलीय घटना भारत के कई हिस्सों में दिखाई देगी, यहाँ देगी या नहीं ये हमें नहीं पता है।

और आज ऑफिशियली रूप से ये जो हमारा राष्ट्रीय पोषण सप्ताह था उसका समापन हो रहा है। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया था शायद किसी कार्यक्रम में कि ये सारा जो महीना है सितंबर का, ये पूरा का पूरा ही पोषण से रिलेटेड होता है और लोगों को पोषण के प्रति जागरूक किया जाता है। तो चलिए फिर इन सारी जानकारी

कलाकारियों के साथ आगे को बढ़ते हुए एक और खूबसूरत सा गीत हम सुन लेते हैं। Once Upon a Time in Mumbai फिल्म का ये गीत है, राहत फतेह अली खान और तुलसी कुमार की आवाज़ों में।

राहत फतेह अली खान और तुलसी कुमार तथा साथियों की आवाज़ों में आपने सुना वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई फिल्म का ये गीत 91.2 MHz से। जी आप सभी बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, और इसके साथ ही साथ आप 88.4 MHz ढटवाल की आवाज़ से भी हमें सुन पा रहे हैं, और वहां के सभी श्रोताओं का भी बहुत बहुत स्वागत है। और इसी के साथ आप देश विदेश में भी हमें सुनते हैं हमारी ऐप के जरिए, हमने पहले भी आपसे कहा, और जो लोग नहीं सुन पा रहे हैं यानी जिन लोगों के पास आईफोन है वो सर्च कर सकते हैं वर्ल्ड रेडियो गार्डन, और वर्ल्ड रेडियो गार्डन में जाकर के वहां पर लिखिएगा रेडियो गुंजन धर्मशाला 91.2 MHz, बस हम हाजिर हो जाएंगे। और अपने अपने रेडियो सेट से तो आप फ्रीक्वेंसी को सेट करके रखते ही हैं, ये तो हमें पता ही है। और श्रोताओं, जब थोड़ी देर पहले मैं बात कर रही थी आज की मुख्य जो दिवस है उनके बारे में, तो ये भी बता दूं आपको कि आज अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहायता दिवस भी है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस जो कि हर साल 7 सितंबर को मनाया जाता है। ये दिन दुनिया भर के पुलिस बलों के बीच एकजुटता और सहयोग को बढ़ाने के लिए समर्पित है।

ये दिन दुनिया भर में संगठित अपराध, आतंकवाद और अन्य सीमा पार खतरों से निपटने के लिए वैश्विक पुलिसिंग और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भी समर्पित है। संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA ने 16 दिसंबर 2022 को एक प्रस्ताव यानी संकल्प पारित करके इस दिवस की घोषणा की थी। परंतु आधिकारिक तौर पर पहली बार वर्ष 2023 में इसको मनाया गया था। दुनिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन इंटरपोल की स्थापना अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस आयोग के रूप में हुई थी।

आधुनिक युग में अपराधी तकनीक का फायदा उठाकर के एक देश से दूसरे देश में नेटवर्क चला रहे हैं और ऐसे में कोई भी पुलिस बल अकेले तो उसका मुकाबला नहीं कर सकता। तो ये दिन खुफिया जानकारी और विशेषज्ञता साझा करने की जरूरत पर जोर देता है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखने में कानून प्रवर्तन समुदाय के योगदान को पहचानना और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना भी इसका मुख्य लक्ष्य है। और संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में काम कर रहे पुलिस कर्मियों के काम को भी इसी दिन सराहा जाता है और बहुत सारे पुलिसकर्मियों को आज शायद सम्मानित भी किया जाएगा।

और हम फिर से लाइव भी आ गए हैं अपनी फेसबुक पेज से। बस ये कार्यक्रम भी लाइव ही होता है, आप सभी जानते ही हैं, 9 से लेकर के। ग्यारह बजे तक।

चलिए फिर अब आपको बता देती हैं, वैसे मैं बता चुकी हूँ कि किस विषय पर आज हम बात करने वाले हैं। आज है अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु और नीले आकाश का दिवस। अब देखिए, स्वच्छ वायु और ये जो आकाश है या फिर जल है, ये सब चीज़ें तो जो है ना वो हमें फ्री में उपलब्ध होती हैं, लेकिन फिर भी हमें इसके लिए एक ख़ास दिवस मनाना पड़ जाता है। जी हाँ, एक जल दिवस भी होता है और अब ये वायु और आकाश का दिवस भी। आखिरकार ज़रूरत क्यों पड़ी इसकी, कोई तो वजह होगी ना। भाई आज सुबह सो करके जब उठे तो खिड़की खोली, क्या आसमान की तरफ देखा तो क्या महसूस हुआ, वो नीला आसमान, वो हल्की हल्की बहती हवा कितनी अनमोल थी, है ना। और सुबह से मैं ये बात कर ही रही हूँ। और हाँ, उन सभी श्रोताओं को बहुत बहुत मुबारक आज के दिवस की जो किसी ख़ास वजह से आज अपना ये दिवस ख़ास रूप में मना रहे हैं।

0: और फिर से एक बार बता देती हूँ आपको कि हम अपने फेसबुक पेज से लाइव हैं, लेकिन थोड़ा सा नेट का प्रॉब्लम है शायद, क्योंकि स्लो कनेक्शन हमें दिखा रहा है। फिर भी आप कोशिश कीजिएगा जुड़ने की। और आपके साथ साझा करती हूँ अपना फोन नंबर 7018117091। इस पर फोन करके आप साझा कर सकते हैं अपने विचार। और जैसे ही हमने कहा तो फोन आ भी गया है। देखते हैं कौन छूता है, क्या कहना चाहते हैं हमसे। हेलो
1: हेलो
0: हेलो, हाँ जी नमस्कार जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में।
1: मान्यवर प्रणाम। बेटी से भी यारी रख, दिल से भी दिलदारी रख। मिट्टी से भी यारी रख, दिल से भी दिलदारी रख। चोट ना पहुंचे बातों से, उतनी समझदारी रख।
0: सर एक पहचान हो तेरी, क्योंकि शायद हमें भी समझ नहीं आया कि आप कह क्या रहे हैं। अगर अब मेरी इको तो नहीं आ रही है ना।
1: मिट्टी से भी यारी रख,
0: मिट्टी से थी यारियां।
1: हाँ यारी रख, दिल से भी दिलदारी रख
0: जी।
1: तो चोट ना पहुंचे बातों से, इतनी समझदारी रख।
0: अच्छा, चोट न पहुंचे बातों से तो रख इतनी समझदारियां जी।
1: समझदारी रख, पहचान हो तेरी हट कर भीड़ में कलाकारी रख। पल भर में जोश जवानी का, बुढ़ापे की भी तैयारी रख
0: जी। अनिल जी कहना क्या चाहते हैं, पहचान
1: सबसे आपको। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, सबसे मिलता नहीं फिर भी जवान तैयारी रख
0: जी जी जी
1: तो
0: बहुत अच्छी बात।
1: मैं पहले तो

0: बात बोलूंगा आपको।
1: सुप्रभात जी, सुप्रभात।
0: आज आपका एक विषय है आकाश के बारे में
1: जी,
0: तो उसी के मैं संपर्क में संदर्भ में कुछ बताना चाहता हूँ।
1: जी बताइए।
0: हाल ही मेरा एक मेरा बहन
1: क्या, हेलो, मुझे लग रहा है शायद संपर्क हमारा टूट गया है इनसे।
0: छोटी सी घटना है
1: जी।
0: तो वहां पर जो वहां के जो स्नैप्स थे जो केदारनाथ के
1: जी,
0: उनका जो आकाश दिखाया गया मंदिर के ऊपर का, वो इतना मार्वलस था कि जिसकी कल्पना से परे था वो।
1: अच्छा।
0: इतना ब्यूटीफुल और इतना मतलब बिल्कुल मतलब जैसे समुद्र का गहरा नीला पानी होता है उसकी तरह।
1: अच्छा।
0: बिल्कुल नीला। तो मेरा कहने का तात्पर्य कि आजकल देखो आकाश भी धुंधला हो गया।
1: आकाश धुंधला नहीं हुआ है, आकाश तो वैसा ही है, प्रदूषण बढ़ गया है जो हमें
0: पोल्यूशन
1: से दिखता नहीं। नहीं,
0: मैं कहने का मतलब वही उसी की ओर जा रहा हूँ मैं।
1: हाँ।
0: हार्डली 15-20 साल पहले एक प्रतियोगिता हुई दिल्ली में।
1: अच्छा।
0: तो उस प्रतियोगिता में कुछ बच्चों ने भाग लिया।
1: हाँ।
0: तो दिल्ली के बच्चों ने भी उसमें उनको आकाश बनाना था और बाकी हिमाचल के बच्चों को भी आकाश ही बनाना था। उनको बोला गया था आकाश दिखाओ पेंटिंग में।
1: अच्छा।
0: तो जो दिल्ली के बच्चे थे उन्होंने भी आकाश दिखाया, पर उन्होंने आकाश जो दिखाया वो दिखाया थोड़ा धुंधला सा, मतलब जैसे क्लाउडी था।
1: हाँ, जो वो देखते हैं वही दिखाएंगे ना।
0: हाँ, क्लाउडी था। वो जो हिमाचल के थे या पहाड़ी के पहाड़ी एरिया के थे उन्होंने मतलब वो नीला दिखाया
1: जी।
0: तो जब उनको पूछा गया तो उन्होंने ये बताया कि हमने तो ये नीला देखा ही नहीं है। तो मेरा भावार्थ यही था आपसे कि मतलब कहीं ना कहीं पोल्यूशन की वजह से आज हम ये सब लोग मतलब इसको भोग रहे हैं।
1: हाँ जी, हाँ जी।
0: इतना पोल्यूशन हो चुका है कि हम मतलब कि आने वाली पीढ़ियां, कोई वक्त ऐसा भी आएगा मैडम कि हम लोगों को जो ऑक्सीजन सिलेंडर है ना उनको लेकर चलना पड़ सकता है
1: जी।
0: जिसके बारे में कुछ देर पहले बात कर रहे थे
1: जी। हाँ, जी।
0: वो मतलब टाइम वो टाइम ज्यादा दूर नहीं है
1: जी,
0: बड़े नजदीक में आने वाला टाइम है। तो अभी भी हम लोग समझ गए अच्छा है, नहीं तो जो आने वाली पीढ़ियां वो हम लोगों को कोसेंगी कि हमारे बुजुर्ग जो थे हमारे जो पूर्वज से क्या छोड़ के गए हमारे लिए।
1: लेकिन इस हिसाब से तो मुझे लगता है अनिल जी कि आने वाली पीढ़ी का कोई अस्तित्व होगा भी, मतलब पीढ़ी होगी भी या नहीं,
0: बड़ा मुश्किल है जी। बहुत ये
1: पांच तत्व नहीं रहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि फिर धरती का अस्तित्व,
0: मतलब कहने का मतलब ये कि हम लोग जो आने वाली पीढ़ी उनको सर्वाइव करना मुश्किल हो सकता है
1: जी,
0: एटलीस्ट इतने भी है कहीं ना कहीं। तो अभी संभल गए तो ठीक है, नहीं तो जो हम कंक्रीट के पहाड़ खड़े कर रहे हैं ना, जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बड़ी बड़ी बना रहे हैं, बड़े बड़े एम्पायर्स खड़े कर रहे हैं, तो हमारा जो हिमाचल है अस्सी जो 40 साल पहले का जो हिमाचल था अब वो हिमाचल नहीं रहा। मैं उस चीज को देखा हूँ जो 40 साल पहले इतना ब्यूटीफुल हुआ करता हमारा एरिया, जो स्टेडियम के एरिया है इतना मार्वलस है, इतना सुपर्ब था जिसकी हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो तभी तो हम आज लोग हिमाचल में जो आते हैं वो वापस जाते नहीं है जितने भी लोग हैं। तो मैं यही ये हमारे सबकी पीड़ा है, और हम लोग अगर आज ही जागे, हमें जो सरकार है व्यवस्था नहीं जागी, तो हम लोगों का जो अस्तित्व है वो कहीं ना कहीं मतलब खतरे में भी आ सकता है। अभी पंजाब और दिल्ली का हाल देखिए आप, उनका जो एक्यूआई जो देखिए आप कितना बुरा है, दिल्ली का देखते हैं सर्दी में कितना बुरा होता है, वो गुड़गांव वगैरह के जो एरिए हैं, तो अभी कहीं यहाँ ना ऐसा हालत हो जाए।
1: इसीलिए कुछ लोग वहाँ से छोड़ करके थोड़ा इधर के इलाकों में आ रहे हैं।
0: तो इधर आ रहे हैं तो इधर भी रोज था
1: ज्यादा जरूरी है,
0: इतनी गाड़ी है, इतना पोल्यूशन है कि हालत खराब है।
1: हमें ऐसा लगता है अनिल जी कि लोगों को ना अपनी जगह छोड़ करके आने की बजाय वहीं रह करके अगर इन समस्याओं पे वो काम करें, बोलें, तो ज्यादा अच्छा होगा, नहीं आपको नहीं लगता? क्योंकि कितनी लोग जगह छोड़ेंगे? अगर सारे लोग ही वहां से भाग भाग करके पलायन करके पहाड़ों की तरफ आने लगे तो यहाँ पर भी फिर वही हाल होने वाला है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर भी बहुत बुरा हाल होने वाली है जो मतलब।
1: वैसे एक बात मैं कहूँ कि देखिए, अभी मैंने ना शुरुआत ही की थी इस विषय की और आपने बाजी मार ली, आपने सब कुछ पहले ही कह दिया। मुझे लगता नहीं है कि मेरे कहने लायक कुछ छोड़ा आपने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत अच्छी बात है आपने की है रेडियो गुंजन धर्मशाला से।
0: ओके
1: जी, धन्यवाद। तो श्रोताओ, अभी तो मैंने विषय छेड़ा ही था और मैं आपसे पूछ रही थी कि क्या आपने वो बहती हुई हवा महसूस की आज, या फिर प्रदूषण के धुएं में हम इस नीले आसमान को देख रहे हैं और ये आसमान कहीं खो गया है। अब मैं तो ये कहूँगी कि मेरे घर से ये आसमान बिल्कुल साफ क्लियर नज़र आता है, लेकिन हाँ, जब हम शहरों की तरफ चले जाते हैं तो वाकई में अभी जो बातें हो रही थी वो सच हैं कि नहीं दिखाई देता। ऐसा लगता है कि जैसे आसमान कहीं छुप गया है या बादल बने हुए हैं, लेकिन वो बादल नहीं होते हैं, वो प्रदूषण होता है, वो धुआं होता है जो कि पूरे वातावरण में फैला होता है। तो हमारा भी कुछ फर्ज बनता है अपने पर्यावरण के प्रति। आगे बात करेंगे इस विषय पर भी। अब जब हवा पानी आसमान की बात हो रही है तो लीजिए चलते हैं हम भी हवा के साथ साथ। सीता और गीता फिल्म का गीत, किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजें।

किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में आपने सुना सीता और गीता फिल्म का ये मनमोहक सा गीत। तो महसूस की आपने उस हवा की रफ्तार, जिस रफ्तार से ये चले हुए थे हवा के साथ साथ।

91.2 MHz रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप हैं। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया और कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला। और आज की मॉर्निंग हमारी वैसे भी बहुत अच्छी हुई है और हम आज सेलिब्रेट कर रहे हैं स्वच्छ वायु और नीले आकाश का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। अब अगर कुछ समय जो हमारे पास बचा हुआ है उसमें हम इसी नीले आसमान की छाँव में बैठेंगे, बातें करेंगे कि हम कैसे अपने छोटे छोटे कदमों से इस हवा को शुद्ध बना सकते हैं और साथ ही बेहतरीन नगमे भी सुन ही रहे हैं और आगे भी सुनेंगे जो सीधे आपको प्रकृति, हवा और खुले आसमान से जोड़ देंगे।

वायु प्रदूषण के बारे में जागरूकता बढ़ाना और वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए वैश्विक प्रयास करना इस दिन का मुख्य उद्देश्य है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2019 में इस दिन को मनाने की घोषणा की थी और पहला दिन 7 सितंबर 2020 को मनाया गया था। और ये दिन वायु प्रदूषण से होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं को रोकने और भविष्य के लिए स्वच्छ हवा को महत्वपूर्ण भी बनाता है। तो आपके दिमाग में भी आ रही हैं कुछ बातें कि किस तरह से हम अपने इस पर्यावरण को, वायु को, जल को, आसमान को प्रदूषण रहित बना सकते हैं। शेयर कीजिए ना हमसे, मैसेज कर सकते हैं, फोन भी कर सकते हैं, और या फिर आप कुछ प्रयास करते हैं तो फिर क्या करते हैं, कितने सफल हुए हैं उसमें, वो भी आप हमसे साझा कर सकते हैं।

तो दोस्तों, जब हम स्वच्छ वायु यानी साफ हवा की बात करते हैं तो हमारे जहन में सबसे पहले ख्याल आता है हमारे गांवों का। दूर दूर तक फैले हरे भरे खेत, वो पेड़ों की छांव, वो हवा जिसमें कोई मिलावट नहीं होती है। आज जब पूरा विश्व स्वच्छ वायु और नीले आकाश का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मना रहा है तो हमें सोचने की जरूरत है कि जो शुद्ध हवा कभी हमारे जीवन का हिस्सा थी, आज वो सिर्फ यादों में या गांवों तक सिमट करके क्यों रह गई है। शहरों की इस भाग दौड़ और धुएं ने हमसे हमारा वो सुहाना आसमान छीन लिया है।

जी, तो सुना आपने कि पिंड की हवा कैसी होती है। एक्सपीरियंस तो आप लोगों को भी होगा ही ना कि जब ये बड़े बड़े शहर नहीं थे और शहरीकरण नहीं हुआ था, हम कितने मज़े में रहते थे ना, सब कुछ शुद्ध। और अब हवा तो छोड़िए, हर एक चीज़ में मिलावट है, खाने पीने की चीज़ों तक, पर यहाँ तक कि हमारी सोच में भी तो मिलावट आ गई है। पहले हम सबके लिए अच्छा सोचते थे, भला सोचते थे, सबका कल्याण हो ऐसा सोचते थे, लेकिन आज हम सिर्फ अपने तक ही सीमित हो गए हैं। तो सीखिए, इन पांच तत्वों से कुछ सीखिए, जो कि अगर शांत हैं तो शांत हैं, लेकिन अगर अपना जलवा बिखेरने को आए तो फिर आप देख ही रहे हैं हाल फिलहाल में ही कि हवा, पानी, आग कितना नुकसान कर सकते हैं। तो बस हर चीज़ में मिलावट से दूर रहिए, चाहे वो आपकी सोच ही क्यों ना हो। और अब हम सोचते हैं कई बार कि भाई अब क्या हो सकता है, अब तो बहुत देर हो गई है, लेकिन कहते हैं ना कि जब जागो तभी सवेरा। जैसा कि आज का सवेरा हुआ है ना, बड़ा चमकता हुआ सा, वैसा ही चाहिए। और देखिए ना, मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हमें बहुत कुछ देती हैं, लेकिन हम क्या लौटा पा रहे हैं वापस प्रकृति को, ये सोचने वाली बात है। और अगर आपके आसपास में कोई ऐसी मुहिम है जो कि पर्यावरण के बारे में सोच रही है विदाउट एनी कॉस्ट, मतलब कोई एनजीओ है, आपको लगता है कि उससे जुड़ना चाहिए और कुछ योगदान उसमें अपना देना चाहिए, तो आप ज़रूर जुड़िए। और अपने अपने स्तर पर जो जो भी आप कर सकते हैं वो सभी ईमानदारी से कीजिए, बिना किसी लालच के। अब देखिए, ये जो आज का दिवस है, स्वच्छ वायु और नीले आकाश का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, तो अगर वायु स्वच्छ हो जाएगी ना, तो हमें आसमान खुद ब खुद ही नीला नजर आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि एक से दूसरी चीज़ हमेशा जुड़ी ही होती है।

0: और अगर हम बात करें कि कैसे हम वायु को स्वच्छ कर सकते हैं, तो पेड़ हवा से जहरीली गैसें जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं, ये तो आपको पता ही है, और ऑक्सीजन हमें वापस लौटाती है। अपने घर के आसपास में छोटे मोटे प्लांट्स रख सकते हैं आप, जैसे कि स्नेक प्लांट, स्पाइडर प्लांट जैसे पौधे घर के अंदर की हवा को साफ करते हैं। और भी कुछ बातें हैं जिनका जिक्र अब कार्यक्रम में आगे करेंगे हम। फिलहाल चलते हैं हम प्यारे से आसमान की तरफ।
1: Man, these clothes, they're not happy.

तो दोस्तों, रॉकफोर्ड फिल्म से आपने सुना के की आवाज़ में ये खूबसूरत सा गीत। अब इनको तो इंतज़ार है कि आसमां के पार भी शायद कोई आसमां होगा। एक ऐसा ही गीत और भी रखा है हमने आपकी खिदमत में, लेकिन उससे पहले लीजिए मिलाइए अपनी घड़ियाँ। 10:35 हो चुके हैं हमारी स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक। में 92 MHz रेडियो गुंजन धर्मशाला है और मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। और साथ ही जैसा हमने आपको बताया कि 88.4 MHz धटवाल की आवाज हमीरपुर से भी आप हमें सुन पा रहे हैं।

दोस्तों, बात हो रही थी हवा प्रदूषण को कम करने की। तो कैसे होगा ये कम? अब पेड़ लगाना है ये तो सभी को पता है, लेकिन पेड़ लगा करके उनकी देखभाल भी करनी है, ये शायद हम भूल जाते हैं। और लगे हुए पेड़ों को बेवजह काटना नहीं है। और हो सके तो वाहनों का इस्तेमाल थोड़ा कम करना है, बस या मेट्रो का ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं आप। अब मेट्रो यहाँ तो चलती नहीं, लेकिन जहाँ बड़े शहरों में चलती है वहाँ की बात हम कर रहे हैं। और अगर आपका ऑफिस एक ही रास्ते पर है तो जाने वाले लोग एक ही गाड़ी का प्रयोग कर सकते हैं, जिसे कार पूलिंग भी कहा जाता है।

तो दोस्तों जब हम नीचे से ऊपर देखते हैं तो हमें एक आसमान दिखाई देता है, वो भी धुंध से भरा, तो कभी प्रदूषण की चादर में लिपटा हुआ। लेकिन क्या हमारा आसमान सिर्फ उतना ही है? और इस गीत का मतलब है कि संभावनाओं का, उम्मीदों का कोई अंत नहीं। आज जब हम इस नीले आकाश को बचाने की बात कर रहे हैं तो हमें ये भी समझना होगा कि जो प्रदूषण हम यहाँ फैला रहे हैं वो सिर्फ हमारे शहर की हवा को ख़राब नहीं कर रहा है, बल्कि हमारी पूरी पृथ्वी के अनंत वायुमंडल को नुकसान पहुँचा रहा है।

हमारी सोच और हमारे प्रयास भी इस आसमान की तरह ही असीम होने चाहिए। अगर आज धुंध है तो कल साफ आसमान भी होगा। हमें हार नहीं माननी है, हमें इस धुएं के पार जाकर उस अंतहीन नीले और स्वच्छ आकाश को वापस लाना है जो हमारी आने वाली पीढ़ियों की अमानत है।

वायु प्रदूषण केवल एक स्थानीय समस्या नहीं है, हमारी हवा और हमारा आसमान पूरी दुनिया और ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है। आज वायु प्रदूषण के आंकड़े भले ही डराने वाले हैं, लेकिन इस धुंधले वर्तमान के पार एक स्वच्छ और सुंदर भविष्य, एक और आकाश मुमकिन है, बशर्त ये है कि आज ही से हम प्रयास करें। तो श्रोताओं, जैसे कि आकाश की सीमा नहीं, वैसे ही पर्यावरण को बचाने के हमारे प्रयासों की भी कोई सीमा नहीं होनी चाहिए।

की श्रोताओं, तो लता मंगेशकर के द्वारा गाया ये गीत लोगों को रोज़मर्रा की आदतों से ऊपर उठ करके बड़ी तस्वीर देखने के लिए प्रेरित करता है।

तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं, वैसे अब थोड़ा अपना हवा पानी से, मतलब कि हवा आकाश से ऊपर उठ करके हम अगर हम वास्ट संदर्भ में देखें तो आजकल जो सोशल मीडिया पर एक बहुत ही वायरल हुई हुई चीज़ है वो ये है कि एक ही लड़के ने, हालांकि वो ये खुद दावा नहीं कर रहा है कि उसने अकेले ने ये काम कर दिया, वो तो कहता है कि बाकी लोगों का सहयोग भी साथ में था, लेकिन क्योंकि बाकी लोग आते जाते रहे कभी नहीं भी आए, परंतु वो जो लड़का है बिट्टू तबाही, वो जो है तबाही बन करके इस समय नेट पर छाया हुआ है। और आपको पता ही है कि उसने निरंतर अपने प्रयास से ब्यावरा की अचनार नदी को साफ कर दिया है, और इसीलिए शायद आज वो भी ऊपर है और आसमान नीचे है। और आपको पता है नीदरलैंड्स की ओशन क्लीनअप जो कंपनी है, वहां पर एनजीओ है, उसने उसे डायरेक्ट ही ऑफर भेज दिया है जॉब का। हमारी सरकार ने भी उसे प्रोत्साहित किया है, सम्मानित किया है, लेकिन अगर साथ में मिलकर के वो काम कर लेते उसके साथ, तो शायद जितने दिन उन्होंने लगाए उस नदी को साफ करने के लिए, शायद वो काम जल्दी हो जाता। क्योंकि अगर उसकी नज़र पड़ गई या बाकी जो उसके साथी थे उनकी नज़र उस पर पड़ गई, तो क्या प्रशासन में बैठे हुए लोगों की नज़र नहीं पड़ती है?

खामोशी फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे कविता कृष्णमूर्ति और कुमार सानू की आवाजों में। ज्ञान में दशमलव 2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप हैं। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया और शुक्रिया करते हैं हम अश्वनी सकेतिया जी का। वो कह रहे हैं गुड मॉर्निंग मैम जी। गुड मॉर्निंग आपको और बाकी सभी श्रोताओं को भी। चलिए फिर से अपनी घड़ियां मिलाइए, 10:50 हो चुके हैं। 10 मिनट हमारे पास शेष हैं और हम चाहते हैं कि सारी की सारी बातें जल्दी से उड़ेल दें यहाँ पर।

देखिए, अभी हम बात तो कर रहे हैं आज अपने हवा और आकाश की, परंतु पेड़ों की बात भी कर रहे हैं, क्योंकि अगर पेड़ नहीं होंगे तो वायु शुद्ध कैसे होगी। और जब पेड़ नहीं होते हैं ना, तो फिर भूस्खलन भी होते हैं। जिस तरह से एक जानकारी आ रही है कि बारिश से खिसका है पहाड़ी का हिस्सा, मेडिकल कॉलेज के क्वार्टर्स पर खतरा बन गया है। और ये खबर आ रही है मेडिकल कॉलेज टांडा से, जहां पर कि पहले भी इस तरह से कुछ हुआ था। अब कर्मियों का कहना है कि उन्हें रात को नींद नहीं आ रही है, क्योंकि उनके साथ पहाड़ी के खिसक जाने के कारण वे अपने बच्चों के साथ क्वार्टर्स में रहना खतरे से खाली नहीं समझ रहे हैं। और भारी बरसात के चलते पहाड़ी का कुछ हिस्सा बरसात में बह गया है, तथा उनके क्वार्टर्स पर भी खतरा मंडराने लगा है। और ये चीज़ हुई है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज और अस्पताल टांडा टाइप वन के क्वार्टर्स में रह रहे स्टाफ कर्मियों के जो क्वार्टर्स हैं वहाँ पर उसके साथ में। और उनका ये भी कहना है कि रात के समय डर रहता है कि न जाने कब भारी बारिश आ जाए, कभी कोई अनहोनी घटना घट जाए। बंधु श्रोताओं, अब ना ये समझने की भी ज़रूरत है कि हो सकता है कि अब जो बरसात आए उसमें ऐसा कुछ ना हो, लेकिन होता पता है क्या है, जब अच्छी धूपें लगती हैं ना, इन बरसातों के बाद अच्छी धूपें लगती हैं, या फिर काफ़ी सर्दी के बाद खूब अच्छी धूप लगती है, तब फिर जो जगह है वो कंट्रैक्ट होती है, यानी कि सिकुड़ती है, कभी फैलती है, तब ये जो दरारें हैं वो अपना काम करती हैं। उसके बाद फिर जब कोई बरसात आती है, बारिश आती है, तो फिर ज़्यादा खतरा बनता है। और लोगों को ये समझ नहीं आता, हम सोचते हैं कि बारिश ही बारिश है तो इस वजह से शायद कोई प्रॉब्लम आएगी, लेकिन जब धूप पड़ती है, अच्छी खासी धूप, उस जगह पर जहाँ पर कि काफ़ी समय से धूप पड़ ही नहीं रही थी, उसके बाद फिर जब दोबारा से वो जगह ठंडी होती है ना, तब सिकुड़न होती है। अब शायद मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और प्रशासन को भी पता होता है कि भैया कहाँ पर क्या क्या हो रहा है और कहाँ पर लोगों की जो जान है वो खतरे में है, जान हथेली पर लेकर के लोग चलते हैं, तो उस जगह का पहले ही जो समाधान है वो कर देना चाहिए, ये नौबत ही ना आए कि रातों को लोगों को नींद ना आए। कई लोग तो ऐसे होते हैं जिनके पास घर नहीं है, चलिए मान सकते हैं वो कहीं ना कहीं आश्रय अपना ले लेते हैं, लेकिन जो जिनके पास हैं अगर वो भी डर के साए में हैं, तो फिर हम किस तरह के समाज में रह रहे हैं। तभी हम कह रहे हैं कि अपने इस पर्यावरण की सुध लीजिए, ताकि आपको बिल्कुल भी डरना ना पड़े, या फिर आपके आगे आने वाली पीढ़ी को बिल्कुल भी ये ना सोचना पड़े, जैसे कि अनिल बलोरिया जी ने कहा कि आगे आने वाली पीढ़ी हमें कोसेगी और वो दिन दूर बिल्कुल नहीं है। तो फैक्ट्रियों की चिमनियों में प्रदूषण रोधी उपकरण लगाए जा सकते हैं, निर्माण स्थल को ढककर रखें, पानी का छिड़काव करते रहें ताकि धूल ना उड़े। और आपके घर के आसपास भी जब कोई निर्माण होता है, कहीं पर कोई बिल्डिंग बन रही होती है, तो अगर वो इस तरह से लोग कार्य नहीं करते हैं, तो जाकर के उन्हें बड़े आराम से आप कह सकते हैं कि कृपया करके यहाँ पर कोई ग्रीन नेट लगा लीजिए, या बड़े बड़े जो टीन के पत्थर होते हैं वो लगा लीजिए, ताकि दूसरों को कोई बेआरामी ना हो, क्योंकि धूल उड़ती है, फिर बारिश होती है तो कीचड़ होता है, तो इस तरह की चीज़ें ना हो। लेकिन आपको बोलना होगा, आप बोलेंगे नहीं और ये उम्मीद करेंगे कि सब कुछ खुद ब खुद ही हो जाए, या हम कुछ करेंगे नहीं और दूसरों से उम्मीद करते रहेंगे कि ये करेगा वो करेगा, तो ऐसा नहीं होगा, शुरुआत खुद से हमें करनी होगी।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप हैं और मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। बस अब हमारा भी चलने का वक्त हो गया है। तो श्रोताओं, उम्मीद करती हूं कि आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा और जल्द मिलूंगी आपसे फिर किसी और दिन किसी और कार्यक्रम में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। कैसे कोई, जय हिंद, वंदे मातरम। इस कार्यक्रम में मुझे तकनीकी सहयोग मिला शशि से और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे संदीप।

0: डॉलर।
1: अरे ये क्या कर रहे हो?
2: डॉक्टर मुन्नी सही तो है, हमारा मुंह है हमारी सेहत का आईना। मुंह को स्वस्थ रखने से दांत और मसूड़ों के साथ पूरा शरीर स्वस्थ रहता है। मुंह में पायरियां होने से कमजोर नवजात शिशु, मधुमेह, दिल की बीमारी और मस्तिष्क आघात होने की संभावना बढ़ जाती है। मुंह का स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए दिन में दो बार ब्रश करें और खाने के बाद कुल्ला।
3: अगर दांत में दर्द हो या कोई भी तकलीफ हो तो तुरंत दांतों के डॉक्टर से मिलें,
2: क्योंकि स्वस्थ मुंह

0: 우리 아가라. 우리 아.
1: गोरिया।
2: प्लास्टिक गोरिया जैसे नादान जानवरों की जान ले सकता है। आप भी छोटी सी शुरुआत कीजिए, प्लास्टिक को अलग डस्टबिन में डाल के शुरू करें एक छोटी सी अच्छाई।
3: भगवान श्री राम कहते हैं, रूप और रुपया पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि गरीबी और बीमारी कभी पूछकर नहीं आती। इसलिए हमेशा विनम्र रहो और जरूरतमंद की मदद करो।
4: कैसे?
5: कर्तव्य।
4: सड़क सुरक्षा का सबसे पहला और सबसे जरूरी पार्ट है कर्तव्य। ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने साथ साथ दूसरों के बारे में भी सोचें। अरे हाँ भाई साहब, अगर सड़क के बीचों बीच इस तरह से ट्रक छोड़ेंगे और चले जाएंगे तो पीछे से स्पीड में आ रही गाड़ी जो है ठोक देगी ना आपको। ये हमारा कर्तव्य है कि हम इस निर्धारित पार्किंग स्पॉट में ही गाड़ी को लगाएं, और अगर किसी कारण बीच सड़क में आपकी गाड़ी खराब हो जाती है तो हमेशा पार्किंग लाइट ऑन करें और वार्निंग ट्रायंगल गाड़ी से थोड़ी दूर जाकर के लग दें, ताकि आने वाला जो ट्रैफिक है उसे पता चले कि सामने गाड़ी रुकी हुई है।
6: समझ गए सर।
4: तो याद रखना, कैसे कर्तव्य निभाएंगे तभी तो दूसरों से अपेक्षा रख पाएंगे।
7: चाय मांगी थी, क्या है ये?
8: ग्रीन टी, आपसे यही मिलेगी।
7: मम्मी की इन्फ्लुएंसर वो मिसेस शर्मा ऊट पटांग टिप्स देती रहती है, झेलना हमें पड़ता है।
9: अब क्या देख रहे हो पापा?
7: तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए। बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा।
9: किससे?
7: अरे एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है।
9: पापा इन वीडियोस पे ना जाए, अपना रिसर्च खुद करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा।
8: ग्रीन टी नुकसान तो नहीं करती।
10: सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर।
11: 16 सोमवार के व्रत में पता नहीं कौन सी ऐसी गलती हो गई मुझसे जो तुम्हारे जैसा पति मिल गया मुझे।
12: अरे किस्मत वाली हो तुम, तुम्हें अपनी गलती तो पता है, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरे से ऐसी कौन सी गलती होगी जो मेरी तुमसे शादी हुई।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने लेकर। तो श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम का सबसे पहला प्यारा सा गीत। आप यूं ही बने रहिए 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 MHz पर कार्यक्रम सुन रहे हैं। गीत सुहाने नए पुराने, लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने आप सुन रहे हैं 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी। आइए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

श्रोताओं, इस समय आप हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

0: ये क्या कर रहे हो?
1: डॉक्टर मुन्नी सही तो है, हमारा मुंह है हमारी सेहत का आईना। मुंह को स्वस्थ रखने से दांत और मसूड़ों के साथ पूरा शरीर स्वस्थ रहता है। मुंह में पायरिया होने से कमजोर नवजात शिशु, मधुमेह, दिल की बीमारी और मस्तिष्क आघात होने की संभावना बढ़ जाती है। मुंह का स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए दिन में 2 बार ब्रश करें और खाने के बाद कुल्ला।
2: अगर दांत में दर्द हो या कोई भी तकलीफ हो तो तुरंत दांतों के डॉक्टर से मिलें,
1: क्योंकि स्वस्थ मुंह

0: गोरिया।
1: प्लास्टिक गोरिया जैसे नादान जानवरों की जान ले सकता है। आप भी छोटी सी शुरुआत कीजिए, प्लास्टिक को अलग डस्टबिन में डाल के शुरू करें एक छोटी सी अच्छाई।
2: भगवान श्री राम कहते हैं, रूप और रुपया पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि गरीबी और बीमारी कभी पूछ कर नहीं आती। इसलिए हमेशा विनम्र रहो और जरूरतमंद की मदद करो।
3: कैसे?
4: कर्तव्य।
3: अरे, सड़क सुरक्षा का सबसे पहला और सबसे जरूरी पार्ट है कर्तव्य। ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने साथ साथ दूसरों के बारे में भी सोचें। अरे हाँ भाई साहब, अगर सड़क के बीचों बीच इस तरह से ट्रक छोड़ेंगे और चले जाएंगे तो पीछे से स्पीड में आ रही गाड़ी जो है ठोक देगी ना आपको। ये हमारा कर्तव्य है कि हम इस निर्धारित पार्किंग स्पॉट में ही गाड़ी को लगाएं। और अगर किसी कारण बीच सड़क में आपकी गाड़ी खराब हो जाती है तो हमेशा पार्किंग लाइट ऑन करें और वार्निंग ट्रायंगल गाड़ी से थोड़ी दूर जाकर के लगे, ताकि आने वाला जो ट्रैफिक है उसे पता चले कि सामने गाड़ी रुकी हुई है।
5: समझ गए सर।
3: तो याद रखना, कैसे कर्तव्य निभाएंगे तभी तो दूसरों से अपेक्षा रख पाएंगे।
6: चाय मांगी थी, क्या है ये?
7: ग्रीन टी, आपसे यही मिलेगी।
6: मम्मी की इन्फ्लुएंसर वो मिसेस शर्मा ऊट पटांग टिप्स देती रहती है, झेलना हमें पड़ता है।
8: अब क्या देख रहे हो पापा?
6: तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझ कर इन्वेस्ट करना चाहिए। बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा।
8: किससे?
6: अरे एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है।
8: पापा इन वीडियोस पे ना जाए, अपना रिसर्च खुद करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा।
7: ग्रीन टी नुकसान तो नहीं करती।
9: सोलह सोमवार के व्रत में पता नहीं कौन सी ऐसी गलती हो गई मुझसे जो तुम्हारे जैसा पति मिल गया मुझे।
10: अरे किस्मत वाली हो तुम, तुम्हें अपनी गलती तो पता है, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरे से ऐसी कौन सी गलती होगी जो मेरी तुमसे शादी हुई।

0: नमस्कार दोस्तों, 91.2 MHz पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और अब समय है दोस्तों कार्यक्रम हमारी सेहत का। तो दोस्तों ये कार्यक्रम हमारी सहयोगी संस्था ऑर्गन इंडिया द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है, जीवन एक अनमोल उपहार। ये कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से 91.2 MHz पर।
1: दोस्तों आप सुन रहे हैं सहयोगी संस्थान ऑर्गन इंडिया का कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार।

0: जीवन एक अनमोल उपहार है। अपने जाने के बाद किसी और के जीवन में उम्मीद भरें। अंगदान का संकल्प लें। अंगदान, जीवन दान।
1: मेरा नाम है पायल और हम सब ये आशा करते हैं कि आपका दिन बहुत अच्छे से गुजर रहा है। ऑर्गन इंडिया एक गैर सरकारी सामाजिक संस्थान पराशर फाउंडेशन की पहल है और हम हर कार्यक्रम में आपके लिए अंगदान, नेत्रदान और देहदान से जुड़ी हुई सूचना और अनोखी कहानियाँ लेकर आएंगे। आज एक ऐसी ही दिलचस्प कार्यक्रम के साथ हम फिर लौटे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सफर। आज के कार्यक्रम में ऑर्गन इंडिया से डॉक्टर सौरभ शर्मा हमारे साथ हैं और आज हम एक बार फिर से एक और प्रेरणा से भरी हुई कहानी लेकर आए हैं और वो हमें बहुत ही खास मेहमान से रूबरू करवाने वाले हैं। तो चलिए डॉक्टर शर्मा से बात करते हैं।
2: नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर सौरभ और मैं आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे इस खास कार्यक्रम में जो है अंगदान के ऊपर। इस कार्यक्रम का नाम है जीवन एक अनमोल उपहार। दोस्तों, आज के जो हमारे मेहमान हैं मैं उनके बारे में बता दूं कि ये उत्तराखंड पिथौरागढ़ से बिलोंग करते हैं और ये बहुत ही यंग डायनेमिक पर्सनालिटी हैं। स्पोर्ट्स में काफी इनकी रुचि है और इनका जो बिजनेस है वो भी स्पोर्ट्स के ऊपर ही है। इनकी स्पोर्ट्स गुड्स की एक शॉप है। तो देर न करते हुए हम बात करते हैं आज के मेहमान से और उनकी कहानी जानने की कोशिश करते हैं। आज के जो मेहमान है उनका नाम है अभिनव पांगते। अभिनव, हम आपका स्वागत करते हैं हमारे इस कार्यक्रम में।
3: थैंक यू सर।
2: अभिनव, तो मैंने इंट्रो में हमारे श्रोताओं को कुछ ज्यादा बताया नहीं है
3: जी।
2: मैं चाहता हूँ कि आप खुद से अपना एक इंट्रोडक्शन दें कि आप यहाँ पर इस शो में क्यों हैं।
3: जी, सबसे पहले मैं डॉक्टर सौरभ और ऑर्गन इंडिया का बहुत बहुत आभारी हूँ जिन्होंने मुझे इस प्रोग्राम में इनवाइट किया। मैं अभिनव सिंह पांगती पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ जो कि उत्तराखंड में है। मेरा ट्रांसप्लांट 2019 17 अक्टूबर को हुआ था फोर्टिस मोहाली में।
2: किस अंग का ट्रांसप्लांट हुआ था?
3: किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था मेरा 2019 में।
2: किडनी ट्रांसप्लांट
3: जो कि मेरी एल्डर सिस्टर ने डोनेट किया था
2: जी।
3: और इस किडनी डिजीज से पहले भी मेरी मदर जो है किडनी डिजीज से परेशान थी, जिनका ट्रांसप्लांट नहीं हो पाया, इस वजह से उनकी 2019 में इसी कारण डेथ हुई।
2: अच्छा, सेम ईयर में उनकी डेथ हुई। सो अभी आप थोड़ा सा अपनी बीमारी के बारे में बताइए कि आपको ये किडनी की प्रॉब्लम कब शुरू हुई और कितने टाइम के बाद लगभग आपको ट्रांसप्लांट के बारे में पता चला कि आप फाइनल जो सॉल्यूशन है वो ट्रांसप्लांट ही रह गया।
3: 2018 में मुझे अपनी किडनी की बीमारी के बारे में पता चला और बिकॉज ऑफ जो बॉडी थी यंग थी तो वो ये सब कुछ इजीली क्या कहते हैं इसके साइड इफेक्ट को आराम से झेल लेती थी, तो मुझे इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता था कि क्रिएटिनिन लेवल जो होता है वो लगभग 7-8 पहुंच गया था। तो लेकिन शुरू से स्पोर्ट्स और इन एक्टिविटीज में था तो इसमें इतनी मुझे प्रॉब्लम हुई नहीं। लेकिन एक दिन अचानक 2019 में स्टार्टिंग के 19 में मेरी आईसाइट जो थी वो अचानक ब्लर हो गई थी। मैं ड्राइव कर रहा था
2: जी
3: और अचानक ब्लर हो गई, तो मैं जैसे तैसे अपनी सिस्टर के घर पहुंचा और फिर उसके बाद मैं अपनी सिस्टर के साथ आई स्पेशलिस्ट के पास गया। तो उन्होंने पहले तो मेरा बीपी चेक किया। बीपी जो मेरा था उनकी मशीन में आ नहीं रहा था, नोट नहीं हो पा रहा था, तो सी थॉट कि क्या पता उनकी मशीन खराब है। और उन्होंने फिर चेक किया तो नॉर्मल थी मशीन, बाकी और जो पेशेंट
2: के ऊपर चेक किया उनके ऊपर किया तो
3: जी। तो फिर डॉक्टर ने बोला कि आपको किडनी की बीमारी हो सकती है, आप नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाइए एक बार
2: जी।
3: तो वहाँ गया तो वहाँ पता चला कि मेरी जो दोनों किडनी है वो ऑलमोस्ट 90% डैमेज हो गई थी।
2: तो कुछ कारण बताया डॉक्टर ने, क्योंकि आप तो स्पोर्ट्स में थे आप
3: जी।
2: तो आपका मतलब ऐसा ओवर वेट वाला केस भी नहीं था, डायबिटिक भी नहीं थे आप, फिर सडनली किडनी एकदम से खराब हो जाना, कुछ स्पेसिफिक कारण बताया हो डॉक्टर्स ने?
3: डॉक्टर ने ये बताया कि ब्लड प्रेशर का कारण हो सकता है क्योंकि मेरा बीपी हमेशा बहुत हाई रहता था। जब मैं डॉक्टर के पास भी गया तो उस समय भी मेरा 200 से ऊपर ही बीपी था।
2: ये फैक्ट होते हुए कि आप स्पोर्ट्स में और काफी फिजिकल एक्टिविटी में ऑलरेडी इन्वॉल्व थे, स्टिल आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हुई जो आपको कभी पता नहीं, देन उसके बाद क्या?
3: एक चीज ऐड करना चाहूंगा इसमें, कभी कभी मुझे लगता है कि काफी डॉक्टर्स जो हैं पेशेंट को अच्छे से सलाह नहीं देते, क्योंकि 2014 की एक मैं रिपोर्ट देख रहा था अपनी, तो उस वक्त मेरी जो मेरा जो क्रिएटिनिन था 2.5 था क्रिएटिनिन 2014 में,
2: मतलब 4 साल पहले
3: 2014, उससे 4 साल पहले। तो डॉक्टर ने ऐसा कुछ बताया नहीं, बस फीवर वीवर था मेरे को थोड़ा, तो दवाई दे दी उन्होंने, तो फिर नॉर्मल चलता रहा, ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुई नहीं मेरे को 4 सालों में। तो फिर वो मेरे ख्याल से वहीं से 2014 से ही मेरी किडनी में थोड़ा कुछ प्रॉब्लम होना शुरू हो गया।
2: जी जी, तो जैसे कई बार ऐसा होता है कि हम सडनली ऐसे डॉक्टर्स जब बताते हैं तो हमें बिलीव ही नहीं होता ये चीज़, हम सेकेंड और थर्ड ओपिनियन के लिए जाते हैं और हम डॉक्टर की उस पर शक करने लगते हैं कि शायद गलत रिपोर्ट्स आ गई हैं या गलत कुछ कंफ्यूजन हो गया है। आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था क्योंकि आउट ऑफ सडन ऐसी कंडीशन आ गई?
3: क्योंकि उससे पहले जो मुझे पता चला कि किडनी की बीमारी, तो उससे पहले हम पहले से ही मदर की बीमारी से बहुत जूझ रहे थे, तो अचानक डॉक्टर ने बोला कि मेरी भी किडनी खराब है, तो फैमिली और मेरे लिए तो बहुत मतलब ये शॉकिंग था कि फैमिली में दो दो किडनी डिजीज वाले हैं। तो फिर हम बहुत सारे डॉक्टर्स के पास भटके दिल्ली गए, देहरादून के सारे जो बड़े बड़े डॉक्टर थे उनके पास गए, इवन चंडीगढ़ मोहाली सब जगह गए। तो लास्ट जो ऑप्शन मुझे मिला कि किडनी ट्रांसप्लांट ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है।
2: डायलिसिस आपका स्टार्ट नहीं हुआ था?
3: नहीं, 1 साल तक तो मैं डायलिसिस में था।
2: अच्छा, ओके।
3: ऑलमोस्ट 1 ईयर। तो जो डायलिसिस का फेज था वो काफी हॉरेबल था मेरे लिए, बिकॉज एक बेड पे मैं रहता था, नेक्स्ट वाले बेड पे मेरी मदर रहती थी डायलिसिस के लिए।
2: ओके, दोनों साथ में करवाने जाते थे। तो अभिनव, यहाँ पर हम छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद अपनी इस चर्चा को जारी रखेंगे और आपकी ये कहानी आगे की ओर जानेंगे।
0: ब्रेक से पहले आइए सुनते हैं भजन सम्राट अनूप जलोटा जी का अंग दान से जुड़ा अपना व्यक्तिगत अनुभव।
4: कहते हैं जान है तो जहान है, बात सच है, लेकिन जब जान नहीं रही तो क्या हम किसी और को जिंदगी दे सकते हैं? जी हाँ, हम जाने के बाद अपनी आंखें किसी को दे सकते हैं, तो हमारी आंखों से वो दुनिया को देख सकता है, हम अपने दूसरे ऑर्गन दे सकते हैं, दिल दे सकते हैं, और किसी और को जिंदगी मिल जाएगी। मेरी वाइफ मेधा, उसका हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ और 13 साल उसने जिंदगी और गुजारी। ये तभी हो पाया कि जिसने हार्ट डोनेट किया था उसको ये अवेयरनेस थी कि मेरे जाने के बाद मैं किसी और को एक्स्ट्रा जिंदगी दे सकता हूँ। अगर ये चीज़ हम आप सब समझ जाएं, तो ना जाने कितने लोगों का संसार खूबसूरत हो सकता है हमारे जाने के बाद। हिंदुस्तान में हर साल करीब 5 लाख लोग इसलिए मर जाते हैं कि उनको वो ऑर्गन नहीं मिलते जिससे कि उनकी ज़िंदगी बच सकती है। आप ऑर्गन डोनेट करके हीरो बन सकते हैं। हीरो बनने के बहुत से तरीके हैं, ये भी एक तरीका है हीरो बनने का, कि जिंदगी भर कोई आपकी बातें करेगा। एक व्यक्ति 8 लोगों की जिंदगी बचा सकता है। 8 लोगों को आप ऑर्गन डोनेट करते हैं केवल एक बॉडी से, और यदि आप ऐसा करते हैं तो वो सब लोगों के तो आप हीरो हो गए। तो कितना अच्छा होगा कि इस बात को समझें और लोगों को समझाएं। हमारा मकसद यही है कि ये खबर सब तक पहुंचाएं, सब इस बात को जानें कि एक आदमी 8 लोगों की जान बचा सकता है, उन 8 लोगों के आप हीरो बन जाएंगे। तो आज ही फ्लैश करिए और हमारा साथ दीजिए।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं ऑर्गन इंडिया का कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार।
1: नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर सौरभ और मैं आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे इस खास कार्यक्रम में जो है अंगदान के ऊपर। इस कार्यक्रम का नाम है जीवन एक अनमोल उपहार। दोस्तों आज के जो हमारे मेहमान हैं मैं उनके बारे में बता दूं कि ये उत्तराखंड पिथौरागढ़ से बिलोंग करते हैं और ये बहुत ही यंग डायनेमिक पर्सनैलिटी हैं। स्पोर्ट्स में काफी इनकी रुचि है और इनका जो बिजनेस है वो भी स्पोर्ट्स के ऊपर ही है। इनकी स्पोर्ट्स गुड्स की एक शॉप है। तो देर न करते हुए हम बात करते हैं आज के मेहमान से और उनकी कहानी जानने की कोशिश करते हैं। आज के जो मेहमान है उनका नाम है अभिनव पांगते। अभिनव हम आपका स्वागत करते हैं हमारे इस कार्यक्रम में।
2: थैंक यू सर।
1: अभिनव, तो मैंने इंट्रो में हमारे श्रोताओं को कुछ ज्यादा बताया नहीं है
2: जी।
1: मैं चाहता हूँ कि आप खुद से अपना एक इंट्रोडक्शन दें कि आप यहाँ पर इस शो में क्यों हैं
2: जी। सबसे पहले मैं डॉक्टर सौरभ और ऑर्गन इंडिया का बहुत बहुत आभारी हूँ जिन्होंने मुझे इस प्रोग्राम में इन्वाइट किया। मैं अभिनव सिंह पांगती पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ जो कि उत्तराखंड में है। मेरा ट्रांसप्लांट 2019 17 अक्टूबर को हुआ था वो 40 मोहाली में।
1: किस अंग का ट्रांसप्लांट हुआ था?
2: किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था मेरा 2019 में।
1: किडनी ट्रांसप्लांट
2: जो कि मेरी एल्डर सिस्टर ने डोनेट किया था
1: जी।
2: और इस किडनी डिजीज से पहले भी मेरी मदर जो है किडनी डिजीज से परेशान थी जिनका ट्रांसप्लांट नहीं हो पाया इस वजह से उनकी 2019 में इसी कारण डेथ हुई।
1: अच्छा, सेम ईयर में उनकी डेथ हुई। सो अभी आप थोड़ा सा अपनी बीमारी के बारे में बताइए कि आपको ये किडनी की प्रॉब्लम कब शुरू हुई और कितने टाइम के बाद लगभग आपको ट्रांसप्लांट के बारे में पता चला कि आप फाइनल जो सॉल्यूशन है वो ट्रांसप्लांट ही रह गया।
2: 2018 में मुझे अपनी किडनी की बीमारी के बारे में पता चला और बिकॉज ऑफ जो बॉडी थी यंग थी तो वो ये सब कुछ इजीली क्या कहते हैं इसके साइड इफेक्ट को आराम से झेल लेती थी तो मुझे इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता था कि क्रिएटिनिन लेवल जो होता है वो लगभग 7-8 पहुंच गया था। तो लेकिन शुरू से स्पोर्ट्स और इन एक्टिविटीज में था तो इसमें इतनी मुझे प्रॉब्लम हुई नहीं। लेकिन एक दिन अचानक 2019 में स्टार्टिंग के 19 में मेरी आईसाइट जो थी वो अचानक ब्लर हो गई थी। मैं ड्राइव कर रहा था
1: जी
2: और अचानक ब्लर हो गई तो मैं जैसे तैसे अपनी सिस्टर के घर पहुंचा और फिर उसके बाद मैं अपनी सिस्टर के साथ आई स्पेशलिस्ट के पास गया तो उन्होंने पहले तो मेरा बीपी चेक किया। बीपी जो मेरा था उनकी मशीन में आ नहीं रहा था, नोट नहीं हो पा रहा था तो सी थॉट कि क्या पता उनकी मशीन खराब है। और उन्होंने फिर चेक किया तो नॉर्मल थी मशीन, बाकी और जो पेशेंट
1: के ऊपर चेक किया के ऊपर किया तो
2: जी
1: की।
2: तो फिर डॉक्टर ने बोला कि आपको किडनी की बीमारी हो सकती है, आप नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाइए एक बार
1: जी।
2: तो वहाँ गया तो वहाँ पता चला कि मेरी जो दोनों किडनी है वो ऑलमोस्ट 90% डैमेज हो गई थी।
1: तो कुछ कारण बताया डॉक्टर ने? क्योंकि आप तो स्पोर्ट्स में थे आप
2: जी।
1: तो आपका मतलब ऐसा ओवरवेट वाला केस भी नहीं था, डायबिटिक भी नहीं थे आप, फिर सडनली किडनी एकदम से खराब हो जाना, कुछ स्पेसिफिक कारण बताया हो डॉक्टर्स ने?
2: डॉक्टर ने ये बताया कि ब्लड प्रेशर का कारण हो सकता है क्योंकि मेरा बीपी हमेशा बहुत हाई रहता था। जब मैं डॉक्टर के पास भी गया तो उस समय भी मेरा 200 से ऊपर ही बीपी था।
1: ये फैक्ट होते हुए कि आप स्पोर्ट्स में और काफी फिजिकल एक्टिविटी में ऑलरेडी इन्वॉल्व थे स्टिल आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हुई जो आपको कभी पता नहीं, देन उसके बाद क्या?
2: तो एक चीज ऐड करना चाहूंगा इसमें, कभी कभी मुझे लगता है कि काफी डॉक्टर जो है पेशेंट को अच्छे से सलाह नहीं देते क्योंकि 2014 की एक मैं रिपोर्ट देख रहा था अपनी तो उस वक्त मेरा जो क्रिएटिनिन था 2.5 था क्रिएटिनिन 2014 में,
1: मतलब 4 साल पहले
2: 2014 उससे हाँ। 4 साल पहले तो डॉक्टर ने ऐसा कुछ बताया नहीं, बस फीवर वीवर था मेरे को थोड़ा तो दवाई दे दी उन्होंने तो फिर नॉर्मल चलता रहा, ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुई नहीं मेरे को 4 सालों में। तो फिर वो मेरे ख्याल से वहीं से 2014 से ही मेरी किडनी में थोड़ा कुछ प्रॉब्लम होना शुरू हो गया
1: जी। तो जैसे कई बार ऐसा होता है कि हम सडनली ऐसे डॉक्टर्स जब बताते हैं तो हमें बिलीव ही नहीं होता ये चीज, हम सेकंड और थर्ड ओपिनियन के लिए जाते हैं और हम डॉक्टर की उस पर शक करने लगते हैं कि शायद गलत रिपोर्ट्स आ गई हैं या गलत कुछ कंफ्यूजन हो गया है। आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था क्योंकि आउट ऑफ सडन ऐसी कंडीशन आ गई?
2: क्योंकि उससे पहले जो मुझे पता चला कि किडनी की बीमारी, तो उससे पहले हम पहले से ही मदर की बीमारी से को जूझ रहे थे, तो अचानक डॉक्टर ने बोला कि मेरी भी किडनी खराब है, तो फैमिली और मेरे लिए तो बहुत मतलब ये शॉकिंग था कि फैमिली में दो दो किडनी डिजीज वाले हैं। तो फिर हम बहुत सारे डॉक्टर्स के पास भटके, दिल्ली गए, देहरादून के सारे जो बड़े बड़े डॉक्टर्स थे उनके पास गए, इवन चंडीगढ़, मोहाली, सब जगह गए। तो लास्ट जो ऑप्शन मुझे मिला कि किडनी ट्रांसप्लांट ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है।
1: डायलिसिस आपका स्टार्ट नहीं हुआ था?
2: नहीं, एक साल तक तो मैं डायलिसिस में था।
1: अच्छा, ओके।
2: ऑलमोस्ट वन ईयर। तो जो डायलिसिस का फेज था वो काफी हॉरिबल था मेरे लिए, बिकॉज एक बेड पे मैं रहता था, नेक्स्ट वाले बेड पे मेरी मदर रहती थी डायलिसिस के लिए।
1: ओके, दोनों साथ में करवाने जाते थे। अभिनव, यहाँ पर हम छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद अपनी इस चर्चा को जारी रखेंगे और आपकी ये कहानी आगे की ओर जानेंगे। जी।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं ऑर्गन इंडिया का कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार।
1: नमस्कार दोस्तों, हम बात कर रहे थे ब्रेक में जाने से पहले, बता रहे थे कि किस तरह का पेपर वर्क का सामना उन्हें करना पड़ा था और कई बार उन्होंने ये चीज फील भी की कि जो हायर पोस्ट के ऑफिसर्स भी रहते हैं वो भी सब्जेक्ट को लेकर इतना ज्यादा जागरूक नहीं रहते और जो पेशेंट्स हैं उनको बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है इस वजह से। अभिनव, फाइनली जब ट्रांसप्लांट हो गया, तो जब ट्रांसप्लांट की प्रोसीजर हो रही थी, तो कभी आपकी दीदी ने कभी आपको बताया कि कभी दीदी को नेगेटिविटी का सामना करना पड़ा हो परिवार से या रिश्तेदारों से कि आप क्या करने जा रहे हो, इस तरह का ऐसा कुछ होता है या नहीं होता?
2: जी, ऐसा मेरी सिस्टर को कभी फेस नहीं करना पड़ा, क्योंकि जो भी मेरी फैमिली हो गई या मेरे इन-लॉज जो सिस्टर की इन-लॉज है उनकी फैमिली काफी सपोर्टिव थी। किसी ने एक बार भी ऐसा नहीं बोला कि तुम ऐसा क्यों करने जा रही हो, तुम क्या पता वीक हो जाओ, ऑर्गन दोगी तो आगे प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसा किसी ने नहीं बोला। शायद तो बहुत लकी हूँ मैं कि मुझे दोनों साइड से ऐसी फैमिली मिली।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे केसेस में ऐसा देखने को मिलता है कि जो इन-लॉज की फैमिली है वो काफी सपोर्ट नहीं करती कभी इन चीजों को लेकर।
2: मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, जो मेरी वाइफ है वो भी डोनर है।
1: अच्छा,
2: उन्होंने भी अपने जो एल्डर ब्रदर है उनको डोनेट किया था अराउंड 10 years पहले।
1: ओके ग्रेट, तो मतलब आप हस्बैंड एंड वाइफ दोनों एक डोनेट कर चुका और एक को मिली हुई है किडनी।
2: जी,
1: इसी तरह से हम लोग एक दूसरे को समझ सकते हैं कि और एक परफेक्ट एग्जांपल सेट कर सकते हैं तक दुनिया को दिखा सके कि कोई बुरी चीज नहीं है या फिर ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे आप में कुछ कमी आ जाए, आप बिल्कुल नॉर्मल अपनी लाइफ लीड कर सकते हो। अभिनव, अगर हम ये बात करें कि जब आपका ट्रांसप्लांट हो गया तो उसके बाद अब आपकी लाइफ में आपको क्या चेंजेस देखने मिलते हैं, अच्छे बुरे, और अब आपकी लाइफ किस तरह से आप देखते हैं?
2: आफ्टर ट्रांसप्लांट मुझे लगता है मैं लाइफ टूवर्ड्स लाइफ में बहुत पॉजिटिव हो गया हूँ। कोई भी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती है तो पहले मुझे ऐसा लगता था यार ये प्रॉब्लम आ गई अब कैसे फेस किया जाएगा, लेकिन आफ्टर ट्रांसप्लांट जो कि बहुत बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ा ऑपरेशन होता है, तो ये सब देख के फैमिली में मदर का मेरा ये सब देख के काफ़ी स्ट्रांग हो गया हूँ मैं आफ्टर ट्रांसप्लांट। और कुछ भी प्रॉब्लम्स आती है तो मैं इजीली उसको
1: टैकल कर लेते
2: विद स्माइल।
1: हेल्थ में आपके किस तरह का बदलाव आया, लाइक पहले की लाइफ स्टाइल में जब आप डायलिसिस के लिए जाते थे एंड अब जब ट्रांसप्लांट हो चुका है आपकी लाइफ में?
2: हेल्थ में मैं कहूंगा कि जितना मैं पहले फिट था उससे ऑलमोस्ट दुगना फिट हो गया हूँ।
1: जी,
2: अभी आफ्टर ट्रांसप्लांट जो मेरी डाइट है वो काफी अच्छी हो गई है, लाइफ स्टाइल काफी अच्छा हो गया है और लाइफ को देखने का नजरिया काफी बदल गया है।
1: और आपके डोनर जो हैं आपकी दीदी, वो उनकी तबीयत कैसी है, उनको कभी कोई सामना करना पड़ा हो कोई प्रॉब्लम का डोनेशन की वजह से?
2: डोनेशन की वजह से ऐसा कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी और अभी अपनी वो जॉब करती है, बहुत हैप्पी है, खुश है और प्राउड फील करती है कि वो एक लिविंग डोनर है और जो उनके सर्किल ऑफिस सर्किल या फ्रेंड सर्किल तो काफी अप्रिशिएट करते हैं लोगों को कि तुमने इतना अच्छा स्टेप लिया है, इतना डेयरिंग स्टेप लिया है, ऐसा बहुत कम लोग कर पाते हैं।
1: बिल्कुल अभिनव, अगर आप हमारे श्रोताओं को कोई संदेश देना चाहते होंगे अंगदान के ऊपर तो आप यहाँ पर इस मंच के माध्यम से दे सकते हैं उन्हें।
2: मैं सभी श्रोताओं को ये बोलना चाहूंगा कि आप सभी ऑर्गन डोनेशन के लिए प्लेज करें, क्योंकि सिर्फ हमारे देश में नहीं पूरे वर्ल्ड में काफी लोग इस जो लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट है उसके लिए वेट कर रहे हैं। ऑलमोस्ट अगर 100 लोग हैं तो 100 में से सिर्फ एक डिजीज किडनी डोनर होगा, तो ये अगर आप अनुदान के लिए प्लेज करेंगे तो शायद आगे ट्रांसप्लांट पेशेंट के लिए जो ट्रांसप्लांट कराना चाहते हैं उनके लिए आगे ऐसी कोई दिक्कतें नहीं आएंगी और सबसे बड़ी बात उनको डायलिसिस से छुटकारा मिलेगा जो कि बहुत मेरे नजरिए में तो बहुत हॉरिबल होता है। और आप अगर डोनेट करेंगे तो आप काफी लाइफ बचाएंगे, बस यही कहना चाहूंगा कि आप डोनेट करिए जितना हो सके।
1: बिल्कुल धन्यवाद अभिनव जी। यहाँ पर मैं एक छोटा सा करेक्शन करना चाहूंगा कि अभिनव जी ने जैसे कहा कि हर 100 में से एक डिसीज्ड डोनर ऑर्गन डोनर होता है, अगर मैं सही आंकड़ा आपको बताऊं तो हमारे भारत देश की जनसंख्या को अगर देखा जाए तो 140 करोड़ हम लोग हैं और अगर अंगदान की दर को देखा जाए तो हर 10 लाख लोगों में से नॉट इवन 1%, मतलब एक पूरा का पूरा पर्सन भी अपने ऑर्गन डोनेट नहीं करता। हमारी जो अंगदान दर है वो 0.40 पर मिलियन पॉपुलेशन है, मतलब हर 10 लाख लोगों में से 0.40% अपने ऑर्गन्स डोनेट करते हैं। अगर एक भी व्यक्ति ये अंगदान दर एक भी हो जाए तो हम काफी कुछ अचीव कर लेंगे और बहुत सारे लोगों की जिंदगी बचाने में सफल होंगे। और इफ नॉट के पूरी की पूरी चीज सिर्फ जिंदगी बचाने के ऊपर हो, किडनी ट्रांसप्लांट के ऊपर हो, हमें इस बात पर भी ध्यान देना पड़ेगा कि हमें अपनी लाइफ स्टाइल इम्प्रूव करनी पड़ेगी ताकि फ्यूचर में कम से कम लोगों को इन ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़े, ऑर्गन फेलियर के केसेस कम हो। पर जिनके हो गए हैं उनका तो कुछ नहीं किया जा सकता, बट फ्यूचर में हम जरूर इस बात का ध्यान रख सकते हैं कि अपनी लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव करें, अपनी डाइट को, अपनी फिजिकल एक्टिविटी को इम्प्रूव करें ताकि ऐसी एंड स्टेज ऑर्गन फेलियर वाली डिसीजेस से, बीमारियों से बचा जा सके और कम से कम लोगों को इन अंगों की जरूरत पड़े, ऐसी बीमारियां ही ना हो। तो ऑटोमेटिकली सप्लाई कम होते हुए भी डिमांड कम कर सकते हैं। तो अभिनव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में आने के लिए, आपने इतनी अच्छी बातें हमारे श्रोताओं को बताई। एंड श्रोताओं से भी मैं आग्रह करना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा नंबर्स में वो प्लेच करें और इस विषय के बारे में जानें और इस विषय के लिए आगे आएं।
2: एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, आफ्टर ट्रांसप्लांट लोग सोचते हैं कि ये बहुत वीक हो गया है
1: जी।
2: काफी लोगों के माइंड में रहता है कि अरे ट्रांसप्लांट हो गया तो ये बहुत वीक है, बेचारा कैसे कुछ कर पाएगा। लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा कि आफ्टर ट्रांसप्लांट, मैं स्पोर्ट्स में बचपन से ही रहा हूँ, तो आफ्टर ट्रांसप्लांट मैंने नॉर्मल लोगों के साथ खेल के भी दो टूर्नामेंट

0: खिलाए.
1: थैंक यू सर.
0: धन्यवाद. अगले एपिसोड में आप जल्दी हाजिर होंगे एक नई पर्सनालिटी को लेकर. उनके बारे में जानेंगे, उनसे जुड़ी ट्रांसप्लांट की कहानी को जानने की कोशिश करेंगे और कुछ नई चीज सीखेंगे. धन्यवाद.
2: आओ मिलके एक दिया जलाएं, अंतरतम के विश्वास संग बाती नेह की सजाएं. आओ मिलके एक दिया जलाएं, एकता का परचम चम ओर फहराएं. आओ मिलके एक दिया जलाएं, अंतरतम के विश्वास संग बाती नेह की सजाएं. आओ मिलके एक दिया जलाएं. दिया है हौसलों की उड़ान का, दिया है उत्सर्ग के सम्मान का, दिया है राम का रहमान का, दिया है समग्र हिंदुस्तान का. जीवन संगीत बजाएं, आओ मिलके एक दिया जलाएं, अंतरतम के विश्वास संग बाती नेह की सजाएं. आओ मिलके एक दिया जलाएं.
3: आज का ये विशेष कार्यक्रम हम यही समाप्त करते हैं और आपसे इसी संदेश के साथ विदा लेते हैं कि अगर हम अंग दान या नेत्र दान करें या अपने जाने के बाद किसी के जीवन में खुशियां भर सकते हैं तो हमें ये जरूर करना चाहिए. अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800120 3648 पर फोन कर सकते हैं या info@organindia.org पर ईमेल भी कर सकते हैं. यदि आप अंगदान का संकल्प लेना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट www.organindia.org पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं. हमारी तरफ से आपको एक ऑर्गन डोनर कार्ड और एक सर्टिफिकेट ईमेल किया जाएगा. इसके बारे में आप अपने परिवार को जरूर बताएं और अपने आसपास सभी को प्रेरणा दें. अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे. धन्यवाद. नमस्कार.

0: जीवन एक अनमोल उपहार है। अपने जाने के बाद किसी और के जीवन में उम्मीद भरें। अंगदान का संकल्प लें। अंगदान, जीवन दान।
1: रेडियो कार्यक्रम संबंधी अस्वीकरण द ऑर्गन ऑर्गन रिसीविंग एंड गिविंग अवेयरनेस नेटवर्क पराशर फाउंडेशन तथा रेडियो स्टेशन उसके मालिक कर्मचारी प्रबंधन प्रायोजक एवं सहयोगी जिन्हें यहां सामूहिक रूप से हम कहा गया है वार्ता कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ताओं या उनके अतिथियों द्वारा दी गई किसी राय अथवा वक्तव्य की कोई जिम्मेदारी नहीं लेते। वार्ता कार्यक्रम के दौरान उसमें उपस्थित अतिथियों समेत दिए गए कोई भी बयान या मत या विषय का हम किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं करते हैं। हम इसे सत्य कहकर इसका समर्थन नहीं कर रहे। इसका निर्णय आप स्वयं करें। यद्यपि हमारी कोशिश ईमानदारी से सच कहने की ही रहेगी तथा यदि कोई अपेक्षित सत्य हो तो उस पर सवाल करने का अधिकार हमारे पास रहेगा। हमारा इरादा किसी को बदनाम करना, किसी से भेदभाव करना, नफरत फैलाना या किसी को दुख पहुंचाने का नहीं है। इसके अलावा ये कोई चिकित्सीय सलाह नहीं है और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी चिकित्सीय उपचार से संबंधित नहीं है। हमारा विश्वास है कि ये हमारे बुनियादी अधिकारों का हिस्सा है और साथ ही हमारा कर्तव्य है कि हम इस जानकारी या राय का प्रसार करें। हालांकि हम अन्य लोगों की लिखित, बोली गई या सांकेतिक राय की जिम्मेदारी नहीं ले सकते।

0: गृहमंत्री अमित शाह आज गोवा के पणजी में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। इस परिषद में गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र के साथ दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। बैठक में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शामिल हैं। बैठक में केंद्र और राज्यों से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो रही है। गृहमंत्री आज गोवा राज्य पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज भी प्रदान करेंगे। ये सम्मान राज्य पुलिस बल के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात और महाराष्ट्र का दौरा करेंगे। वडोदरा में प्रधानमंत्री 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करके राष्ट्र को समर्पित करेंगे। महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का उद्घाटन करेंगे और सभा को संबोधित करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सुरक्षा उपायों और जारी बचाव अभियान की समीक्षा करने के लिए नई दिल्ली के सत्य निकेतन में ढही इमारत स्थल का आज फिर दौरा किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि मलबे का काफी हिस्सा दशकों पुराने बहुमंजिले भवन स्थल से हटा दिया गया है।
1: लगभग 80% मलबा हट चुका है, केवल बेसमेंट जितना मलबा रहा है। अभी इसमें 12 लोग मिले हैं, जिसमें से 6 डेड हैं और 6 अभी ठीक स्थिति में हैं। उन सभी के पेरेंट्स हमारे टच में हैं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनको किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, बच्चों को ठीक इलाज मिल रहा है।
0: मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन अधिकारियों की अनदेखी के कारण ये दुर्घटना हुई है, उन्हें तुरंत निलंबित किया जाएगा।
1: इस बिल्डिंग के मालिक पे कार्रवाई होगी और जो इसके आसपास की जितनी डेंजरस बिल्डिंग है उनको भी आइडेंटिफाइड करके ध्वस्त किया जाएगा। विशेष रूप से इस बिल्डिंग के बिल्कुल पीछे वाली बिल्डिंग को भी हमने खाली करवा दिया है और तुरंत प्रभाव में उसे भी डेमोलिश किया जाएगा।
0: इस बीच भवन मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। घटनास्थल पर बचाव और राहत कार्य जारी है। आज सफदरजंग अस्पताल से धौलाकुआं की ओर जाने वाले मार्गों पर यातायात प्रभावित रहेगा। प्रवर्तन निदेशालय ने उर्दू दैनिक अखबार मशरिक और उसके निदेशक तथा तृणमूल कांग्रेस के सांसद नदीमुल हक से जुड़े एक मामले में कोलकाता, दिल्ली और रांची में 7 परिसरों में छापेमारी की है। जांच एजेंसी ने बताया कि मामला सांप्रदायिक वैमनस्य को कथित तौर पर बढ़ावा देने संबंधी सामग्री के प्रसार और प्रकाशन तथा अवैध लेन देन के आरोपों से जुड़ा है। बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। गंगा और कई अन्य नदियां अब भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। हालांकि सोन नदी के जलस्तर में कमी से कुछ राहत मिली है। सोन नदी पटना के पास गंगा में मिलती है। इसमें पानी कम होने से दीघा तथा गांधी घाट पर गंगा के जलस्तर का दबाव कम हुआ है। प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य जारी है। उधर मध्य प्रदेश में मानसून एक बार फिर सक्रिय है। राज्य में अगले 4 दिन तेज बारिश का अलर्ट है। रीवा और सागर संभाग के 6 जिलों निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना और रीवा में तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री तथा विदेश मंत्री जेवर बिटल की आज नई दिल्ली में बैठक हो रही है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि श्री बिटल की ये यात्रा दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और मजबूत करने का अवसर है। ओपेक प्लस समूह के 7 प्रमुख देशों ने वैश्विक स्तर पर बनी अनिश्चितता के बीच अक्टूबर के लिए तेल उत्पादन नीति में कोई बदलाव न करने का फैसला किया है। इन देशों में सऊदी अरब, रूस, इराक, कुवैत, कजाकिस्तान, अल्जीरिया और ओमान शामिल हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज गिरावट का रुख है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 485 अंक गिरकर 76,000 पर और निफ्टी 145 अंक गिरकर 23,753 पर कारोबार कर रहा था। मध्य प्रदेश के उज्जैन में भगवान महाकालेश्वर की आज शाही सवारी का आयोजन हो रहा है। अंतिम शाही सवारी में भगवान महाकाल के 7 अलग अलग रूपों के दर्शन होंगे। सवारी शाम 4 बजे मंदिर से शुरू होगी और महाकाल घाटी, गुदरी चौराहा और रामानुज कोट होते हुए राम घाट पहुंचेगी। आकाशवाणी उज्जैन दोपहर 2 बजे से रात 10 बजे तक इसका लगातार प्रसारण करेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: क्या कर रहे हो?
1: डॉक्टर मुन्नी सही तो है, हमारा मुंह है हमारी सेहत का आईना। मुंह को स्वस्थ रखने से दांत और मसूड़ों के साथ पूरा शरीर स्वस्थ रहता है। मुंह में पायरिया होने से कमजोर नवजात शिशु, मधुमेह, दिल की बीमारी और मस्तिष्क आघात होने की संभावना बढ़ जाती है। मुंह का स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए दिन में दो बार ब्रश करें और खाने के बाद कुल्ला।
2: अगर दांत में दर्द हो या कोई भी तकलीफ हो तो तुरंत दांतों के डॉक्टर से मिलें,
1: क्योंकि स्वस्थ मुंह

0: अरे गोरिया प्लास्टिक कहाँ गई? आकर गोरिया, आकर आ आ।
1: गोरिया,
2: गोरिया।
3: गोरिया।
4: प्लास्टिक गोरिया जैसे नादान जानवरों की जान ले सकता है। आप भी छोटी सी शुरुआत कीजिए, प्लास्टिक को अलग डस्टबिन में डाल के शुरू करें एक छोटी सी अच्छाई।
5: भगवान श्री राम कहते हैं, रूप और रुपया पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि गरीबी और बीमारी कभी पूछकर नहीं आती। इसलिए हमेशा विनम्र रहो और जरूरतमंद की मदद करो।
6: कैसे?
7: कर्तव्य।
6: सड़क सुरक्षा का सबसे पहला और सबसे जरूरी पार्ट है कर्तव्य। ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने साथ साथ दूसरों के बारे में भी सोचें। अरे हाँ भाई साहब, अगर सड़क के बीचों बीच इस तरह से ट्रक छोड़ेंगे और चले जाएंगे तो पीछे से स्पीड में आ रही गाड़ी जो है ठोक देगी ना आपको। ये हमारा कर्तव्य है कि हम इस निर्धारित पार्किंग स्पॉट में ही गाड़ी को लगाएं, और अगर किसी कारण बीच सड़क में आपकी गाड़ी खराब हो जाती है तो हमेशा पार्किंग लाइट ऑन करें और वार्निंग ट्रायंगल गाड़ी से थोड़ी दूर जाकर के लग दें, ताकि आने वाला जो ट्रैफिक है उसे पता चले कि सामने गाड़ी रुकी हुई है।
1: समझ गए सर।
6: तो याद रखना, कैसे कर्तव्य निभाएंगे तभी तो दूसरों से अपेक्षा रख पाएंगे।
8: चाय मांगी थी, क्या है ये?
9: ग्रीन टी, आपसे यही मिलेगी।
8: भाई मम्मी की इन्फ्लुएंसर वो मिसेस शर्मा ऊट पटांग टिप्स देती रहती है, झेलना हमें पड़ता है।
10: अब क्या देख रहे हो पापा?
8: तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझ कर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा।
10: किससे?
8: अरे एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है।
10: पापा इन वीडियोस पे ना जाए, अपना रिसर्च खुद करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा।
9: ग्रीन टी नुकसान तो नहीं करती।
11: सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर।
0: 16 सोमवार के व्रत में पता नहीं कौन सी ऐसी गलती हो गई मुझसे जो तुम्हारे जैसा पति मिल गया मुझे।
12: अरे किस्मत वाली हो तुम, तुम्हें अपनी गलती तो पता है, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरे से ऐसी कौन सी गलती होगी जो मेरी तुमसे शादी हुई।

दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका, हाजिर हो गई हूं आप सभी के लिए कार्यक्रम लेकर पंजाबी गीतों का ये प्यारा सा सफर। बिल्कुल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से सफर में। तो आइए बढ़ते हैं इस सफर में आगे और आप सभी को लेकर चलते हैं एक खूबसूरत से पंजाबी म्यूजिकल ट्रैक के सफर में।

दोस्तों आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं पंजाबी गीतों का। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और कार्यक्रम में सुनाते हैं आप सभी को ये प्यारा सा पंजाबी गीत।

291.2 MHz पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन कार्यशाला और आप सभी पंजाबी गीतों का कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिता के साथ। तो आइए श्रोताओ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और एंजॉय करते हैं ये प्यारा सा म्यूजिकल ट्रैक।

दोस्तों, इस खूबसूरत से गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम पंजाबी गीतों में। तो आइए फिर से लेकर चलते हैं आपको एक और प्यारे से गीत की तरफ। एंजॉय कीजिए ये खूबसूरत सा पंजाबी गीत।

दोस्तों आप सभी अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ जुड़े हुए हैं 91.9 MHz पर। और आज का ये कार्यक्रम यानी कि पंजाबी गीतों का ये कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

दोस्तों पंजाबी गीतों का ये कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों पंजाबी गीतों का ये कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से। बिल्कुल आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला खूबसूरत सा पंजाबी म्यूजिकल ट्रैक।

दोस्तों पंजाबी गीतों का कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी आज ही दोस्त रुचिका के साथ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला पंजाबी गीत।

दोस्तों बहुत ही खूबसूरत सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया बिल्कुल, और आप सभी एंजॉय कर रहे हैं पंजाबी गीतों का कार्यक्रम अपने मनपसंद रेडियो रंजन धर्मशाला से। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और फिर से लेकर चलते हैं आपको एक और पंजाबी गीत की तरफ। इसी तरह से एंजॉय करते रहिए रेडियो रंजन धर्मशाला, गूंज अपने पन की।

0: हेलो।
1: अरे ये क्या कर रहे हो?
2: डॉक्टर मुन्नी सही तो है, हमारा मुंह है हमारी सेहत का आईना। मुंह को स्वस्थ रखने से दांत और मसूड़ों के साथ पूरा शरीर स्वस्थ रहता है। मुंह में पायरिया होने से कमजोर नवजात शिशु, मधुमेह, दिल की बीमारी और मस्तिष्क आघात होने की संभावना बढ़ जाती है। मुंह का स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए दिन में 2 बार ब्रश करें और खाने के बाद कुल्ला।
3: अगर दांत में दर्द हो या कोई भी तकलीफ हो तो तुरंत दांतों के डॉक्टर से मिलें,
2: क्योंकि स्वस्थ मुंह

0: गोरिया
1: गोरिया
2: गोरिया।
3: प्लास्टिक गोरिया जैसे नादान जानवरों की जान ले सकता है। आप भी छोटी सी शुरुआत कीजिए, प्लास्टिक को अलग डस्टबिन में डाल के शुरू करें एक छोटी सी अच्छाई।
4: भगवान श्री राम कहते हैं, रूप और रुपया पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि गरीबी और बीमारी कभी पूछकर नहीं आती। इसलिए हमेशा विनम्र रहो और जरूरतमंद की मदद करो।
5: कैसे?
6: कर्तव्य।
5: अरे, सड़क सुरक्षा का सबसे पहला और सबसे जरूरी पार्ट है कर्तव्य। ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने साथ साथ दूसरों के बारे में भी सोचें। अरे हाँ भाई साहब, अगर सड़क के बीचों बीच इस तरह से ट्रक छोड़ेंगे और चले जाएंगे तो पीछे से स्पीड में आ रही गाड़ी जो है ठोक देगी ना आपको। ये हमारा कर्तव्य है कि हम इस निर्धारित पार्किंग स्पॉट में ही गाड़ी को लगाएं। और अगर किसी कारण बीच सड़क में आपकी गाड़ी खराब हो जाती है तो हमेशा पार्किंग लाइट ऑन करें और वार्निंग ट्रायंगल गाड़ी से थोड़ी दूर जाकर के लगे, ताकि आने वाला जो ट्रैफिक है उसे पता चले कि सामने गाड़ी रुकी हुई है।
7: समझ गए सर।
5: तो याद रखना, कैसे कर्तव्य निभाएंगे तभी तो दूसरों से अपेक्षा रख पाएंगे।
8: चाय मांगी थी, क्या है ये?
9: ग्रीन टी, आपसे यही मिलेगी।
8: भाई मम्मी की इन्फ्लुएंसर वो मिसेस शर्मा ऊट पटांग टिप्स देती रहती है, झेलना हमें पड़ता है।
10: अब क्या देख रहे हो पापा?
8: तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझ कर इन्वेस्ट करना चाहिए। बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा।
10: किससे?
8: अरे एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है।
10: पापा इन वीडियोस पे ना जाए, अपना रिसर्च खुद करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा।
9: ग्रीन टी नुकसान तो नहीं करती।
11: सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर।
12: सोमवार के व्रत में पता नहीं कौन सी ऐसी गलती हो गई मुझसे जो तुम्हारे जैसा पति मिल गया मुझे।
13: अरे किस्मत वाली हो तुम, तुम्हें अपनी गलती तो पता है, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरे से ऐसी कौन सी गलती होगी जो मेरी तुमसे शादी हुई।

0: कान में दशमलव तो मेगाहर्ट्स पर ए है तो हाँ सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने मैं शशि हाजिर हुई हो कार्यक्रम ले करी माटी दी महक तशो तो माटी दी महक कार्यक्रम दे सफर च तो हाँ सारे दा ही स्वागत है। इसी स्वागत करने तो हाँ सारे भी कार्यक्रम दे सफर करने जुड़ी होने न तो जुड़ी होने तो जल्दी जल्दी कार्यक्रम च तुह सारे कॉल भी करी सकदे मैसेज भी जरूर जेड़ा इसे करी सकदे कने गलबात भी जरूर इस कार्यक्रम दे सफर च करी सकदे। श्रोता जेड़ा न से कॉल करना भी शुरू हुई है न तो जरूर तिना दी कॉल जेड़ा इसे तुह तक पहुँचा दे तिना दी आवाज़ से कुछ ते बोला दे न कने तिना दा ना क्या वे। हेलो
1: हेलो
0: हेलो नमस्ते जी
1: जी
0: नमस्ते जी स्वागत है जी तुहांदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च ठीक ठाक है ना जी। हां जी बिल्कुल ठीक ठाक है जी तुहां ठीक ठाक है ना जी। बरखा ता आज ता नहीं हुई
1: आज नहीं हुई है ना
0: जी जी आज नहीं हुई आज ता मौसम बड़ा प्यारा था ना जी
1: कल ता हुई ना
0: जी जी जी आज तो बड़ी प्यारी धूप लगी हो ना जी। जी जी जी तो हाँ दाढ़ी दी नोई ताजी सुनाई दिया अच्छा जल तक नवरात्रे नहीं लगे तल तक कोई नोई ताजी नहीं है जी। अच्छा डले दा नोन कल हुए 19 तरीक है जी जी जी राधा अष्टमी आले दिन है होना ना जी जी जी कुंडिया गीत सुनने जी तो हाँ
1: ओम नमः शिवाय जपति गोरा कलाम
0: जी जी ओम नमः शिवाय जपति कैलाशम गोरा
1: विच कैलाशम
0: जी जी थोड़ी दी आवाज तो हुंदी जेड़ा है ना से कट्टी कट्टी की ओदी जी
1: वाह सही कटोना चाहिए
0: शायद नेटवर्क इशू है कि पता नहीं।
1: हां जी
0: जी उन ठीक है जी जरूर तुहंदी जेड़ा फरमाइश है से तुह तक पहुँचा दे जी चुनने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तुहंदा। तो श्रोताओ तुह सारे इस वक्त कार्यक्रम सुना देना अपनी रेडियो दो शशि कन्ने तैसी कन्ने तुह सारे भी इस कार्यक्रम दे सफर च अहां कन्ने गलबात जेड़ा इसे जरूर करी सकते तो जरूर कार्यक्रम दा आगाज कर दे इस गीत कन्ने क्योंकि आगाज करना भी जरूरी है।

0: श्रोताओं तो सारे सुनिया एक गीत ये शुरुआत अहाँ इस गीत कने कीती है कने फिर ते अहाँ वापिस अपनी गलबात उपर पुजी न कने गलबात कने जेड़ा श्रोता न सभी जरूर कॉल करा दे न तिना दी कॉल भी जरूर अहाँ लेंदे न तिना दी जेड़ा गलबात है से तो हाँ तक पहुँचा दे न से कुथ ते बोला दे न कने तिना दा ना किया वे। हेलो हेलो हेलो नमस्ते जी।
1: नमस्ते सत जी, क्या हाल है
0: जी? ठीक ठाक है जी, तो हां ठीक ठाक है
1: ना? हां जी, हां भी ठीक ठाक है। क्या बोला
0: जी? यहां भी ठीक ठाक है जी।
1: हां जी
0: जी, तो अपना परिचय जरूर दे दिया जी।
1: मैं तंगलोटिया से बोला था, रमेश मेरा नाम है
0: जी। तंगलोटिया से बोला थे रमेश जी?
1: हां जी
0: जी। तो रमेश जी, तंगलोटिया लेंदे क्या हाल चाल है ना?
1: बढ़िया जी, धुप लगी नहीं सकने के पैसे करे
0: जी। अच्छा, धुप सेकने का काम लग गया तो? हां आज
1: आज का क्या क्या काम है दुकान पे? मैं कुछ कुछ से जा पंदी
0: जी। जी अच्छा, अपना जेड़ा काम है से प्यागा प्यागा ही कर लेंदे तो? हां
1: तो हां 6:30 बजे तो भी आंदे
0: जी। अच्छा, 6:30 बजे जेड़ा है से पटियां जो अपने जेड़ा दर्शन अंश करवाई दें तो? हां
1: हां जी
0: जी जी जी। ये तो हाँ बड़ी सही गल बोली, क्योंकि समय तो हाँ समय दी जेड़ा अहमियत है से जरूर समझते ना जी।
1: हाँ जी,
0: क्योंकि अगर तो हाँ समय अनुसार अपने काम नहीं करके तो पूरा ही जेड़ा अहाँ शेड्यूल बनाया होंगे दिने दा से पूरा ही बिगड़ी आंदा ना जी फिर।
1: बिल्कुल ठीक है
0: जी, क्योंकि अगर तो हाँ प्यागा दिख देना अगर अहाँ थोड़ा देर भी लेट हो जाते ना तो कुछ ना कुछ अहाँ का जेड़ा टाइम है से पूरा ही उथल पुथल हो जाता ना जी। जी जी सही ना, कि बरखा का भी कोई पता नहीं होता। फिर मौसम की गल करिए तो मौसम भी धुप च अगर इतनी ज्यादा धुप लगी हो तो धुप च फिर वैसे भी नहीं काम करे होंगे ना जी।
1: कोई पता नहीं लगता।
0: जी जी जी तो रमेश जी और नोईता जी
1: और तो सब ठीक ठाक
0: जी? ठीक ठाक है ना?
1: हाँ जी
0: जी, ठीक ठाक ही चाहिए ना जी।
1: बिल्कुल
0: जी, तो आज तो हाँ कुंदिया गीत सुनने जी अपनी पसंद च।
1: आज गाना सुना जी, उन कता जो नसबा है दूड़िया
0: जी।
1: हाँ जी
0: जी, तो हाँ एक जी
1: दूर वहां ना सामने डाला ना
0: जी जी जरूर जी
1: हां जी
0: जी जरूर। तो हंदी जेड़ा फरमाइश है से तो हां तक पहुंचा दे जी, जुड़ने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तो हंदा।
1: ठीक है जी
0: जी। तो श्रोताओं तो सारे इस वक्त कार्यक्रम सुना देना अपनी रेडियो दो शशि कन्ने फेसबुक लाइव भी तो हां सारे ही जुड़ी सकते कने तो हाँ सारे जो भी जितने भी लिसनर जेड़ा फेसबुक पर दिखा दे ना तिना जो भी शशि दा प्यार भरा नमस्ते है, प्यार भरा तिना दा स्वागत है कने तो हाँ सारे भी इस कार्यक्रम दे सफर चाह कने जुड़ी सकते। तो अगले जेड़ा श्रोता न सभी जुड़ चुके न तिना ते भी पुछते न से कुथु दे रहने वाले न। हेलो
2: हेलो
0: हेलो नमस्ते जी।
2: नमस्ते जी।
0: जी स्वागत है जी तुहांदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च। ठीक ठाक है ना?
2: हां जी ठीक ठाक जी।
0: जी तां आज तुहां अपना परिचय खुद ही देना है कि मैं पहचाना अस तो जो
2: आज बड़े दिन बाद बहुत अच्छी तरह पहचान दे ना
0: जी। मैं तो पहचान ही लेना जी तुहां कांगड़े ते बोला थे पवना जी।
2: हां जी
0: जी खाने पीने दा ही काम है और कोई काम नहीं है जी। चलो कोई काम करी लेना हा तो हां ना जी।
2: बस तो जरा के बर्तन पर सुख दी आता को की अपनी क्यारी क्यों लगांदे
0: जी? अच्छा, क्या कह दिया क्यारियां लगानी है तो? हां
2: ਮਤਲਬ ਸਾਗ ਲਗਾਈ ਦੇਣਾ, ਧਨੀਆ ਲਾਈ ਦੇਣਾ।
0: जी जी हाँ, ये तो तुम सही बोलिया, साग कने हरा धनिया कुछ ना कुछ अगर
2: जी
0: सब्जी च नहीं पवे तो सब्जी जी से अधूरी दे लगती है ना जी।
2: जी
0: जी कने इसी कने बरसात का मौसम चलिया है तो कुछ ना कुछ सब्जियां जड़ा ने से बिल्कुल बढ़िया काम मान ना जी। अगर
2: हाँ
0: तो
2: जी
0: हाँ अपनी घरे की गल कर देना तो हाँ लगाई हुई सब्जी वगैरह
2: सिर्फ हाड़ डानिया लगी और कोई सब्जी।
0: जी। अच्छा डानिया जेड़ा ने से लगियां
2: हाँ जी
0: जी। चलो यही बड़ी खुशी है कि कुछ ना कुछ सब्जी जेड़ा है से लगी हो घर है ना जी।
2: क्या, अपनी सब्जी होंगी ना बड़े टेस्टी होंगी।
0: जी तो चलो आज सब्जी दी हाँ गल की हो तो अपनी सब्जी दे क्या क्या फायदे होंगे।
2: बड़े फायदे भी होते थे बाजार में, तो पता नहीं क्या क्या कि बच्चा देखो ठीक है ला देखो कुछ अपनी ही होनी है देसी सब्जी है।
0: जी देसी सब्जी होनी है पर अगर हाँ इस सीजन की गल करिए तो उस तरीके ने सब्जियां जेड़ा न मतलब तैयार होनी थी उस तरीके ने है नहीं ना,
2: हाँ जी
0: क्योंकि हर सीजन की सब्जी जेड़ा से हाँ तैयार करते हैं ना जी।
2: हाँ जी जिन वाली जमीन ना जी पता कर लेंगे और जिन वाली क्या कहूंगा।
0: जी तो हल भी नहीं है ना जी।
2: हाँ जी क्या
0: जी
2: जमीन
0: जी
2: नहीं आना।
0: जी तो हाँ जेड़ा डानिया दी बेल लगाई हो तो सै तो हाँ कैश लगाई हो ते तू है थोड़ी बहुत जगह घरे वक्खे है की।
2: हाँ जी थोड़ी देर कच्ची है ना जमीन
0: जी जी
2: इस लगाइयो का ना, और कहा छोटे मोटे इसमें भिंडियां बताओ वगैरह लगाए चाहे तंगा त्रेस लगाइयो।
0: जी अच्छा
2: हाँ
0: जी चलो
2: जी तो
0: अच्छी
2: लाइन
0: गल।
2: पेपर देखो नहीं बनेगा इससे हो जाएंगे। हाँ
0: जी
2: जी
0: जी काम ही करना है ना जी, चाहे
2: हाँ
0: तो
2: जी
0: हाँ
2: करो।
0: करेटे च लगा, चाहे तो हाँ तरासले च लगा, चाहे तो हाँ अगर घरे बखे कोई भी जगह तो हाँ जो लगती है कि है लगाने लायक तो तुम हाँ जरूर तिहादा जेड़ा सदुपयोग ऐसे करी सकते हैं ना जी।
2: ये अपने घर दे तो पक्के भी अरे होंगे सभी बड़े घर लगते कि अपने लग गया है जी करना।
0: जी कने अगर हाँ चरेड़िया दा जेड़ा साग है ना जी
2: हाँ जी
0: तिदे पत्ते होंदे तिदे हाँ पकौड़ू बनान ता बेसने च तिदा जिड़ा मिक्सर है करी करी हाँ बनान देन ता सभी बड़े टेस्टी लग देन ना जी।
2: हाँ जी सह तक बाजार के लिए बना सब कुछ दिलाई बनाने।
0: जी कोई नहीं अगर तो हाँ नेड़ा होंदे ता मैं पहुंचाई आंदी तो हाँ ले।
2: कोई नहीं तो आप बोले था कि मैं जोन चाहिए
0: जी जी जी
2: इतना बड़ा कि तुम बोले
0: जी तो पवना जी आज तो हाँ कुंदिया जिड़ा गीत है से सुनना है तो हाँ
2: आज तो गाने का नाम बैंग बंडेरा पार। हाँ
0: जी। अच्छा बंडेरा पार जाने है तो हाँ आज
2: जी
0: जी जरूर जी तो हम जिड़ा फरमाइश रहे से तो हाँ तक पहुँचा दें जी। जुड़ने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तो हाँ दा
2: धन्यवाद जी।
0: जी तशो तो वहाँ भी चल देना गीत दी और फरमाइश दी और सुन देने सब प्यारी दिया फरमाइश जू तो सारी भी इंजॉय करा।

0: श्रोताओं तो सारे सुनिया ए भजन। इस भजन की फरमाइश अह तक पहुंची हुए मेघनाथ जी की कने सरैने वाले ने दाड़ी थे तो जरूर तिना तक अहाँ फरमाइश ये भजन पहुँचाया कने तो हाँ सारे भी इंजॉय किया। तो सारे भी मेरी गलबात कने जरूर जुड़ी सकते कने समय जड़ा से अगर तुह तक अहाँ पहुँचाए दिन क्योंकि समय के अनुसार चलना भी जरूरी है। 2:30 कार्यक्रम के सफर चो कने अगले जेड़ा श्रोता ने सभी हाँ कने जुड़ चुके हैं करते हैं तिना कने गल बात। हेलो
1: हेलो नमस्ते जी।
0: नमस्ते जी, स्वागत है जी तुहंदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च। ठीक ठाक है ना जी? तो हाँ अपना परिचय पहले ही दे था मेरे बोलने से पहले ही ना जी। जी जी जरूर, परिचय लेना जरूरी है ना जी। माया जी सुकड़े ते बोला दे जी। ता माया जी आज तो हाँ क्या काम कार छेड़िया क्या करा दे?
1: ओ मैडम जी यहाँ काम कार लाने यहाँ भी अपने ऐसे काम करने पड़ेगा ये अच्छा जो भी चल दे हम दिन भर
0: जी। अच्छा सेहत जिड़ा ऐसे तो हंदी थोड़ी ठीक नहीं रहती है?
1: नहीं ठीक आप दवाई दे खा रहे थे पूरे उठ गए खा रहा था कि फिर जो फिर फिर ना
0: जी जी चलो अपना जी जी जी अपना अपना जिड़ा ख्याल ऐसे रखने है कने रेडियो कने मन लगाई के रखा जरूर तो हम जी क्या बोल रहे जी? तो हमारी आवाज जिड़ा ऐसे क्लियर नहीं होती।
1: प्रोग्राम तो हमारा ही लेना वहाँ पर आई तो सभी सुखी हो गए था नहीं हो गए तो फिर सुखी ऐसा चलाए लेना
0: जी। अच्छा प्रोग्राम जिधर न से तो हम सुन दे ना
1: ऐसा तो मैं सुनना सुनना
0: जी।
1: अरे 5 बजे का भी चाहे 2 बजे का भी 7 बजे का भी
0: जी। अच्छा 5 बजे का भी सुन दे तो हाँ।
1: हाँ जी
0: आराधना आराधना का जिधर प्रोग्राम ऐसे सुन दे फिर 2 बजे तक सुन
1: दे जाओ
0: जी जी
1: जी
0: जी। ता माया जी और नोएडा जी
1: इसका नोएडा जी का जो कनेक्ट जो बढ़ रही है
0: जी
1: ना रोटी में दवाई ये लगे
0: जी जी। तो चलो अपना ख्याल रखना है कने क्योंकि सेहत ज़्यादा ज़रूरी है ना जी।
1: हाँ 5-6 साल हो जाए इसके
0: जी जी क्योंकि जिंदगी है जिंदगी दा कोई भरोसा नहीं है ना जी। उतार चढ़ाव जिड़ा से जिंदगी चले रहते ना जी। कहना अगर हाँ ये सोची कर चल देन तो हाँ हमेशा अपने मन च यही रखते न कि नहीं मैं बीमार है ज्यादा सोच विचार भी नहीं करना ना जी।
1: सोच विचार करना नहीं मैं
0: जी।
1: 6-7 खाना नहीं खाता जैसे तुम्हें मैं नजर के लिए थोड़े थोड़े मतलब खान पान ही कुछ हो गया था हम चले हो
0: जी जी जी
1: चलाइए जी जी,
0: जी। तो माया जी आज तो हाँ कुंदिया गीत सुनना पसंद करगी?
1: मैं वो सुनाए जी दिल कत्या निवाज
0: जी। कुंदिया
1: दिल कत्या निवाज सामने बड़े प्यारे लग गए
0: बिल पत्तियां दे बाग
1: सानू बड़े प्यारे लग गए
0: सानू बड़े प्यारे लगते जी। ये पहाड़ी गीत है?
1: हाँ जी फिर भी ये गई है ना
0: जी। अच्छा जरूर जी हाँ कोशिश कर देना तो वहाँ तक ये भजन पहुँचाने दीजिए
1: जी। बड़ा बड़ा धन्यवाद
0: जी। तो वहाँ भी बड़ा बड़ा धन्यवाद जी जुड़ने वास्ते जी। तो श्रोता तो वहाँ सारे कार्यक्रम सुना दिन माटी दी महक कने इसी कने अगले जेड़ा श्रोता न सभी यहाँ कने जुड़ चुके हैं ना कर दें तिना कने भी गल बात। हेलो
1: नमस्ते जी।
0: जी नमस्ते जी, स्वागत है जी तुहंदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च। ठीक ठाक है ना?
1: हाँ जी बढ़िया
0: जी। कुतो दे रहने वाले जी तो हाँ कने तो
1: हाँ हाँ सिद्धवाड़ी आ रहे
0: जी। अच्छा सिद्धवाड़ी ते बोला दे तो हाँ
1: जी
0: जी। ता क्या काम कार तो हाँ लगाया आज कना जिड़ा दिन ने सिख दिया की चलिया तो हाँ दा
1: बात सुबह ही हमने रेगर कम में लग गया काम
0: जी। अच्छा जी दास तो हाँ कुंदिया गीत सुनना पसंद कर गई जी
1: शरारा तेरा लारा जता बाला
0: जी जरूर है भजन तो हाँ तक पहुंचान दें जी जुड़ने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तो हाँ दा
1: थैंक यू
0: जी तशो तो वहाँ भी अपने कार्यक्रम दे सफर जो जरूर अगे बढ़ाने पर अगले जेड़ा श्रोता ने तिना कन्ने भी कर लैन देन गल बात हेलो
2: नमस्कार महाराज जी
0: नमस्ते जी स्वागत है जी तुहंदा रेडियो गुंजन धर्मशाला से ठीक ठाक है ना
2: बिल्कुल उस मालिक दी मौज है जी
0: जी जरूर मालिक दी मौज होना जरूरी है ना जी
2: जी महाराज
0: जी ता तो हम कुछ दे रहने आले ना करने तो हंदा ना किया जी
2: मैं जी डाट दा रहने आला है कने मेरा ना हरदेव है जी
0: जी डाट दे रहने आले हरदेव जी
2: जी महाराज
0: हरदेव जी डाट दा जेड़ा मौसम है सकदे है इस टाइम
2: इस साइड इस महाराज मौसम ऐसा कि बड़ा सोना बड़ा सुहाना जी इन्हें निकाल या बच्चा होंगा नी
0: जी
2: बड़ा सोना लगदा
0: जी जी
2: आज मौसम बड़ा सोना जी
0: जी
2: हां जी
0: तो मौसम सुहाना है ता कदिया तो हुंजो लगा था आज कने मौसम में दिखी के
2: मौसम में दिखी करी जनाब खुशी हो रही है
0: जी खुशी हो रही थी खुशी
2: बिल्कुल
0: जी जरूरी है ना जी
2: हां जी हां जी खुश रहना सदा के लिए अच्छा है
0: जी क्योंकि यहां खुशी ढूंढने दे चक्कर च जेड़ा अपने आसपास छोटी छोटी खुशियां आनी है तिना जो कुथी ना कुथी नजरअंदाज करिंदे ना जी
2: हां जी
0: जी छोटी छोटी जेड़ा खुशियां ना सही आंदे चेहरे पर स्माइल लेकर ही आनी है ना जी
2: जी महाराज
0: जी ता तो हां क्या क्या जेड़ा अपनी सब्जी है घरे लगाई हो है तो हां
2: जनाब सब्जी ता लगाई हो बस बाकी कुछ बनी है मिर्चा लगाया थोड़िया करी सह बचिया
0: नहीं
2: जी मिर्चा नहीं खाते जी
0: जी
2: महाराज अपनी सब्जी लगाने दे क्या फायदे हैं अपनी
0: सब्जियां
2: लगाने दे मते फायदे महाराज जी अपने घर लगाई तो दो छक बजे तोड़ी कने घर पजाई थी जे सब्जी नहीं लाई होगी तो बाजारे जाना पौना फ्री पैसे और खर्चने पौने बसा च बैठा फिर जा कुछ फिर सब्जी लेवा फिर घर पुजा बर्बाद होंगे घरे का देखभाल भी हो जाती बस जनाब जी महाराज
0: इसी बाजारे की सब्जी है या सब्जी मंडी की सब्जी है कुछ ना कुछ इंजेक्शन लगाई करी थी ना जो तैयार भी कित पैसे आज कने दौर की गल करिए तो कुछ ना कुछ हर सब्जी जेड़ा है से कोई ना कोई दवाइयां जेड़ा न या इंजेक्शन जेड़ा न से हर सब्जी च लगा दे है ना जी
2: जी जी महाराज बिल्कुल सच है जी ये गल
0: जी क्योंकि हां अपने घरे च ही दिखदे न हुन अगर धाना दी फसल है तो पहले होंदा था कि खुद ही जेड़ा धाना च का आंदा था तीसी सवारी लेंदे थे ना जी
2: जी महाराज जी
0: पर हुन ता हर चीज दी ठीक है फायदे भी है ना पर वह चीज दे नुकसान भी बड़े
2: हां जी नुकसान भी ज्यादा है जनाब
0: जी जी कने
2: हां जी आई ऐसीयां दवाइयां बनाई थी जिससे गा मकी आना
0: जी जी
2: कने एक गल और होनी जे दवा थी तेरे ही होगी जे पैर लगा ता पैरों च भी सड़न आ जा दी
0: जी
2: ए भी गल है
0: जी जी मतलब जी बड़ा ज्यादा नुकसान है कने बीमारियां दी यहां गल करिए ता छोटे बच्चे न चाहे बड़े न मतलब हार्ट अटैक ता नॉर्मल है ना जी
2: जी
0: बीपी शुगर दी यहां गल करिए ता भी नॉर्मल ही है ना जी
2: हां जी हां जी
0: जी ता दिखा फायदे भी बड़े न पर नुकसान भी यहां जो ही पहुंचा दा ना जी
2: हां जी एक गल और है जनाब
0: जी जी जरूर
2: जिस बीमारी नहीं होए सा सोचदा पिन जो बीमारी नहीं है तो इससे भी बीमारी नहीं है
0: जी
2: मैं तंदुरुस्त है ते भी तंदुरुस्त है
0: जी
2: ਪਰ ਦੂਏ ਦੂਏ ਇਹਨਾਂ ਦਿਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋਣ ਜਾਣਦਾ
0: ਜੀ
2: ਹਾਂਜੀ
0: ਜਿਹੜਾ ਦਿਲੇ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਣਦਾ ਨਾ ਜੀ
2: ਹਾਂਜੀ
0: ਦਿਲੇ ਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੀ ਜਾਣੀ ਸਕਦੀ ਨਾ ਜੀ
2: ਬਿਲਕੁਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ
0: ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਹਾਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਹਾਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਅਹਾਂ ਖੁਦ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਉਸ ਜੋ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣ ਨਾ ਜੀ
2: ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ
0: ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਅਹਾਂ ਕਿਸੇ ਜੋ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਹਾਂ ਜੋ ਵੀ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ
2: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ
0: ਅਗਰ ਅਹਾਂ ਕਿਸੇ ਜੋ ਇਤਨਾ ਕਰੀ ਅਹਾਂ ਕਰੀ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਹਾਂ ਕਿਸੇ ਜੋ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੀ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਅਗਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਾ ਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਂ ਅੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਸਹਿ ਰੱਖਾ ਨਾ ਜੀ
2: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਾ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹਦੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ
0: ਜੀ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਅਹਾਂ ਅੱਛਾ ਬੋਲ ਗਏ ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ
2: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ
0: ਜੀ ਤਾਂ ਹਰਦੀਪ ਜੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਂ ਕੁੰਦਿਆ ਗੀਤ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਜੀ
2: ਜਨਾਬ ਗੀਤ ਤਾਂ ਮਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਨਾਮ ਜਪ ਲੈ ਜਿੰਦੜੀਏ ਦੋ ਘੜੀ ਪਲ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹ ਹੈ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਣੇ ਗਏ ਹੋਏ ਭਜਨ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ
0: ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਭਜਨ ਤੁਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਜੀ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਂ ਦਾ
2: ਧੰਨਵਾਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ
0: ਤਾਂ ਸ਼ੋਤਾਓ ਅਹਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਜੋ ਅੱਗੇ ਬੜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਂ ਜੋ ਲੇਖ ਰੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਦੀ ਔਰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਸਭ ਪਿਆਰੀ ਦੀਆਂ ਫਰਮਾਇਸ਼ਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰਾਂ
3: इसमें अपना अपमान समझ और राजा कैलाश के महलों की चकाचौंध को देख

आंबुला दिन रेडियो गुंजन धर्मशाला तक ने तो हाँ सारे इस वक्त कार्यक्रम सुना दिन अपनी रेडियो दो शशि कन्ने फिर ते हाँ वापिस आई हो ना अपनी गलबात ऊपर गलबात ते पहले तो हाँ सारे सुनिया ये प्यारा दिया भजन इस भजन की फरमाइश शाह तक पहुँची हुए तंगलोटिया ते कने तिना दा ना वे रमेश जी तो जरूर तिना तक हाँ ये भजन पहुँचाया कने फिर ते हाँ थोड़ा दे आगे बढ़ते इन कने अगला जेड़ा गीत है अगली जेड़ा फरमाइश है इसे तुह तक पहुँचाते हैं क्योंकि समय के अनुसार चलना है तो जरूर अहाँ भी थोड़ा दिया समय के अनुसार अगे बढ़ते हैं कने फरमाइश अहाँ पहुँचा देन पवना जी तक से रहने वाले न कांगड़े ते।

कानून देश मिलप दो मेगा हर्ट्स पर ए है तो हाँ सार यदा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कशो तो 7 सितंबर दी यहाँ गल करिए तो कुथी ना कुथी जेड़ा मौसम है से थोड़ा दिया ठंडक जेड़ा से यहाँ जो देना उन शुरू करी ते है क्योंकि शामी दी गल करिए या प्यागा दी गल करिए तो कुथी ना कुथी जेड़ा मौसम है से प्यागा कन्ने संजा दा जेड़ा मौसम है से ठंडक आला जेड़ा से रहंदा है थोड़ा देया तो ज़रूर इसी कन्ने अपना जेड़ा ख्याल है से रखना भी यहाँ जो ज़रूरी है क्योंकि ख्याल रखगे ताई तो तुहां बाकी जेड़ा काम मन से करी सकते कन्ने सितंबर दा ही महीना है जेड़ा चलिया है कन्ने इसी कन्ने सर्दी खांसी जुखाम या वायरल दी यहाँ गल करिए कुथी ना कुथी हाँ सुनते न या अपने अंदर ही दिखते न तो कुथी ना कुथी सर्दी खांसी का जेड़ा वायरल है से जरूर चले तो अपना जेड़ा ख्याल है से रखना भी यहाँ वास्ते जरूरी है कन्ने सब्जियां दी जेड़ा हाँ गलबात करा दे थे क्योंकि घरे दी जेड़ा सब्जी है ते हदे बड़े सारे फायदे न कन्ने घरे दी सब्जी जेड़ा है से हम दे सेहत वास्ते सबसे बेस्ट है पर सब्जियां दी जालू हाँ गल छेड़ते न कई श्रोता जेड़ा न सहा कन्ने जुड़े तिना अपने अपना जेड़ा विचार हैं से जरूर तुहां तक पहुँचाए कि घरे दी सब्जी है तो अहां दा मन करदा तालू यहाँ सब्जी तोड़ दे कन्ने तालू यहाँ बनाई लैन दे इतना बिल्कुल सही गल है कि जालू अहां दा मन करदा तालू अहां सब्जी तोड़ दे कन्ने तालू ही से तैयार भी हो जाती चाहे से मिर्ची है चाहे से कद्दू है चाहे से करेले न चाहे से लौंकी है चाहे से घी है हर चीज़ या हर सब्जी की अहां गल करा देन लौंकी की अहां गल करिए जेड़ा बेल वाली सब्जी होंगे तो इस जेड़ा पानी है या फाइबर है से भरपूर मात्रा च होंगे तो से अहां दी जेड़ा सेहत वास्ते बिल्कुल सही होंगे कन्ने हल्की सब्जी होंगी कन्ने जेड़ा अहां दा पेट है पेट पेट जो एकदम जेड़ा ठंडा जरूर रख दिया ये सब्जियां जेड़ा लौंकी है तोरी दी अहां गल करिए तो जरूर तुहां भी अपने अपने घर है सब्जियां लगाई होनियां न कन्ने तुहां भी जरूर इस गल जो सुना दे होने न कन्ने थोड़ी देर खुशी तुहां जो महसूस हो दी होनी है हुण तुहां सोचे दे होने ने कि क्या खुशी खुशी तो होंदी है ना क्योंकि जलों अहां अपने घरे दी सब्जी जो दिखते न कन्ने से सब्जी लगती है तो कुथी ना कुथी अहां जो अपनी मेहनत पर थोड़ा दिया सफलता जालू अहां जो मिलती है चाहे अहां छोटा दे सब्जी लगा देने या कुछ भी लगा देने जालू से लगना शुरू हो जाती है तो कुथी ना कुथी अहां जो अच्छा महसूस जेड़ा से होंदा है तो जरूर तुहां अपना जेड़ा ख्याल है से रखना है कद्दू का जेड़ा नवा है से भी तुहां लगाई लिया होना है कन्ने अहां तो लगाई लिया तुहां भी लगाई लिया जरूर इसी कन्ने अहां फ्री थी अगे बढ़ते न कने तुहां जो अगली फरमाइश की ओर लेकर चल देन क्योंकि श्रोता इंतजार करा देन अगले श्रोता तक अहां ये फरमाइश पहुँचा देन कने बाकी जितने श्रोता न तिना तक भी अहां ये गीत पहुँचा देन।

अशुतो एकी तहां पहुंचाया माया जी तक सेनेने आले न स्कोते तीना तक कहां ये भजन ये फरमाइश पहुंचाई कने तो हां सारे भी इंजॉय की थी। इसी भजन ते बाद हां फिरी ते गलबात करा देन कि अपनी जेड़ा घरे दियां सब्जियां न तीना दे कितने सारे फायदे न। अगर तो हां सारे भी जान देन कि दवाइयाँ ते थोड़ा देहा पनेज रखना है या दवाइयाँ ते थोड़ी देर दूरी बनाई के रखनी है तो अपनी जेड़ा थाली है तिहादा रुख जेड़ा है से जरूर बदली लिया। हरी सब्जियाँ जेड़ा न से खाना शुरू करी दिया। पर बच्चों की गल करिए तो बच्चों के जेड़ा नखरे न से बड़े ज़्यादा होंगे न। अगर करेले न तो कई जो करेले पसंद नहीं आते, अगर लौंकी है तो कई जो लौंकी पसंद नहीं है, आलू हैं तो आलू कई जो पसंद नहीं है ना। हर किसी की अपनी अपनी पसंद है। पर अगर हाँ हरी सब्जी खाते न तो कुछ ना कुछ सियाहां की सेहत जो ठीक रखती है। कने तुम सारे भी यही चाहते न कि अहां की जेड़ा सेहत है से हमेशा फिट रहे। तो फिट रहने वास्ते तो हाँ जो अपनी थाली का जेड़ा रुख है से जरूर बदलना है। तो हाँ फास्ट फ्रूट जो ना बोला कने हरी सब्जियां जो हाँ बोला, क्योंकि हरी सब्जियां खाएंगे ताई तो तुम्हारी सेहत जेड़ा है से फिट एंड फाइन रहनी है। इसी कने हाँ अपने कार्यक्रम दे सफर जो अगे बढ़ाते न कने तो हाँ जो अगली फरमाइश की ओर लेकर चलते न। अगली फरमाइश वहाँ तक पहुँची होवे से भी जरूर तुम तक पहुँचाते न। व्हाट्सएप के माध्यम ने तिना का ना वे शमशेर सिंह जी कने से रहने वाले न दरगाटा ते तो जरूर तिना तक कहाँ आए

तो श्रोताओं तो सारे कार्यक्रम सुना दे थे आपने रेडियो दो शशि कहने। तो तुम सारे जो पता है कि इस कार्यक्रम का जोड़ा सफर 2 से 3 बजे तक है, तो हम समय जोड़ा इसे अहम जो बोला था कि उन तुह अनुमति जोड़ा इसे जरूर ले लिया, अनुमति भी जरूर लेनी है, कने दो जोड़ा बोल हैं गाने दे सभी तुह तक पहुँचाने। हरदेव जी की फरमाइश है गीत अहम कि तक पहुँचा देना। कने तो सारी इसी गीत कने अपनी रेडियो दो शशि जो

0: ये क्या कर रहे हो?
1: डॉक्टर मुन्नी सही तो है, हमारा मुंह है हमारी सेहत का आईना। मुंह को स्वस्थ रखने से दांत और मसूड़ों के साथ पूरा शरीर स्वस्थ रहता है। मुंह में पायरिया होने से कमजोर नवजात शिशु, मधुमेह, दिल की बीमारी और मस्तिष्क आघात होने की संभावना बढ़ जाती है। मुंह का स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए दिन में 2 बार ब्रश करें और खाने के बाद कुल्ला।
2: अगर दांत में दर्द हो या कोई भी तकलीफ हो तो तुरंत दांतों के डॉक्टर से मिलें,
1: क्योंकि स्वस्थ मुंह

0: गोरिया आ करा गोरिया आ
1: हटो हटो हटो हटो एले गोरिया।
2: प्लास्टिक गोरिया जैसे नादान जानवरों की जान ले सकता है। आप भी छोटी सी शुरुआत कीजिए, प्लास्टिक को अलग डस्टबिन में डाल के शुरू करें एक छोटी सी अच्छाई।
3: भगवान श्री राम कहते हैं, रूप और रुपया पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि गरीबी और बीमारी कभी पूछकर नहीं आती। इसलिए हमेशा विनम्र रहो और जरूरतमंद की मदद करो।
4: कैसे?
5: कर्तव्य।
4: सड़क सुरक्षा का सबसे पहला और सबसे जरूरी पार्ट है कर्तव्य। ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने साथ साथ दूसरों के बारे में भी सोचें। अरे हाँ भाई साहब, अगर सड़क के बीचों बीच इस तरह से ट्रक छोड़ेंगे और चले जाएंगे तो पीछे से स्पीड में आ रही गाड़ी जो है ठोक देगी ना आपको। ये हमारा कर्तव्य है कि हम इस निर्धारित पार्किंग स्पॉट में ही गाड़ी को लगाएं। और अगर किसी कारण बीच सड़क में आपकी गाड़ी खराब हो जाती है तो हमेशा पार्किंग लाइट ऑन करें और वार्निंग ट्रायंगल गाड़ी से थोड़ी दूर जाकर के लग दें, ताकि आने वाला जो ट्रैफिक है उसे पता चले कि सामने गाड़ी रुकी हुई है।
6: समझ गए सर।
4: तो याद रखना, कैसे कर्तव्य निभाएंगे तभी तो दूसरों से अपेक्षा रख पाएंगे।
7: चाय मांगी थी, क्या है ये?
8: ग्रीन टी, आपसे यही मिलेगी।
7: भाई मम्मी की इन्फ्लुएंसर वो मिसेस शर्मा ऊट पटांग टिप्स देती रहती है और झेलना हमें पड़ता है।
9: अब क्या देख रहे हो पापा?
7: तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझ कर इन्वेस्ट करना चाहिए। बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा।
9: किससे?
7: अरे एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है।
9: पापा इन वीडियोस पे ना जाए, अपना रिसर्च खुद करे। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा।
8: ग्रीन टी नुकसान तो नहीं करती।
10: पता नहीं कौन सी ऐसी गलती हो गई मुझसे जो तुम्हारे जैसा पति मिल गया मुझे।
11: अरे किस्मत वाली हो तुम्हें अपनी गलती तो पता है, मुझे तो

नमस्कार दोस्तों, ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त सुरुचिका, हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने।

दोस्तों बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और फिर से चलते हैं एक प्यारे से गीत की तरफ।

दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मनपसंद रेडियो कुंचन धर्मशाला और कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों आप सभी। गीत सुहाने नए पुराने इस प्यारे से सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और लेकर चलते हैं आप सभी को फिर से एक प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक की तरफ।

दोस्तों, नए पुराने गीतों का ये सफर आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। आइए एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये अगला खूबसूरत सा गीत। आप सभी इसी तरह से एंजॉय करते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने पन की।

आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं, गीत सुहाने नए पुराने, और आज के इस सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ।

दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मनपसंद रेडियो कुंचन धर्मशाला और कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों आप सभी गीत सुहाने नए पुराने इस प्यारे से सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

नमस्कार श्रोताओं, तो बच्चे गए जनाब चोर FM बैंड 91.2 MHz पर रेडी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून कर रो रहा हूँ। सचिन कपूर हाजिर बुझे को कार्यक्रम हिंदी अपने गप्पा लेकर बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है जी सभी होने वाले रहा सभी श्रोतागण रहा। कैसे हैं तो है सब, उम्मीद कर रो ठीक भूणे खरे भूणे हस्ट पुष्ट और तंदुरुस्त भूणे हैं। बहुत सी जानकारी लेकर के ना स्व है तुसु अगो आए हिन चौथों तुंदे रेडियो सेट में आए हाजिर बुझ गया हिन। इस कार्यक्रम में तो सब श्रोता सो के जुड़ सकते हैं, अपना पसंदीदा गीत के सो होने सकते हैं और अपने क्षेत्र जानकारी के सो वो के साझा कर सकते हैं। श्रोतों है गलरा विशेष ध्यान रहे कि जानकारी किया सो रेडियो में दस ने लाइक जरूर भुआ जानकारी किया सो मनु तकर ऐसे जानकारी बो कि मनु तहा जानकारी थों किया सो सतर्क भुजगान मनु तहा जानकारी थों किया सो सचेत भुजगान मनु तहा जानकारी थों किया सो अवेयर भुजगान अवेयरनेस चली है ना। और ऐसी जानकारी अगर तुसु लगता कि तुंदे एरिया मंच कुछ ऐसा दुर्घटनाग्रस्त या क्षतिग्रस्त कुछ हुआ है तो सो तो है असोगे इस नंबर मंच 7088889 पर नंबर रख मुके फिर 7088889 पर इस नंबर मंच तो है सो जरूर दस सकते हैं। इन बहरहाल कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा हल्ले करे और सचिन कपूर हाजिर हुआ बहुत सी जानकारी हिन जो आसु तुसु तक पहुँचानी हिन श्रोताओं और इन जानकारी जो तो है सब ज़रूर गौरसों की होने और आगाज भी असु जरूर करी ना कार्यक्रम रह श्रोतों आगाज तो बाद फिर अन्य जानकारी के नसो है तुसु तक जरूर पहुँच लै ता जनाब नंबर में दसी तो इस नंबर मंच तो है कॉल कर सकते हैं और अपना पसंदीदा गीत किया सो हो नहीं सकते हैं। ता चलिए जी श्रोतों बर्दन थोड़ा करे और हगू और हनंदन तू सभी जो है प्यारे दे गीत तुंदे सभी रे रेडियो सेट में वेड़ी गुंजन धर्मशाला मंच ए बनी रिया जुड़ी रिया असुस होगे रेडियो गूंज रिगूंज यही गूंज दे रहा तुसु सभी।

0: সতয়ে তুন্দ আপনা ভেরি গুঞ্জন ধরমশালা 91.2 আর হাওয়া তুন্দ আপনা আর সে ভেরি চোখি সচিন কাপুর বহুত বহুত স্বাগত হার্দিক অভিনন্দন আকমকে ফিরে সবই হুনে আলেরা সবই শ্রোতা গণরা তো তো সব শ্রোতা বখুবি এসো কি বনি সকদে হিন আপনা পছন্দিদা গীত কি এসো হুনে সকদে হিন শ্রোতা 7018 8109 পর নম্বর আকমকে ফিরে আমি রিপিট করো হ্যাঁ 7018 8109 पर तो है सब श्रोता कॉल कर सकते हैं और अपना पसंदीदा गीत किया सो सुनी सकते हैं। आइए श्रोताओं अगली जानकारी होगी कि ऐसो तुसो रूबरू करवंदे हैं इन द श्रोतागण के अंश वसो के कनेक्टेड हैं इन्हो कनेक्ट कर दें श्रोताओं और फिर जो जानकारी सो भी तुसो गया है जरूर शेयर कर ले साझा कर ले। नमस्ते जी वेड़ी गुंजन माँ स्वागत है।
1: हेलो
0: हेलो नमस्ते जी।
1: नमस्ते
0: वीडियो सेट री आवाज धीमी करी दिया जी हसु डबल होने कर दिया।
1: हेलो
0: हां जी नमस्ते जी कौन बोलन देन और कड़ी तो बोलन देन
1: अंखलेला तो बोलदा।
0: अच्छा क्या नाम तुंदा जी?
1: मेरा नाम रिहान है।
0: अच्छा कस स्कूल ले पढ़ देन?
1: ओं धोलादा पब्लिक स्कूल शाम नगर।
0: अच्छा कस क्लास समझ पर दिन
1: सत में अंदर
0: क्लास टीचर रह क्या ना
1: मेरी क्लास टीचर है ना सुचित्रा
0: सवित्रा।
1: हाँ जी।
0: अच्छा कौन दिन गेम पसंद है तू सो खेलना जी क्या है खेलना तो है अक्सर पसंद करते हैं
1: हम कोई गेम नहीं खेलना
0: ना खेल दे। अच्छा गेम मतलब स्पोर्ट्स आऊं बल्लू करदा कि
1: क्रिकेट है।
0: क्या बात है क्या बात है तो डेली प्रैक्टिस कर दें तो दिवास्ते खेलने वास्ते कि कदी कदी तो आरो मौका लगता तो सिर्फ तो आरो जो
1: मैं रोज करदा हूं तो
0: रोज खेल दें।
1: जी
0: बहुत अच्छी गला तक क्रिकेट में अपना फ्यूचर हेर दें कि सोच दें कि मु हगू तक खेलना यही सोच दे कि आगू कोई मतलब बस बारहवीं तक खेलना कि जाने तक खेल लेता है तक खेलना कोई गवर्नमेंट जॉब की सो लाने या फ्यूचर ही हेड
1: आखिरी तक
0: क्या बात
1: खेलना मतलब फ्यूचर है मेरा।
0: क्या बात है बहुत बढ़िया और ये जो तो एक गल बोले वाकई में बहुत बढ़िया और यह सुसभ भी वास्ते बड़े गर्व रे गल होने अगर तो है तस लेवल तक खेल ही लेंदे हैं नेशनल इंटरनेशनल अगर तो खेल ही लेंदे हैं। चलिए फिलहाल ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर कुंडने गीत ढूंढना पसंद कर ले
1: लंकर राजा।
0: चलिए ठीक है जी जरूर ढूंढ ले तू सुई गीत
1: ठीक है
0: धन्यवाद। ताशो तो ये कार्यक्रम जो हगो बढ़ंदे हैं और वाकई में जने पंचमी छेमी अंदर बच्चे के पुजगन दे नशो तो तो बाद गया सो अक पेरेंट रे दायित्व बन गन दा कि बच्चे रे माइंड सेटअप किया सो क्लियर हो जगे। अच्छा बच्चे का जो माइंड सेटअप आ सो क्लियर हो गई तो सी फ्यूचर में करना किया लेन दे बच्चे दसवीं करी भी चुक रहे बंदे लेकिन तो ये ना पता कि मतलब ग्यारहवीं सू क्या रखना मेडिकल रखना नॉन मेडिकल रखना आर्ट्स रखना कमर्स रखना की एक्चुअली में है ना सो हाली डिसाइड ही लग रहे बंदे करना तो ये मुझे बड़ी अच्छी यारे इस बच्चे री गल लगी कि फ्यूचर है कि सो क्रिकेट में हेरू कर दे चलिए प्रोफेशनल अकेडमी शायद इं ज्वाइन कर रहे कि ना कर रहे ये तो पता ना लेकिन अगर ये हूँ कर दें और यहाँ पेरेंट हूँ कर दें और अगर तुसू लगता कि तुम्हारा बच्चा वाकई में ही मतलब स्पोर्ट्स चो क्रिकेट चो कि असो इतना प्रेम करू करता है और इस लेवल तक गाने तैयार है तो फिर भी तुम्हारा भी आके दायित्व बनेगन दा कि अपने पेटा बनी करे अपने पेटा बनी करे कि आ सो बच्चे रे फ्यूचर रे बारे कि असो जरूर सोचा और जरूर करा। बहरहाल तो सब बन रहे इस समय FM बैंड 91.2 MHz पर रेडी गुंजन धर्मशाला सो गया और आऊँ सचिन कपूर हा श्रोतों फरमाइश और दौर पूरा कर देन और हाजिर बुंदन फिर कुछ एक और खास जानकारी लेकर बने रहे जुड़े रहे असु सो गए श्रोतों यही रेडियो गुंजन रे ए गूंज के असो जरूर रहने हाँ और इस ही गूंज सो की तो सुबह किया सो जरूर बढ़ना हाँ श्रोतों ही तो हूँ दे रहे तुम्हारा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला गूंज

0: शोतो एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर रेडी गुंजन धर्मशाला तो है सब ये ट्यून कर रो और कार्यक्रम इन दी अपने गप्पा गैन सो बिल्कुल लाइव चल रही इन तुंदे रेडियो सेट में रेडी गुंजन धर्मशाला मंच हो तो है सब श्रोता सो के जरूर जुड़ी सकते हैं नंबर तू होगी शेयर करो करता है 7081809 पर नंबर आक मौके फिर आऊँ शेयर करनो हाँ 7081809 अक पर तो है सब श्रोता कॉल कर सकते हैं और अपना पसंदीदा गीत के श्रोताओं से हो नहीं सकते अपने क्षेत्र जानकारी अवोगे साझा कर सकते हैं। तो चलिए जी अब है कर दिन जानकारी साझा कुछ टेक्निकल इशू आ ठेरी वजहों के श्रोताओं से गीत बंद बुच गोहा और पूरे की तरह आनंद किया सो तो है शायद ना ले पाए बुन और सो तो अक्सर जिंदगी में जाए बुंदा ना जो है ना सोच रो बुंदा सो जरूर बुंदा है ना। तो है फिलहाल इन द अगले श्रोता असोगी कनेक्टेड हिन पुछ दिन कौन बल्लू दिन और कड़ी थो बल्लू दिन और क्या ना यारा नमस्ते जी।
1: अंजू बोल रही मैडम।
0: हाँ जी अंजू जी नमस्ते।
1: नमस्ते जी
0: ठीक ठाक ना अंजू जी।
1: बस बढ़िया जी।
0: अच्छा तो कितना टाइम हुआ अंजू जी कार्यक्रम जो हुंदा है
1: आप तक सुन दी मैं बोल दी सुन दी मैं एक कार्यक्रम तो 2-3 साल।
0: अच्छा अच्छा अंजू जी क्या करते हैं और अंजू जी राज के दिन के दे गोवा
1: बड़ा अच्छा तक कर भी निकल गई है।
0: हाँ जी
1: काम कर दे कि निकल गया।
0: अच्छा अच्छा चलिए जी अंजू जी कौन देने गीत होना पसंद कर ले तो है
1: जो शिव जी भगवान का कोई अच्छा जे गीत सुनाए दे बदी
0: शिव जी भगवान का।
1: हाँ जी हाँ
0: ठीक है अंजू जी जरूर होने ले ना।
1: ठीक है थैंक यू
0: वेलकम जी वेलकम। एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर हेवेरी गुंजन धर्मशाला और आऊँ सचिन कपूर अशोतों लाइव कार्यक्रम चल रहा है जानकारी रहा सिलसिला के सो तुझ हो गया जरूर खोल ले और इन अगले श्रोता फिलहाल अस होगी कनेक्टेड हैं। नमस्ते जी। हाँ जी नमस्कार जी नमस्कार ठीक ठाक। हाँ जी आवाज़ बड़ी घट ही छुंदी जी तुंदी। हाँ जी हाँ जी बड़ी लगन दा बड़ी दूरों बल्लों दे
2: मैं तो रेडियो बक्खे बैठे
0: चले जी कौन दिन आ गीत होना पसंद कर ले
2: रमाणी माता सुनाई दिया।
0: ठीक ठीक है जी जनाब जरूर सुन ले।
2: धन्यवाद
0: धन्यवाद जी धन्यवाद। तो चलिए श्रोतों कार्यक्रम जोग बढ़ते हैं और जानकारी होगी तो सो रूबरू करवाते हैं। जिला मुख्यालय धर्मशाला वसोगी लगदे खनियारा रकड़ सलेड गोदाम कंड बगियाड़ा खाटी जिया पालमपुर मार्ग रा अक हिस्सा के सो पूरी तरीके होगी धसने तो वाहन रे आवाजाही किया सो प्रभावित बुचग छोरे हर्षोतों बगियाड़ा वसोगी बड़े भूस्खलन में के हर्षोतों सो भूध्वस भूस्खलन तो के सो सड़क मार्ग फिलहाल के सो केवल दो पहिया वाहन इतनी मुश्किल तो किया सो निकले पाव करदन और हादसे व खतरा के श्रोतों सो तड़ी इस समय बन रहा इस सड़क धर्मशाला रे खनियारे रकड़ योल पल्लन सलेड़ गोदाम अंदराड़ कंड कंडियाड़ा खाटी जिया बुंदे नगरी राख और अख दर्जन करीब ग्रां रे बुंदे बुंदे जी निकलते पालमपुर क्षेत्र जो कि असो जोड़ दिया सड़क धसने तो इं क्षेत्र रे सैकड़ों मनु रे आवाजाही किया सो प्रभावित होने हर्षो तो स्थानीय मनु अगे सो प्रशासन और लोक निर्माण विभाग धर्मशाला तो मार्ग रे स्थिति जो जल्द जायजा लेकर के असो सड़क जो दुरुस्त करने वास्ते के असो मांग करे हाँ ताकि किसी भी बड़े हादसे में के असो बचे जा सके है ना कोई बड़ा हादसा के असो तड़ी ना बो हर्षो तो और यातायात सामान ने किया सो बुझ गया। अच्छा ऐसी अपेक्षा है भी करते हैं धर्मशाला रे ग्रामीण परिवेश री लाइफ लाइन कटी कर खनगर का मन उगेन सो परेशान हिन ता है भी यह गलत हों बिल्कुल लह चंद है हिन कि सड़क के जल्द तो जल्द पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के सो और जो संबंधित डिपार्टमेंट हिन और भी पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है ना और प्रशासन के सो जल्द तो जल्द ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਜੋ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤਰੇ ਸੈਂਕੜੋ ਗ੍ਰਾਹਕ ਹਨ ਸੋ ਤਿੰਨੋ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਬੋ ਜਾਂ ਤਿਆਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮੰਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ ਤਿਆਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਤਿੰਨੋ ਕੀ ਆ ਸੋ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਬੁਝੇਗਾ ਅਚਾਨਕ ਜੋ ਕਿ ਅੰਧੇਰੇ ਮੈਂ ਇਕਦਮ ਬਲਾਈਂਡ ਬੰਦਾ ਔਰ ਇਕਦਮ ਅਗਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੋ ਗਈ ਲਾਈਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਜਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਸ਼ੋਤੋਂ ਸੋ ਬੁਝੇਗਨ ਦਿੰਦਾ ਐਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਹ ਰੋਡ ਕਿਆ ਸੋ ਠੀਕ ਬੁਝੇਗਾ ਅੱਛਾ ਬਹਰਹਾਲ ਕਾਰਿਕ੍ਰਮ ਇਹਦੀ ਆਪਣੀ ਗੱਪਾਂ ਤੋਂ ਸਭ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਨਾ ਆਰਜੇ ਸਚਿਨ ਕਪੂਰ ਸੋ ਗਏ ਲੇਕਰ ਹੀ ਚਲਦੇ ਹਨ ਸ਼ੋਤੋਂ ਤੋਂ ਸਭ ਵੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਾਰਿਕ੍ਰਮ ਮੰਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰੇ ਔਰ ਹਗੂੰ ਔਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਿ ਅਸੋਂ ਚੱਲੀ ਰਹਿਣਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਪਿਟਾਰਾ ਸ਼ੋਤੋਂ ਇਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹਾਂ ਤੋ ਸਭ ਬਣ ਰਹੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਚਿਨ ਕਪੂਰ ਸੋ ਕੇ ਗੂੰਜ ਆਪਣੇ ਬਣ ਰਹੀ ਔਰ ਗੂੰਜ ਜਿੱਤੇ ਵੀ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਇਹਦੇ ਸ਼ੋਤਾਗਣ ਪਿਆਰੀ ਸਭੀ ਰੇ ਆਈਏ ਸ਼ੋਤੋਂ ਲੇਕਰ ਚੱਲਦੇ ਤੂੰ ਸਭੀ ਸ਼ੋਤਾ ਜੋ ਇਸ ਗੀਤਾਰੀ ਕਿਨਾਰੀ

0: चिंता ना करो।
1: शो तो एफ एम बैंड 91.2 MHz पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून कर रो और कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा गेंद सो चल रही हैं। आइए श्रोतों कार्यक्रम जो आगू बढ़ते हैं और कार्यक्रम मन जिंद अगले श्रोता सूगे कनेक्टेड हैं लेकिन डिसकनेक्ट हुए श्रोता इसको मिस कॉल मारू कर दें मिस कॉल नाम मारी करी आई थिंक रिजेक्टेड पूछ गया किसकी कारणवश किया संदेश श्रोता कॉल करू कर देती है लेकिन रिजेक्ट पूछ गया लेकिन अगर फिर दुआली कॉल कर दे हिंता है पूरे कनेक्ट करने रे कोशिश किया सो जरूर कर ले और बल दिन ना की कोशिश करने वाले रे हार हार कदी ना बंदे श्रोता हूँ कोशिश करा बिगड़ू रिश्ते भी कहने सो खरे बने गंदे हिन कोशिश करा बिगड़ रही बंदूक का भी कहने सो भी सुधरी गंदी ने है कोशिश करा प्यारा सो के श्रोता हूँ ता हर एक चीज़ किया सो खरे बुचगन देहा चीज़ा कहना सो स्टेबल बुचगन दी हिन बस चक्कर तो यानी कि कोशिश करना पैनी और ऐ कोशिश ना कर देन मनो है ना कोशिश तो करना पैनी है। बहरहाल कार्यक्रम जो हगो बढ़ते हैं और अगली जानकारी होगी तुसु रूबरू करवाते हैं श्रोतों कर खाए रू कर देना है कि आजकल अंडे के नसो नकली इच्छू कर देन है ना वीडियो मंच अब करखा क्या नकली करखा क्या नकली फिलहाल इन नकली चीज़ें रे बीच किया यानी कि पनीर के अशतों से रे दाम माँ उछाल के सो चले हा हर चीज़ें महंगी बुच्चू कर दी इन शतों हर एक चीज़ की सो आजकनी रेट में महंगी बुच्चू कर दी लेकिन ये जो प्राइवेट नौकरी करू कर देना है सब इं माँ कोई महंगाई किया सो ना नज़र इंदे और ना मद्दे रखते हैं है ना ये बड़ी सटीक नहीं गल है शोतों की पनीर रे दाम के ना 130 थो सीधा 400 रुपये किलो तक किया सो पूजी गुन लेकिन मजाल से किया सो जो भी इंदे भाई प्राइवेट जॉब करू कर दें सभी है ना सो मजाल से तड़ी भी कुछ इंक्रीमेंट किया सो लगे अच्छा बेचारे कोई 10-10 साल ला थो लग रहे कोई 15-15 साल ला थो लग रहे कोई 20-20 साल ला थो लग रहे कोई 5-5 साल ला थो लग रहा है इंक्रीमेंट रे ना आ रहा गया सो जीरो बंदा तड़ी शतों कुछ ना मुलता है ना और ये महंगाई दिन प्रतिदिन की सो बड़ो ही कर दे अपनी चरम सीमा पर किया सो चल रही है पुजू ही कर दे और चल रही है ना और यह महंगाई वे दौर में किया सो तो सो बाकी मैं थोड़ी करी अगर तो है इम्बालन कि हाँ बड़े ज़िंदगी की सो सॉफ्टली चलने अगर तो है बगैर पैसे मतलब गल करूँ कर दें तो पैसे इज मोस्ट इम्पोर्टेंट और ऐसा नहीं कर खा बहुत अच्छी सैलरीज भी हिन कर खा कसकी ऑर्गेनाइजेशन में करका स्कूल है आकर का और जड़िया है लुगुरन जड़ी जड़ी भी है जड़ी जड़ी भी इंदा वर्क प्लेस आ करखा अच्छी भी हिन तनख्वाही तो करखा नहीं बिन लेकिन महंगाई की असो तो बड़ो ही कर देश हो तो देश है दो ही बड़े राज्य में उत्तर प्रदेश में महाराष्ट्र सो गए हिमाचल में आके असो सो तो अब पनीर हरी बिक्री पर रोक तो बाद अब ऐसी जो कि सब ज़िला व बाजार में असली पनीर की कीमत पर भी किया सो हिरने जो मुलना हाशत हो प्रदेश में खुले पनीर री दर करीब 320-330 रुपये प्रति किलो भी किया सो बुझ गए प्रति किलो रे किया सो थी सो तो है ना करका 320 मुड़े गंदो करका 330 मुड़े गंदा तो प्रति किलो भी है ना तत्थों बाद सो तो बड़ी करी अब की है 400 रुपये प्रति किलो की असो पुज गए हशतों इतों पनीर खरीदने वाले उपभोक्ता भी जेब पर सीधा असर किया असो प्यो करता हा जिला में प्रशासन री और थों खुले पनीर री अधिकतम दर 330 रुपये प्रति किलो तय करे थे हालांकि मौजूदा समय में खुले पनीर जति में कोई शुद्धता भी पहचानने ठेरी बिक्री पर रोक हाशतों पनीर बेचने वाले जो कि सो लेबलिंग व शुद्धता लेबलिंग व शुद्धता रमार्क व कुंदना पनीर जनता जो परोसो कर दें ठेरी जानकारी स्पष्ट देना किया सो अनिवार्य है इतों बाद ही किया अब बाजार में अधिक कीमत वसूली किया सो सकते हैं और अगर शिकायत आए तो फंसे भी सकते हैं बहरहाल शोतों 400 रुपये किलो दसो कर दें कीमत पनीर री त चलिए तो सब बन रहे समय आरजे सचिन कपूर सो के कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा गेम सो चल रही हिंद शो तो तुंदे वीडियो सेट में चलिए बनी रहा जुड़ी रहा सुसो की शो तो ये लेके चल दे तू सब भी जो अब इस तरीके नारी।

0: শত এফএম ব্যান্ডে কে অনুদির সামলা বা 2 মেগাহার্টজ পার রেডিও গুঞ্জন ধারমশালা তো সবই টিউন করো আর কার্যক্রম ইন্দি আপনি গপ্পা গান সো বিলকুল লাইভ চল রিন তো রেডিও সেট মা শত কার্যক্রম যা হগু লেকে চলতে হিন তো সব শ্রোতা সোগে জরুর বনে সকতে জুড়ি সকতে 7018109 পর কল করে করে নম্বর এক মকে ফিরে আউ শেয়ার করনো হ্যাঁ 7018107091 पर तो है सब श्रोता कॉल कर ही सकते हैं और अपना पसंदीदा गीत के सो होनी सकते हैं और जैसे सचिन कपूर सो के इस समय तो है लाइव हिन श्रोताओं और आइए कार्यक्रम जो थोड़ा करे और हगो वह भी लेकर चलते हैं श्रोताओं और उन्हें जानकारी होगी कि ऐसो तुसो जरूर रूबरू के सो करवंदे इन श्रोताओं करखन करखा श्रोताओं अब सो वीडियो ने माध्यम तो है रुणा के दिल्ली में किया सो 5 मंजिला बिल्डिंग के सो लुट गए सो तो 3 व्यक्ति रह गया सो मौत बच गई और कई दबे गए सो तो 50 साल पुरानी इमारत रह बेसमेंट में चल रही थी खुदाई सो तो छात्रा रह होटल होस्टल रह रूप में किया सो स्थित तो इस्तेमाल बच्चों करता तो मलबे में 50 मनु रह दबियुरे भूने रह किया सो 50 तो ज़्यादा दबियुरे भूने रह किया सो आशंका हादसों तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या हादसे में दुख जताओ और तिन्याय बल्लों की दिल्ली वह सत्य निकेतन माइमावत गिरने भी घटना बेहद दुखद आ अपने जो खोने वाले सभी मनुर प्रति इनकी गहरी संवेदनाहीन घायल घायल जो घायल हुए व्यक्ति तिन्यो शीघ्र स्वास्थ्य भुनेरे किया सो प्रार्थना करते हैं ऐसा ही है बल्लो हर्षो तो 3 साल में दिल्ली में किया सो गिरी 1133 इमारत पिछले 3 साल में हर्षो तो इंदा को श्रोता सो गए कनेक्टेड हैं लेकिन डिसकनेक्ट बुझ गए तथो अगले भी हैं तइयो कर लेंदे कनेक्ट फिर अगली जानकारी तू होगी शेयर कर दो नमस्ते जी
1: नमस्ते जी
0: नमस्ते जी नमस्ते और रेडियो सेट रियाज भी करे थे हेलो
1: हेलो
0: हाँ जी रेडियो सेट रे आवाज धीमी कर दिया जी
1: हाँ जी सर सोन गाड़ा ले ले तू अपने प्रोग्राम आज जोता बोल बंगलू को आना
0: मैडम जी बंगलू ता सो पुआई ना सो ता कोई चक्कर नहीं पर रेडियो सेट रे आवाज धीमी कर दिया सो डबल लड़ने कर दिया
1: आठवें यार
0: क्या फरमाइश करे रही है जी तू है
2: जोता पर बंगलू को आना

0: सामने आ शतों इंजा घटना में अगे असो ठानुए मनु रिमोट भी बोए शतों राजधानी में अवैध निर्माण चो लेकर हमेशा तो शिकायत के न सो इंदी विंदी लेकिन कठोर कार्रवाई ना भूने तो हाथ से के न सो हमेशा बुंदे रहते हैं जो कि अभी भी बुआ शतों पंज मंजिला बिल्डिंग के सो लुड़ गए और कई छात्र के न शतों सो मौत री और अगर सर पूछ गया मौत री और बड़ी गए शोतों और जस घर रा चिराग या जस घर रा मनु के शोतों सुगंधा ना सो पीर तस तिंगे घरियाँ जो बंदे आ कि तिंगारा सदस्य घर रा सदस्य गया सो किए चले गो है ना। तो बहरहाल इस प्रकार सो के किया सो कार्यक्रम यहीं चलना है तो सब बन रहे आर जे सचिन कपूर सो के हने जानकारी भी तू हो गया है जरूर शेयर कर ले साझा कर ले। बहरहाल चलते भरमौर री खूबसूरत वादी री और भरमौर री प्यारी दी वादी री और यहाँ तो पूछना तो सो कि भरमौर एग्जैक्टली कड़ी थो बल्लू कर दे लेकिन यारे आई थिंक गड्डी में गया सो शोर ज़्यादा थो और खिड़की के सो खुली थी तो हवा के सो ज़्यादा इच्छू करते थे ठेरी वजह वहाँ सो किया सो डिस्टर्बेशन क्रिएट किया सो इडी स्टूडियो में बच्चू करते थे लेकिन आइया है हगू बढ़ते हैं शोतों और इन अगले हरदेव जी तो है तो इंदे रेगुलर श्रोता गण तुंदे ना समझ इच्छू कर दे मुंजो तो मिस कॉल लगो मारू कर दे या तुंदा फोन विजैक्ट बुझ के छू करता डोंट नो लेकिन तू ना पता लगो मुझे हरदेव जी की तो है कॉल करूँ कर दे हिन और पता ना विजैक्ट को बुझ के छू करता है तब तुम अगले श्रोता छो है कनेक्ट कर दे हिन। हेलो
1: कुशाल नमस्कार।
0: नमस्कार जी नमस्कार
1: कैसे हाल है आपके।
0: बहुत बढ़िया जी बहुत बढ़िया तो बल्ला
1: बहुत बढ़िया
0: है जी कौन बोलूँ देन और कड़ी थो बोलूँ देन
1: कौशल हमीरपुर ही बोल सकता है आपके सामने।
0: अच्छा हमीरपुर थो
1: बिल्कुल
0: क्या बात है जय हिंद वंदे मातरम भारत माता की जय।
1: भारत माता की जय और आप सब की भी जय हो।
0: धन्यवाद जी धन्यवाद प्रयास रंदा इंदा प्रयास रत्न है।
1: पहले फोन किया था आपने तो फोन नहीं था रही फिर करना पड़ा आपने।
0: हाँ जी
1: पहले भी कॉल किया था मैंने पर आपने अटेंड नहीं कर पाए बिजी थे मेरा ख्याल।
0: अच्छा अच्छा अच्छा
1: तो मैं क्या दोबारा कर लेता हूँ फिर मैं रह जाऊंगा पीछे ही।
0: चलिए जी बहुत धन्यवाद बहुत शुक्रिया।
1: शुक्रिया मालिक का प्रभु का आप सबका प्यार बना रहे।
0: आपका प्यार चाहिए जी आपका प्यार आपका आशीर्वाद जनाब हमीरपुर थो क्या फरमाइश क्या हुनना चाहते हैं। हमीरपुर थो तो है
1: एक ही सुनना चाहता हूँ मेरी गंगा जोड़ लग डर लगता बिच कला सा
0: मेरी
1: गंगा जो डर लगता बिच कला सा ओम ओम करती होगा बिच कला सा
0: मेरी गंगा जो डर लगता है ना जी।
1: हाँ जी
0: चलिए ठीक है जी जरूर हुन ले तो सुई गीत धन्यवाद। चलिए चलते छोतो और भरमौर री किनारी चलते और भरमौर थो रिया रिया आई थिंक रिया री फरमाइश थी जोधपुर बंगलू पुआना हो

श्रोतो वीडी गुंजन धर्मशाला 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर तो है अपना गादा कार्यक्रम हूँ करते हैं इनकी अपनी अपनी गप्पा श्रोतो और प्ले स्टोर के माध्यम तो है ऑल ओवर वर्ल्ड इस कार्यक्रम जो हो सकता है श्रोतो गुंजन इंडिया रेडियो अगर तो है लिख लेता ऑल ओवर वर्ल्ड की सो तो है इस कार्यक्रम जो हो सकता है श्रोतो और बिल्कुल थोड़ी थोड़ी क्लिप्स कहने सो है अपने अपने इंस्टाग्राम इंस्टा हैंडल में भी सो पंदा हा वीडियोज़ री smallr.j/sachinkapoorbhuna हा और इतिमा तो है आगे जिक्र के सो छोटी छोटी क्लिप्स इन दिखे न सो ज़रूर हेरी सकते हैं श्रोतों और ज़रूर किया सो फॉलो तना बलना मु फॉलो करा लेकिन अपने गद्याली थी जो किया सो तो है कुछ एक क्लिप्स है पूरी बंदी सो हेरी सकते हैं श्रोतों अक मौके फिर दसनुआ smallr.j/sachinkapoor बहरहाल कार्यक्रम इंदी अपनी गप्प मन शाक मौके फिरी सभी होने वाले रह सभी श्रोतागण रखे सो बड़ा बड़ा स्वागत है मेरी गंगा जो डर लगदा इस गीता जो जनाब हमीरपुर थो जो कॉल थी सो सर्च करो लेकिन न सुले ये गीत तो नहीं है लेकिन हाँ ये गीत जरूर आ कि मुझे डर लगदा इस गीता जो है तुसू तक तुसू तक शायद भूल सकता मोस्टली यही गीत हुआ तुसू तक इस गीता जो कि वह है पहुँचन दिन बने रहे तो सब आर जे सचिन कपूर सो गूंज अपने पन रहे

शुतवा सचिन कपूर ले लेनो अबे तो सुतवा इजाजत और समय रवा के मैं पता न चलता कि समय की असो कहने पूछ गंदा हा। फिलहाल फिर मुलदेन छे थो आठ तू सो के श्रोत फिलहाल अपने इस गादे कार्यक्रम थो कि असो ले लेनो इजाजत। हंसते रहे मुस्कुरेंदे रहे श्रोतो प्यार बनते रहे माँ बाप री सेवा जरूर करा मोटे रे रिस्पेक्ट किया आदर मान सम्मान किया सो जरूर करा प्रकृति जो साफ सुथरा किया सो जरूर रखा श्रोतो इं शब्द तो है लेंदेन इजाजत नमस्ते धर्मशाला।

0: नमस्कार दोस्तों, रेडियो गुंजन धर्मशाला से अब आप सभी सुनेंगे आज का ये न्यूज बुलेटिन। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों की हेडलाइंस पे। हिमाचल में प्राकृतिक जल स्रोतों के संरक्षण के लिए लागू होगा स्प्रिंग शेड मैनेजमेंट मॉडल। वैज्ञानिक मैपिंग के जरिए चिन्हित किए जाएंगे रिचार्ज जोन। प्रदेश की पंचायतों में कार्यरत सिलाई अध्यापिकाओं के नियमितीकरण का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं। 25 साल से सेवाएं दे रही हैं हजारों अध्यापिकाएं। हिमाचल के 44 इंजीनियरिंग छात्र जापान में सीखेंगे अंतरिक्ष तकनीक और रोबोटिक्स। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वर्चुअली दी शुभकामनाएं। सरकारी सेवाओं में पूर्व सैनिकों को 15% आरक्षण। सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से लाखों पूर्व सैनिक लाभान्वित। बाल विवाह के खिलाफ 27 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने का प्रस्ताव। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव का समर्थन किया। गांवों में दूध उत्पादन बढ़ाने और पशुपालकों की आय बढ़ाने पर जोर। सरकार ने दूध खरीद के दाम बढ़ाने की दिशा में उठाए कदम। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में पारंपरिक प्राकृतिक जल स्रोतों जैसे चश्मों, बावड़ियों और नौड़ों को वैज्ञानिक तरीके से मजबूत करने की दिशा में सरकार काम कर रही है। प्रदेश में प्राकृतिक जल स्रोतों की संरक्षण के लिए स्प्रिंग शेड मैनेजमेंट मॉडल लागू किया जाएगा। इसके तहत जल स्रोतों की वैज्ञानिक मैपिंग की जाएगी और उनकी रिचार्ज जोन की पहचान कर उन्हें संरक्षित किया जाएगा। समाचार के अनुसार मॉनसून के दौरान बादल फटने, भूस्खलन और भारी बारिश जैसी प्राकृतिक घटनाओं से जल स्रोतों को नुकसान पहुंचता है। वहीं पाइपलाइन टूटने और जल स्रोतों में गाद भरने से भी पेयजल आपूर्ति प्रभावित होती है। जल स्रोतों के संरक्षण के लिए स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा और पंचायतों की भी इसमें भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। प्रशिक्षित युवा और कर्मचारी जल स्रोतों की प्रवाह तथा उनकी स्थिति की निगरानी करेंगे। जल स्रोतों की डिस्चार्ज में लगातार कमी आने पर समय रहते संरक्षण के उपाय शुरू किए जा सकेंगे। योजना के तहत जल स्रोतों के आसपास स्वच्छता बनाए रखने, कूड़ा कचरा और गंदा पानी पहुंचने से रोकने तथा संरक्षण कार्यों की निगरानी स्थानीय स्तर पर करने की व्यवस्था भी होगी। सरकार का उद्देश्य केवल जल स्रोतों का संरक्षण करना नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता बनाए रखना और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा करना भी है। हिमाचल प्रदेश की ग्राम पंचायतों में कार्यरत 1493 सिलाई अध्यापिकाओं के संबंध में स्थिति स्पष्ट हुई है। वर्तमान में 1481 अध्यापिकाएं 508 रुपए प्रतिदिन के पारिश्रमिक पर दैनिक आधार पर कार्यरत हैं, जबकि 12 अनुबंध अध्यापिकाओं का मानदेय 1 अप्रैल 2026 से बढ़ाकर 10,500 रुपए प्रतिमाह किया जा रहा है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि 25 वर्ष सेवा पर नियमितीकरण का फिलहाल कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, यद्यपि पंचायत सचिव भर्ती में इनके लिए निर्धारित आरक्षण का प्रावधान खुला है। प्रदेश की 44 मेधावी इंजीनियरिंग विद्यार्थी अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक भ्रमण के तहत जापान में अंतरिक्ष तकनीक और रोबोटिक्स की बारीकियां सीखने रवाना हो रही हैं। इस दल में 24 छात्र और 20 छात्राएं शामिल हैं, जिनका चयन 5 इंजीनियरिंग कॉलेजों के 650 आवेदकों में से मेरिट के आधार पर किया गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विद्यार्थियों से वर्चुअल संवाद कर उन्हें उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी।
1: पूर्व सैनिकों और युद्ध विधवाओं के कल्याण के लिए सरकार ने कल्याणकारी योजनाओं को गति दी है। युद्ध विधवाओं की बेटियों के विवाह हेतु 50,000 रुपए की सहायता का प्रावधान है और प्रदेश में 1252 वीरता पुरस्कार दर्ज किए गए हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पशुपालकों की आय संवर्धन हेतु ऐतिहासिक कदम उठाते हुए गाय के दूध का समर्थन मूल्य 61 रुपए और भैंस के दूध का 71 रुपए प्रति लीटर तय किया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती की दिशा में मील का पत्थर बताया। संयुक्त राष्ट्र महासभा में बाल विवाह रोकथाम संबंधी वैश्विक प्रस्ताव को भारत का पुरजोर समर्थन प्राप्त हुआ है। बच्चों के अधिकारों, स्वास्थ्य और बालिका शिक्षा की संरक्षण के लिए इस पहल को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है।
0: तो ये थी अब तक की प्रमुख खबरें। एक बार फिर मुख्य समाचार। हिमाचल में प्राकृतिक जल स्रोतों के संरक्षण के लिए लागू होगा स्प्रिंग शेड मैनेजमेंट मॉडल। 25 साल से सेवाएं दे रही सिलाई अध्यापिकाओं के नियमितीकरण का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं। प्रदेश के 44 इंजीनियरिंग विद्यार्थी जापान में सीखेंगे अंतरिक्ष तकनीक और रोबोटिक्स। सरकारी सेवाओं में पूर्व सैनिकों को 15% आरक्षण का प्रावधान। गांव में दूध उत्पादन बढ़ाने और पशुपालकों की आय बढ़ाने पर सरकार का जोर। बाल विवाह के खिलाफ 27 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने का प्रस्ताव। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। गुंजन रेडियो 91.2 FM सुनने के लिए धन्यवाद।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और श्रोताओं, मैं हूँ आपकी रेडियो दो शशि और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

तो श्रोताओ, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

91.2 FM पर यह है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बिल्कुल अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो इसी के साथ अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको फिर से ले चलते हैं एक और गीत की तरफ। तो आप सभी यूं ही सुनते रहिए अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से आपको ले चलते हैं एक और गीत की तरफ।

तो श्रोतो, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

91.2 FM पर यह आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बिल्कुल अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो इसी के साथ अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे।

0: नमस्कार श्रोताओं, FM बैंड 91.2 MHz पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है। कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला, मेरे यानी सचिन कपूर के साथ बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। कुछ एक खास जानकारियां लेकर हम हाजिर हुए हैं आपके वीडियो सेट पर और एक खास जानकारियां आप तक हम ज़रूर पहुंचाएंगे। श्रोताओं, बीते वो जो चंबा में हुआ, 2.5 साल की मासूम बच्ची जो है वो डॉक्टर की लापरवाही की वजह से जो है वो अब इस दुनिया में नहीं है श्रोताओं। और ये आए दिन जो है वो टांडा, चंबा या अन्य जितने भी स्वास्थ्य केंद्र हैं, इनमें आए दिन इस तरह की घटनाएं होना अमूमन है, आम बात हो चुकी है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग और सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन इस प्रकार की जब भी हम खबरें जो है वो पढ़ते हैं श्रोताओं, तो वाकई में ही दिल जो है वो कांप उठता है। देखिए, अगर मैं साधारण तौर पर बात कहूँ सभी से, जितने भी लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं इस समय, कि देखिए जिनके पास पैसा है वो तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जा सकते हैं, आराम से जा सकते हैं, है ना। लेकिन जिनके पास पैसा नहीं है वो लोग तो सरकारी ही हॉस्पिटल की ओर रुख करेंगे ना। और सरकारी हॉस्पिटलों का इस समय इतना हाल बेहाल है कि आप मान नहीं सकते श्रोताओं। हाँ, वाकई में ही ना, आप एनालाइज कीजिए, आप वीडियोस देखिए, इतनी सारी वीडियोस आजकल टांडा की वायरल हो रही हैं कि ग्लव्स जो हैं वो ख़रीदने पड़ रहे हैं बाहर से, जो सिरिंजे होती हैं वो ख़रीदने पड़ रही हैं बाहर से, इतना बुरा हाल है। और टांडा, अभी चंबा में जो हुआ, 2.5 साल की मासूम लड़की को जो है श्रोताओं, वो इंटर्नशिप जो करने आती हैं लड़कियाँ, उन्होंने वो देख रही थी, लेकिन वो बस यही कह रही थी कि 5 मिनट में डॉक्टर आ रही हैं, 10 मिनट में आ रही हैं। लास्ट के लास्ट मोमेंट पर डॉक्टर आई, लेकिन फिर कुछ नहीं हो पाया। और आप सभी हैरान हो जाएंगे इस बात से, इस बात को सुनकर कि उसकी जो है मासूम बच्ची की जो है वो मतलब छाती जो थी वो जाम थी श्रोताओं, है ना। मेरा सच में दिमाग जो है वो बहुत ज़्यादा इविटेट होता है और बहुत ज़्यादा इविटेशन होती है मुझे ऐसे सिस्टम से। एक आप पूरी जानकारी आप तक हम पहुंचाएंगे श्रोताओं, ये पूरी जानकारी आप तक मैं ज़रूर पहुंचाना चाहूँगा। आप सभी बने हुए इस समय आरजे सचिन कपूर के साथ, कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला। आइए आपको बताते हैं, आपको बताते हैं कि कहां कहां जो है वो होते हैं।
1: स्वास्थ्य व्यवस्था ने 1.5 साल की बच्ची को मार डाला।
2: कितने घंटे
1: वो छोटी सी मासूम पूरे 1 घंटे तक तड़पती रही और डॉक्टर उसे देखने तक नहीं आए। ट्रेनी डॉक्टर कहते रहे कि डॉक्टर साहब 5 मिनट में आ रहे हैं, 5 मिनट में आ रहे हैं। बाद में एक महिला डॉक्टर आई भी, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। इसलिए आप सभी लोग अब ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसके आगे जो मैं कहूंगी वो आपकी आंखें खोल देगा। हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर खुद सदन में कहते हैं कि उनकी सरकार 5 लाख रुपए वेतन देने को तैयार है, फिर भी डॉक्टर चंबा नहीं जाती। चंबा के अस्पतालों में आज अलग अलग श्रेणियों के 311 पद खाली पड़े हुए हैं, जो कि आपको ये समझाने के लिए काफी है कि स्वास्थ्य सुविधा के क्षेत्र में चंबा को कितनी ज्यादा तरजीह दी जा रही है। और ये सिर्फ चंबा का हाल नहीं, अभी कुछ महीने पहले शिमला के रिपन अस्पताल में एक 45 दिन की मासूम बच्ची को गलत इंजेक्शन लगा दिया गया था और उसके परिवार का आरोप था कि इसी वजह से बच्ची की जान चली गई। उसके बाद अभी हाल में वायरल हुआ इस नर्स का वीडियो भी आपने देखा होगा, जिसमें एक 90 साल की बुजुर्ग दादी 2 घंटे से बिना ऑक्सीजन तड़प रही थी और जब बुजुर्ग महिला के पोते ने नर्स से सवाल किया तो वो चीखते हुए बोली कि पुलिस बुला लूंगी। इसके बाद अब चंबा जिले के पंडित जवाहरलाल नेहरू राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल से ऐसी लापरवाही का मामला सामने आया है। मृतक बच्ची के पिता का आरोप है कि अस्पताल पहुंचने के बाद बच्ची को समय पर उपचार नहीं मिला और टेस्ट व एक्सरे के लिए उन्हें भटकाया गया, फिर इंजेक्शन और भाप देने के बाद बच्ची अचेत हो गई और उसकी मौत हो गई। इमरजेंसी में डॉक्टर ही तैनात नहीं था, बच्ची को देखने के लिए 1 घंटे तक कोई डॉक्टर नहीं आया और अंत में जब महिला डॉक्टर आई तब तक बचाने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। हिमाचल की
0: तो ये आप सभी ने सुनी श्रोतो न्यूज खबर है ना। इस खबर से मेरा आप तक आप सभी श्रोताओं तक इस खबर को पहुंचाने का जो मेरा मकसद है वो यही है कि जब भी आप कहीं भी जाएं, अटेंडेंट जो है जो आपके साथ है वो बिल्कुल जागरूक होना चाहिए, वो बिल्कुल इस प्रकार का होना चाहिए। चलिए बार बार डॉक्टर्स को तंग करना या बार बार बोलना सही नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई देख रेख हो ही नहीं रही पिछले कुछ घंटों से, पिछले कुछ आवर से, तो वहाँ पर जो है वो आप सभी ज़रूर बोलिएगा। और जब भी मैं आए दिन देखता हूँ, इवन कि कल भी जो है मुझे एक बुज़ुर्ग आंटी जी जो है वो मिले थे और वो कह रहे थे कि हम रात को जो है वो धर्मशाला के इमरजेंसी में गए थे तो वहाँ डॉक्टर जो है वो इस तरह से बात कर रही थी। आए दिन जो है ये ऐसा होता रहता है श्रोताओं, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आती है कि किस क्योंकि देखिए ना, हम डरते क्यों हैं, मैं बताता हूँ हम डरते क्यों हैं। हम इसलिए डरते

हैं कि अगर मैंने कुछ बोल दिया तो ये कहीं मेरे पेशेंट को कुछ कर ना दे, अगर मैंने कुछ बोल दिया तो इसकी ज़्यादा चलती होगी, है ना, ये मेरे पेशेंट को कहीं गलत इंजेक्ट ना कर दे या ये मेरे पेशेंट को अच्छे से ट्रीट ना करें, इसलिए जो है वो हम झुकते रहते हैं, उनकी बातें सुनते रहते हैं। लेकिन कब तक, आखिर कब तक ऐसा चलेगा? 2.5 साल की मासूम बच्ची जो है वो आज फिर सिस्टम की लापरवाही की वजह से जो है, सरकारों की लापरवाही की वजह से जो है, वो 2.5 साल की मासूम बच्ची अपने माँ बाप से अलग हो गई। शो तो बहुत शर्म आती है, बहुत

बुरा फील हो रहा है उन पेरेंट के लिए, उस 2.5 साल की मासूम बच्ची के लिए, कि जिसकी पौने आई थिंक 45 आवर्स तक जो है, पौना घंटा जो है उस बच्ची की, और उसको कोई ट्रीटमेंट ही नहीं मिला वहाँ पर, कोई डॉक्टर ही नहीं था, इंटर्नशिप थे सिर्फ और सिर्फ। तो स्वास्थ्य विभाग के लोग अगर मेरी ये बात सुन रहे हैं तो आपका आपका जो आपकी जो जॉब है, आपका जो डिपार्टमेंट है वो बहुत दुआओं लेने वाला जो है वो डिपार्टमेंट है। आप चाहे आप नर्स हैं, चाहे आप डॉक्टर हैं, चाहे आप वहाँ पर काम करते हैं, आप प्लीज़ लोगों की मदद जो है वो ज़रूर कीजिए, और इस तरह से तड़पता हुआ जो है वो किसी मासूम को ना छोड़े। बहरहाल मैं सचिन कपूर हूँ, गुड इवनिंग धर्मशाला को होस्ट कर रहा हूँ। आइए आगाज़ करते हैं कार्यक्रम का शोधों इस गीत के साथ। बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा वेड़ी गुंजन की गूंज के साथ।

श्रोतो एफ एम बैंड 91.2 MHz पर वेडी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है कार्यक्रम में। गुड इवनिंग धर्मशाला आरजे सचिन कपूर के साथ सुन रहे हैं बिल्कुल लाइव अपने अपने वीडियो सेट पर। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं श्रोताओं और लेके चलते हैं आप सभी श्रोताओं को अब इस और बिल्कुल यानी कि आज के मौसम की ओर, इनकी अभी का मौसम जो है वो क्या बना हुआ है इस समय बात की जाए। शो तो आज पूरा दिन जो है वो धर्मशाला में मौसम साफ रहा, शो तो धूप खिली रही और इस समय की बात की जाए शो तो 19 डिग्री सेल्सियस इस समय जो है वो तापमान है। नमी की बात करूँ शो तो नमी जो है जिसको अंग्रेजी में हम ह्यूमिडिटी कहते हैं 73% के आसपास जो है वो नमी है शो तो, और बिल्कुल विजिबिलिटी बिल्कुल ठीक है, 8 से 10 किलोमीटर तक की विजिबिलिटी है। ये है इस समय मौसम धर्मशाला का। लेके चलते हैं आप सभी श्रोताओं को इस प्यारे से गीत की ओर। बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा हमारे साथ यूं ही।

शोध एफ एम बैंड 91.5 है। 2 मेगा हर्ट्स पर आप सभी ने ट्यून किया है वेड़ी गुंजन धर्मशाला, और मैं हूं आपके साथ आपका अपना आरजे वेड़ी, जो कि सचिन कपूर। बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है पुनः आप सभी सुनने वालों का, सभी श्रोतागण का। तो आप सभी होप सो कि अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और अपने घरों में जो है वो खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे, सेहत का ख्याल जो है वो बाखूबी रख रहे होंगे श्रोतों। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं श्रोतों, और लेके चलते हैं आप सभी को आज के विचार की ओर। मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है, है ना। अर्थात श्रोतों, जीवन में सफलता मिलना या ना मिलना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन ईमानदारी से प्रयास करना पूरी तरह हमारे नियंत्रण में है। यदि हम असफल होने के डर से कोशिश करना ही छोड़ देंगे तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे श्रोतों। इसलिए परिणाम की चिंता किए बिना जो है वो लगातार मेहनत करते रहना चाहिए श्रोतों, और आगे बढ़ते रहना चाहिए श्रोतों। विचारों में इतनी शक्ति होती है कि वह हमारे जीवन की दिशा बदल सकते हैं। जब सोच सकारात्मक होती है श्रोतों, तो जीवन अपने आप शांत और सुखद बन जाता है। बहरहाल कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं आरजे सचिन कपूर के साथ, लेके चलते हैं आप सभी श्रोताओं को इस प्यारे से गीत की ओर।

आई एम अ डिस्को डांसर। ये गीत आप सभी ने बाखूबी सुना शतो 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर वेलिगुंजन धर्मशाला में। और ये कार्यक्रम को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, आप सभी बने हुए इस समय आरजे सचिन कपूर के साथ। तो कहीं ना कहीं शतो अब पनीर के रेट जो है वो भी बढ़ गए हैं। जी बिल्कुल, पहले पनीर के रेट जो है वो 320-330 के आसपास जो है वो रहते थे शतो, लेकिन अभी खबर निकल कर आ रही है कि यही पनीर के रेट जो है वो 400 के आसपास जो हैं वो हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं अब ज़रूर जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो महंगी हो रही हैं शतो, और ये जो युद्ध हो रहा है इसका असर धीरे धीरे जो है वो दिख रहा है शतो, है ना। और हमारे लिए, हम सभी के लिए जो है ये बहुत ही दुखद बात है शतो, है ना, क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली का जो बच्चा है या जो मिडिल क्लास फैमिली का जो मेंबर है वो बहुत मुश्किलों से जो है वो अपना खान पान व्यतीत करता है, अपना जीवन यापन जो है वो करता है। और ख़ासकर धर्मशाला में हम रह रहे हैं और धर्मशाला में हम अगर जीवन यापन कर रहे हैं, तो अगर आपका बिजनेस है फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आप जॉब कर रहे हैं तो फिर कहीं ना कहीं वो दिक्कतों का सामना जो है वो हमें करना पड़ता है ना। बहरहाल कार्यक्रम में जानकारियों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, पिटारा यूं ही खुलता रहेगा। आइए लेके चलते हैं आप सभी को इस गीत की ओर।

श्रोतो एफ एम बैंड 91.2 MHz पर रेडी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और कार्यक्रम आरजे सचिन कपूर के साथ सुन रहे हैं। आइए श्रोतों कार्यक्रम को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और लेके चलते हैं आप सभी श्रोतों को इस प्यारे से गीत की ओर। गीत के बाद श्रोतों अन्य जानकारियाँ आप तक हम जरूर पहुँचाएंगे।

श्रोतम एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप सभी ने ट्यून किया है वेड़ी गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम सचिन कपूर के साथ सुन रहे हैं। आइए कुछ एक खास जानकारियों के साथ आपको रूबरू करवाते हैं। जिला मुख्यालय धर्मशाला के साथ लगते खनियारा रकड़ सिलेड़ गोदाम कनकंडियारा घाटी जिया पालमपुर मार्ग का एक हिस्सा पूरी तरह से जो है वो धंसने से वाहनों की आवाजाही प्रभावित हो गई है। श्रोतों बगियाड़ा के पास बड़े भूस्खलन होने से जो है वो सड़क मार्ग पर फिलहाल केवल दो पहिया वाहन ही मुश्किल से जो है वो निकल पा रहे हैं, जिससे हादसे का खतरा बना हुआ है। श्रोतों ये सड़क धर्मशाला के खनियारे रक्कड़ रियोल पलन सिलेड़ गोदाम अंदराड़ कनकंडियारा बगियाड़ा खाटी जिया होते हुए जो है वो नगरी राख और एक दर्जन करीब गांव से होते हुए पालमपुर क्षेत्र को जो है वो जोड़ती है। सड़क के धंसने से इन क्षेत्रों के सैकड़ों लोगों की आवाजाही जो है वो प्रभावित हुई है। श्रोतों स्थानीय लोगों ने प्रशासन और लोक निर्माण विभाग धर्मशाला से मार्ग की स्थिति का जल्द जायजा लेकर सड़क को दुरुस्त करने की मांग जो है श्रोताओं वो की है, ताकि किसी बड़े हादसे से बचा जा सके और यातायात सामान्य हो सके। कार्यक्रम में जानकारियों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप सभी बने हुए इस समय आरजे सचिन कपूर के साथ, लेके चलते हैं आप सभी को इस प्यारे से गीत की ओर।

शोध एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और कार्यक्रम इस वक्त आप सभी गुड इवनिंग धर्मशाला सुन रहे हैं बिल्कुल लाइव अपने रेडियो सेट पर। स्मार्ट सिटी लिमिटेड की ओर से जो है वो लगभग एक वर्ष पहले तारकोल डालकर सवारी गई शोधों सड़कें धर्मशाला की मुख्य सड़कें सवारी गई शोधों अब दोबारा जो है वो बदहाल होने लगी हैं। सड़क के कई हिस्सों में बड़े गड्ढे उभर आए हैं जबकि पर्यटन विभाग कार्यालय और फायर ब्रिगेड स्टेशन के आसपास सड़क की सतह कई जगह से बुरी तरह उखड़ गई है शोधों। ऐसे में सड़क की गुणवत्ता और मरम्मत कार्य की टिकाऊपन को लेकर जो है वो सवाल उठने लगे हैं। गौरतलब है कि वर्ष 2025 में स्मार्ट सिटी लिमिटेड की ओर से जो है वो धर्मशाला की इस मुख्य सड़क पर जो है वो गांधी वाटिका से लेकर शिक्षा बोर्ड तक रिटेयरिंग का कार्य जो है वो करवाया गया था श्रोतों। अक्टूबर नवंबर के दौरान हुए इस कार्य को लेकर उस समय सड़क के सुधरने से शहरवासियों को राहत की उम्मीद जो है वो जगी थी। अब करीब साल भर के भीतर ही सड़क के कई हिस्सों में गड्ढे और क्षतिग्रस्त पैच नज़र आने लगे हैं। इसे ये सवाल उठने लगा है श्रोतों, स्वाभाविक तौर पर उठेगा ही श्रोतों, कि सड़क पर हाल ही में लाखों रुपये खर्च कर सुधार कार्य करवाया गया था, उसकी मौजूदा हालत इतनी जल्दी ख़राब कैसे हो गई। मौजूदा स्थिति में पर्यटन विभाग कार्यालय और फायर ब्रिगेड स्टेशन के आसपास सड़क पर बड़े गड्ढे वाहन चालकों के लिए परेशानी का कारण जो है वो बन रहे हैं शतों। सड़क के किनारों पर भी कुलतार उखड़ने के साथ साथ जगह जगह जो है वो सतह क्षतिग्रस्त दिखाई दे रही है श्रोतों। शहर की मुख्य सड़कें होने के कारण यहाँ से दिन भर बड़ी संख्या से छोटे बड़े वाहन गुजरते हैं। ऐसे में गड्ढों के कारण हादसे की आशंका भी बनी रहती है श्रोतों। स्थानीय निवासियों मानिक और विवेक व सड़क की मौजूदा स्थिति को लेकर ये भी सवाल उठाए गए कि रिटेयरिंग के दौरान जो है वो सड़क की सतह तैयार करने से पहले तारकोल बिछाने तक निर्धारित गुणवत्ता मानकों का कितना पालन जो है वो किया गया है। यदि एक साल के भीतर ही सड़क दोबारा खराब होने लगी है तो संबंधित एजेंसियों को इसकी जो है वो जांच करनी चाहिए। वाकई मैंने श्रोतों एक साल के भीतर ही अगर इस तरह की चीज़ें हो रही हैं तो आप सोचिए कि कितना बड़ा घोटाला है, ठेकेदार ने कितना बड़ा घोटाला जो है वो किया है। हाँ वैसे तो घोटाले से ही जो है वो ये दुनिया चली हुई है श्रोतों है ना, लेकिन मुझे लगता है कि सतर्क होना बहुत ज़रूरी है इंसान को। आप सभी सुन रहे हैं इस समय 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो गुंजन धर्मशाला और मैं हूँ आपके साथ आपका अपना आरजे सचिन कपूर। लेके चलते हैं आप सभी श्रोताओं को इस गीत की ओर।

0: जिन जिन राज्यों की पुलिस को मिला वो पुलिस के गौरवशाली इतिहास, साहस, अनुशासन और समर्पण के कारण ही राष्ट्रपति महोदय ने गोवा को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित करने का काम किया है।
1: समारोह गोवा के तलेगांव स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया गया। श्री शाह ने उन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित वॉइस असिस्टेंट सेवा भी शुरू की। यह 12 भाषाओं में नागरिकों और पर्यटकों को त्वरित सहायता उपलब्ध कराएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आज रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों के लिए 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के पूंजीगत प्रस्तावों को मंजूरी दी। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि 98% सामान भारतीय कंपनियों से खरीदे जाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के उप प्रबंधन निदेशक नाइजेल क्लार्क से भेंट की। बैठक में भारत और कोष के बीच संबंधों पर चर्चा हुई। इस दौरान कोष के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता केंद्र को मजबूत करने में भारत की भूमिका की सराहना की गई। लक्जमबर्ग के ऊर्जा तथा पर्यटन मंत्री लेक्स डेल्स ने आज नई दिल्ली में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने अंतरिक्ष क्षेत्र में मौजूदा सहयोग, भविष्य की संभावनाओं और संस्थागत तथा व्यावसायिक सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र दोनों देशों की साझेदारी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जयंत सिंह का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा किया। श्री मोदी ने कहा कि शिक्षक शिक्षा के कलाकार शीर्षक वाले इस लेख में जयंत सिंह ने बताया है कि शिक्षण एक कला और रचनात्मक कार्य है। लेख में श्री सिंह ने यह भी बताया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, उल्लास, विद्यांजलि और कई अन्य पहले शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया को मजबूत कर रही है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत को दुनिया की फार्मेसी के रूप में अपनी स्थिति मजबूत करते हुए वैश्विक चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा केंद्र के रूप में उभरना चाहिए। नई दिल्ली में फार्मा मैकटेक और लैब नेक्स्ट एक्सपो 2026 के उद्घाटन समारोह में श्री गोयल ने कहा कि स्वास्थ्य सेवा का दायरा केवल इलाज तक सीमित नहीं है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में राज्यों की भागीदारी बढ़ाकर कृषि विज्ञान केंद्रों को मजबूत करने की कार्य योजना की समीक्षा की गई। श्री चौहान ने निर्धारित समय सीमा में लक्ष्य हासिल करने के लिए राज्य सरकारों की सक्रिय भागीदारी और समय पर सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नई दिल्ली के सत्य निकेतन में ढही इमारत स्थल का आज फिर दौरा किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन अधिकारियों की अनदेखी के कारण यह दुर्घटना हुई है उन्हें तुरंत निलंबित किया जाए। अहमदाबाद में शीतल देवी ने विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में महिला कंपाउंड के व्यक्तिगत वर्ग के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। शीतल देवी ने सेमीफाइनल में आज सरिता को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: श्रोता एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप सभी ने ट्यून किया है वेड़ी गुंजन धर्मशाला। इन जानकारियों के बाद, इस समाचार के बाद श्रोताओं आप सभी को लेके चलते हैं इस प्यारे से गीत की ओर। बने रहेगा, जुड़े रहेगा वेड़ी गुंजन की इसी गूंज के साथ।

श्रोतो आप सभी सुन रहे हैं समय कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला और मैं नाचीज सचिन कपूर हूं जो इस कार्यक्रम को होस्ट कर रहा हूं। बहुत प्यारा सा गीत आप सभी ने सुना, तेरी याद साथ है। कहने को वाकई में ना कि कहने को तो साथ अपनी ये दुनिया चलती है, लेकिन छुप के इस दिल में तन्हाई जो है वो पलती है, वो बसती है। बहरहाल कार्यक्रम को लेके चलते हैं थोड़ा सा और आगे और अगली जानकारियों के साथ आपको रूबरू करवाते हैं। श्रोतम, जिला मुख्यालय धर्मशाला के साथ लगते दाड़ी स्थित आईटीआई चौक के पास सार्वजनिक शौचालय को लेकर उठाया गया मामला अब मुख्यमंत्री हेल्पलाइन तक पहुंच गया है। श्रोतम, स्थानीय लोगों के अनुसार ये शौचालय पिछले करीब 1.5 से 2 वर्ष से उपयोग में नहीं है और साथ ही साथ श्रोतों और इसके मुख्य द्वार पर ताला लगा हुआ है। शौचालय को खुलवाने और व्यवस्था सुधारने के लिए नगर निगम धर्मशाला को ऑनलाइन शिकायत भी दी गई है श्रोतों, लेकिन शिकायत के बाद कोई प्रभावी कार्रवाई जो है वो नहीं हो पाई है। इसके बाद अब मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर भी जो है वो शिकायत दर्ज करवाई गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि शौचालय के आसपास बारिश के कारण कीचड़ और गंदगी का आलम जो है वो बना हुआ है। दीवारों पर सीलन के निशान दिखाई दे रहे हैं और लंबे समय से बंद पड़े शौचालय के बाहर भी सफाई व्यवस्था सवालों के घेरे में है। इसके साथ ही यहाँ सब्जी की दुकानें लगाई जा रही हैं श्रोताओं, जिससे सब्जियों का कचरा और अन्य गंदगी भी शौचालय के बाहर जमा हो रही है। जिस स्थान पर लोगों की सुविधा के लिए सार्वजनिक शौचालय बनाया गया था वही स्थान अब अव्यवस्थित और गंदगी से घिरा नजर आ रहा है। समाजसेवी कुलतार चंद गुलेरिया ने कहा कि सार्वजनिक सुविधा के लिए बनाए गए शौचालय का इतने लंबे समय से बंद रहना गंभीर मामला है। नगर निगम और संबंधित विभाग को मौके पर निरीक्षण कर शौचालय शुरू करवाने के साथ आसपास की सफाई व्यवस्था दुरुस्त करनी चाहिए। वहीं आवेश महाजन ने कहा है कि नगर निगम धर्मशाला को शिकायत और मौके के हालात का तुरंत संज्ञान लेकर कार्रवाई करनी चाहिए। आईटीआई चौक पर लोगों की काफ़ी आवाजाही रहती है और इसी को देखते हुए यहां शौचालय बनाया गया था। उन्होंने शौचालय को जल्द शुरू करवाने और चारों ओर नियमित सफाई करवाने की मांग की है श्रोतों। तो ये कुछ स्थानीय जानकारियां हैं जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं और इसी प्रकार से स्थानीय जानकारियां पहुंचाने की जो जिम्मा हमने उठाया है श्रोतों, इसको हम बखूबी निभाने की जो है वो कोशिश ज़रूर कर रहे हैं और रोज़ाना करते हैं। तो आईटीआई चौक से आप सभी रूबरू हैं, है ना, वहाँ शौचालय जो है वो करीबन 2 साल से बंद पड़ा हुआ है श्रोतों। देखिए आप किस प्रकार से कार्य जो है वो हो रहे हैं। आप सभी बने हुए इस समय आरजे सचिन कपूर के साथ और कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला सुन रहे हैं। आइए लेके चलते हैं आप सभी श्रोतों को इस गीत की।

श्रोतो, ये है वेड़ी गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला आरजे सचिन कपूर के साथ, और आप सभी जुड़े हुए हैं इस समय हमारे साथ। श्रोतो, अन्य जानकारियों के साथ भी आप सभी जो है वो रूबरू हो रहे हैं। इसी प्रकार से रूबरू जो है वो होते रहिए श्रोतो, और रेडियो गुंजन की गूंज के साथ यूं ही बनते रहिए, सवरते रहिए, खिलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। तो आइए कार्यक्रम को आगे लेके चलते हैं श्रोताओं, और अगली कुछ जानकारियों के साथ जो है वो अपने श्रोताओं को रूबरू करवाते हैं श्रोताओं। भूकंप ने 11 साल पहले ही लिख दी थी श्रोताओं नेपाल की कथा। जी बिल्कुल श्रोताओं, ये कुछ एक जानकारियां हैं जो हम आप तक ज़रूर पहुंचाना चाहते हैं श्रोताओं। सबसे पहले तो ये जानकारी मैं चाहता हूँ कि हमारे लोकल तक जो है ये जानकारी ज़रूर पहुँचे कि शाहपुर में पाकिस्तानी झंडा मिलने से जो है वो हड़कंप श्रोतो। शाहपुर क्षेत्र के जो है वो सिंहुआ पंचायत के तहत आने वाले पेड़ जंगल में एक पाकिस्तानी झंडा मिलने से हड़कंप मच गया है श्रोतो। गुब्बारे के सहारे उड़कर आया ये झंडा जंगल में एक चीड़ के पेड़ में फंसा हुआ था श्रोतों। कांगड़ा पुलिस ने जो है वो बहुत तीव्रता से कार्रवाई करते हुए मौके पर पहुंचकर झंडे और उसके साथ बंदी सामग्री को कब्जे में ले लिया है। माना जा रहा है कि ये झंडा जो है वो तेज़ हवाओं के कारण पड़ोसी मुल्क से उड़कर यहां पहुंचा है। जांच पड़ताल के दौरान पुलिस ने ग्राम पंचायत सिंहुआ के प्रधान लव कुमार से फ़ोन पर संपर्क किया। प्रधान उस वक्त अपनी माता के इलाज के लिए टांडा अस्पताल में मौजूद थे। उन्होंने पुलिस को बताया कि स्थानीय निवासी शशि कुमार ने उन्हें जंगल में एक संदिग्ध झंडा फंसे होने की सूचना दी है। झंडे के ऊपरी हिस्से पर सूखी घास की एक झंडी बंधी हुई थी। इसे पूरे घटनाक्रम पर कांगड़ा के SP कुलभूषण वर्मा ने स्थिति को पूरी तरह से स्पष्ट करते हुए एक सकारात्मक संदेश दिया है। पुलिस टीम ने सूचना मिलते ही झंडे को कब्जे में ले लिया है श्रोतों। इसी प्रकार से जानकारियों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा श्रोतों। और नेपाल की मैं बात आपसे साझा कर रहा था, तो नेपाल में साल 2015 में 7.9 की तीव्रता से आए भूकंप ने वर्तमान त्रासदी की पट कथा जो है श्रोतों वो लिख दी थी श्रोतों। भूकंप के कारण ही जो है वो लंगटंग ग्लेशियर कमजोर हुआ और इसके दक्षिणी हिस्से से टूटने के कारण उसी दौर में जो है वो दो गांवों का अस्तित्व मिट गया था श्रोतों। जबकि अब इसी ग्लेशियर को उत्तरी हिस्सा टूटने से त्रासदी आई है श्रोतों। ये खुलासा मंडी ITI के शोध में हुआ। जानकारियों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, पिटारा यूं ही खुलता रहेगा। आप सभी बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा रेडियो गुंजन की इसी गूंज के साथ। और श्रोतों, आप सभी बने हुए इस समय आरजे सचिन कपूर के साथ कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला जो है वो सुन रहे हैं। एक और विशेष जानकारी जो है वो हम अब तक पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन श्रोतों उस विशेष जानकारी की ओर हम ज़रूर आपको लेके चलेंगे, लेकिन इस प्यारे से गीत के बाद।

शोतो एफ एम बैंड 91.2 MHz पर रेडी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और श्रोतों कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला सुन रहे हैं। प्रकृति का ख्याल जो है वो ज़रूर रखिए श्रोतों, जब भी सड़क पर गाड़ी चलाते हैं तो बहुत सी बातों का ध्यान जो है वो ज़रूर रखिए श्रोतों, ओवर स्पीड ना करें, मोड़ों पर जो है वो हॉर्न ज़रूर बजाए श्रोतों, ओवरटेक मोड़ों पर ना करें, इन कुछ एक खास बातों का ध्यान ज़रूर रखें श्रोतों, माँ बाप की सेवा जो है वो ज़रूर करें, बहुत ज़रूरी है श्रोतों। लाइफ में अगर आप सच में दिल में सुकून चाहते हैं ना, चैन चाहते हैं, तो ज़रूर माँ बाप की सेवा ज़रूर करें श्रोतों, बहुत अहम है। ठीक है, आपको पैसा कमाना भी ज़रूरी है, अच्छी लाइफस्टाइल जीना भी ज़रूरी है, लेकिन माँ बाप की सेवा करना भी उतना ही ज़रूरी है श्रोतों। सो माँ बाप की सेवा जो है वो अक्सर करें, रोज करें, हर रोज करें।

102 FM बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और हाँ वक्त हो चुका है रेडी गुंजन धर्मशाला में एक छोटे से अंतराल का। मिलते हैं श्रोतों अंतराल के बाद, बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा रेडी गुंजन की गूंज के साथ।

0: क्या कर रहे हो?
1: डॉक्टर मुन्नी सही तो है, हमारा मुंह है हमारी सेहत का आईना। मुंह को स्वस्थ रखने से दांत और मसूड़ों के साथ पूरा शरीर स्वस्थ रहता है। मुंह में पायरिया होने से कमजोर नवजात शिशु, मधुमेह, दिल की बीमारी और मस्तिष्क आघात होने की संभावना बढ़ जाती है। मुंह का स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए दिन में 2 बार ब्रश करें और खाने के बाद कुल्ला।
2: अगर दांत में दर्द हो या कोई भी तकलीफ हो तो तुरंत दांतों के डॉक्टर से मिलें,
1: क्योंकि स्वस्थ मुंह

0: गोरिया
1: आकर
0: गोरिया गोरिया आकर आ गोरिया
2: हटो हटो हटो हटो एले गोरिया।
3: प्लास्टिक गोरिया जैसे नादान जानवरों की जान ले सकता है। आप भी छोटी सी शुरुआत कीजिए, प्लास्टिक को अलग डस्टबिन में डाल के शुरू करें एक छोटी सी अच्छाई।
4: भगवान श्री राम कहते हैं, रूप और रुपया पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि गरीबी और बीमारी कभी पूछकर नहीं आती। इसलिए हमेशा विनम्र रहो और जरूरतमंद की मदद करो।
5: कैसे? सड़क सुरक्षा का सबसे पहला और सबसे जरूरी पार्ट है कर्तव्य। ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने साथ साथ दूसरों के बारे में भी सोचें। अरे हाँ भाई साहब, अगर सड़क के बीचों बीच इस तरह से ट्रक छोड़ेंगे और चले जाएंगे तो पीछे से स्पीड में आ रही गाड़ी जो है ठोक देगी ना आपको। ये हमारा कर्तव्य है कि हम इस निर्धारित पार्किंग स्पॉट में ही गाड़ी को लगाए, और अगर किसी कारण बीच सड़क में आपकी गाड़ी खराब हो जाती है तो हमेशा पार्किंग लाइट ऑन करें और वार्निंग ट्रायंगल गाड़ी से थोड़ी दूर जाकर के लग दें, ताकि आने वाला जो ट्रैफिक है उसे पता चले कि सामने गाड़ी रुकी हुई है।
6: समझ गए सर।
5: तो याद रखना, कैसे कर्तव्य निभाएंगे तभी तो दूसरों से अपेक्षा रख पाएंगे।
7: चाय मांगी थी, क्या है ये?
8: ग्रीन टी, आपसे यही मिलेगी।
7: भाई मम्मी की इन्फ्लुएंसर वो मिसेस शर्मा ऊट पटांग टिप्स देती रहती है, झेलना हमें पड़ता है।
9: अब क्या देख रहे हो पापा?
7: तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझ कर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा।
9: किससे?
7: अरे एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है।
9: पापा इन वीडियोस पे ना जाए, अपना रिसर्च खुद करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा।
8: ग्रीन टी नुकसान तो नहीं करती।
10: सोलह सोमवार के व्रत में पता नहीं कौन सी ऐसी गलती हो गई मुझसे जो तुम्हारे जैसा पति मिल गया मुझे।
11: अरे किस्मत वाली हो तुम, तुम्हें अपनी गलती तो पता है, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरे से ऐसी कौन सी गलती होगी जो मेरी तुमसे शादी हुई।

0: श्रोता एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर वेडी गुंजन धर्मशाला, आप सभी ने ट्यून किया है और अब वक्त हो चुका है वेडी गुंजन धर्मशाला में प्रादेशिक समाचारों का।
1: राज्य सरकार प्रदेश में कैंसर देखभाल संस्थानों को मजबूत करने पर 800 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। इसके अलावा एम्स दिल्ली की तर्ज पर अत्याधुनिक मशीनें और चिकित्सा उपकरण खरीदे जा रहे हैं। इस बीच मुख्यमंत्री आज से नई दिल्ली के दौरे पर हैं। इस दौरान वे विभिन्न केंद्रीय मंत्रियों के साथ प्रदेश हित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा राज्य में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ चर्चा कर सकते हैं। मुख्यमंत्री का 9 सितंबर को शिमला लौटने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासन के 25 वर्ष पूरे होने को लेकर भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर सेवा संकल्प अभियान चलाएगी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने आज शिमला में बताया कि राज्य में ये अभियान 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलाया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस दौरान रक्तदान शिविर लगाए जाएंगे और सामाजिक सेवा से जुड़े विभिन्न कार्य किए जाएंगे। बिंदल ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने 12 साल गुजरात के मुख्यमंत्री और 13 साल भारत के प्रधानमंत्री के रूप में देश को विकास का मॉडल दिया है।
2: 17, 18, 19 और 20 चार दिन में हिमाचल प्रदेश में सब जगह रक्तदान शिविर लगेंगे और जितने ब्लड बैंक्स की कैपेसिटी 100% कैपेसिटी फुल करेंगे। स्कूली बच्चों को लेकर विकसित भारत की कल्पना, उसके ऊपर पेंटिंग कंपटीशन, डिबेट, आंगनबाड़ी वर्कर्स को सम्मानित करना, 25 साल सेवा समर्पण के तो 25 प्रकार के सेवा के अभियान। भारतीय जनता पार्टी हर मंडल में हर पोलिंग बूथ पर अलग अलग प्रकार से सेवा के अभियान।
1: राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने आज रिकांगपियो में परियोजना सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की और किन्नौर जिले में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि जनजातीय विकास विभाग के तहत किन्नौर जिले में 78 करोड़ 22 लाख रुपए की राशि से अनेक विकास कार्य किए जा रहे हैं। नेगी ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम के तहत भी विकास कार्य चल रहे हैं। उन्होंने बागवानी, कृषि, स्वास्थ्य, पशुपालन और सामाजिक कल्याण विभाग को राज्य सरकार की योजनाओं का पंचायत स्तर तक व्यापक प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए। मंडी जिले में किरतपुर मनाली फोर लेन सड़क पर दियोड़ हनोगी के बीच बनी सुरंग का आज सफलतापूर्वक ट्रायल किया गया। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने इस मार्ग को अगले 4 दिनों में खोलने को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे मंडी जिला संवाददाता।
3: कुल्लू मनाली जाने वाले पर्यटकों और आम जनता के लिए राहत की खबर है। पंडोर टकोली बाईपास परियोजना के तहत आज देवड़ हनोगी टनल का सफल परीक्षण किया गया। इसके साथ ही अब इस टनल को अगले 4 दिनों में यातायात के लिए खोलने की तैयारी है। NHAI बोर्ड सदस्य विपनी शर्मा की मौजूदगी में टनल का ट्रायल रन किया गया। करीब 2600 करोड़ रुपए की इस परियोजना में कुल 10 टनल शामिल है। देवड़ हनोगी सेक्शन में 4 टनल है जिसमें से फिलहाल 2 को यातायात के लिए खोला जाएगा। खोतीनाला के पास 45 मीटर ऊंचा और 140 मीटर लंबा पुल भी इस मार्ग का हिस्सा है। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी आज इस मौके पर पहुंचे और टनल का निरीक्षण किया। आकाशवाणी समाचारों के लिए मंडी से मैं मुनीश सूद।
1: ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, @AIR_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। बाकी समाचार अंतराल के बाद।
4: आयुष्मान भारत योजना के तहत सरकार ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और स्वास्थ्य उपकेंद्रों में शुरू किए हैं आयुष्मान आरोग्य मंदिर, जहां साधारण बीमारियों के साथ ब्लड प्रेशर, शुगर, कैंसर जैसी बीमारियों की जांच और निशुल्क इलाज भी होगा।
5: हर केंद्र पर टेलीमेडिसिन सुविधा से उपलब्ध होगा विशेषज्ञों का परामर्श, साथ ही बेहतर स्वास्थ्य के लिए होगा योगा और व्यायाम प्रशिक्षण भी।
4: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
1: प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। बाकी समाचारों में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना के तहत शिमला जिले को वेस्ट परफॉर्मेंस का अवार्ड मिला है। नई दिल्ली में हुए एक समारोह में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की ओर से जिला

0: नोडल अधिकारी संजय कंवर को ये पुरस्कार प्रदान किया गया। उपायुक्त अनुपम कश्यप ने इस कार्य से जुड़ी पूरी टीम को बधाई देते हुए कहा कि ये उपलब्धि प्रदेश में सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को बढ़ावा देने व स्थानीय उद्यमियों को योजना का लाभ पहुंचाने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को रेखांकित करती है। सांसद कंगना रणौत ने केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सभी पात्र लोगों तक पहुँचाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने आज कुल्लू में जिला विकास समन्वय व अनुश्रवण समिति दिशा की बैठक की अध्यक्षता कर जिले में चल रही केंद्र प्रायोजित विकास परियोजनाओं की समीक्षा की। कंगना रणौत ने अधिकारियों को जिले के स्थानीय व प्राकृतिक उत्पादों को देश विदेश के बाजारों तक पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का प्रभावी उपयोग करने के निर्देश भी दिए।
1: ज्यादा तो जो हमारे केंद्र की इतनी योजनाएं हैं, चाहे वो स्कॉलरशिप्स हो, चाहे वो कोई एड देना हो या सब्सिडीज हो या उसके बाद वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, कितनी स्कीम्स हैं और हमारे लोगों में इतना टैलेंट है। तो यही चीज को लेकर मैंने इन्हें कंपेल भी किया अधिकारियों को कि आप लोगों के हाथ में ही हिमाचल का जो है फ्यूचर है। जितना बजट दिया है उसका 80% लगभग हो चुका है इम्प्लीमेंट, जितना बेहतर हो सके 100% करने की कोशिश करनी।
0: राज्य पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति ने पेंशनरों की लंबित देनदारियों को लेकर राज्य सरकार पर लोगों को गुमराह करने और विधानसभा में गलत आंकड़े प्रस्तुत करने का आरोप लगाया है। समिति के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश ठाकुर ने आज धर्मशाला में कहा कि मुख्यमंत्री ने मॉनसून सत्र के दौरान विधानसभा में बताया कि 75 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनरों के एरियर, लीव एनकैशमेंट और ग्रेच्युटी सहित अन्य बकाया राशि का भुगतान कर दिया गया है, जो पूरी तरह भ्रामक है।
2: माननीय मुख्यमंत्री महोदय हिमाचल प्रदेश, उन्होंने कहा है कि मैंने और मेरी सरकार ने 57 साल के ऊपर सभी पेंशनरों को उनके बकाया राशि की अदायगी जो है वो कर दी गई है, जबकि ये बिल्कुल सत्य से परे है। ऐसी कोई भी नोटिफिकेशन अधिसूचना जो है सरकार की तरफ से नहीं की गई है कि इस पेंशनरों को उनका पूरा एरियर जिसमें लीव इन्कैशमेंट, ग्रेच्युटी एंड कम्यूटेशन की अदायगी की गई हो, सरासर गलत है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ये कह रहे हैं कि 55% जो है क्लास 3 की देनदारियां दी गई हैं और क्लास 1 और क्लास 2 की 30% जो है वो अदायगी जो है हो चुकी है, और एक जनता को गुमराह करने के लिए ये जो बयान जो है दिया गया।
0: नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आज कुल्लू में बंजार विधानसभा क्षेत्र के पंचायती राज संस्थाओं के नव निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के सम्मान समारोह में शिरकत की। उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों से दलगत राजनीति से ऊपर उठकर लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए काम करने का आह्वान किया। जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं को कमजोर करने का प्रयास किया और जानबूझकर चुनाव करवाने में देरी की। उन्होंने दावा किया कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में लोगों ने भाजपा समर्थित प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान किया है और अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव में भी भाजपा प्रचंड जीत हासिल करेगी। राज्य अटॉर्नी कल्याण एसोसिएशन की एक बैठक बिलासपुर में हुई, जिसमें एसोसिएशन के नए पदाधिकारियों और कार्यकारी निकाय का गठन किया गया। इसमें जिला अटॉर्नी कांगड़ा NS चौहान को सलाहकार, जिला अटॉर्नी गृह राज्य सचिवालय नवीन चंद्र को वरिष्ठ उपाध्यक्ष और सहायक जिला अटॉर्नी स्वास्थ्य शिमला रोहिन बिष्ट को सचिव चुना गया। इसके अलावा भी अन्य सदस्यों का चुनाव किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। चिकित्सा अधिकारियों को NPA देने पर विचार करेगी राज्य सरकार। कैंसर देखभाल संस्थानों को मजबूत करने पर 8 करोड़ रुपए होंगे खर्च। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज से दिल्ली दौरे पर, प्रदेश हित से जुड़े मुद्दों पर केंद्रीय मंत्रियों के साथ करेंगे चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासन के 25 वर्ष पूरे होने को लेकर भाजपा 17 सितम्बर से चलाएगी सेवा संकल्प अभियान। किरतपुर मनाली 4 लेन सड़क पर देवड़ हनोगी के बीच बनी सुरंग का सफल ट्रायल पूरा, अगले 4 दिनों में सड़क खोलने की तैयारी। और प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना के बेहतर संचालन के लिए शिमला जिले को मिला राष्ट्रीय पुरस्कार। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार
3: श्रोता, FM बैंड 91.2 MHz पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और अब वक्त हो गया है RJ सचिन कपूर को टाटा बाय बाय कहने का, यानी कि मुझे टाटा बाय बाय कहने का। आप सभी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और RJ सचिन कपूर को दीजिए इजाज़त। नमस्ते धर्मशाला।

0: हेलो।
1: अरे ये क्या कर रहे हो?
2: डॉक्टर मुन्नी सही तो है, हमारा मुंह है हमारी सेहत का आईना। मुंह को स्वस्थ रखने से दांत और मसूड़ों के साथ पूरा शरीर स्वस्थ रहता है। मुंह में पायरिया होने से कमजोर नवजात शिशु, मधुमेह, दिल की बीमारी और मस्तिष्क आघात होने की संभावना बढ़ जाती है। मुंह का स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए दिन में 2 बार ब्रश करें और खाने के बाद कुल्ला।
3: अगर दांत में दर्द हो या कोई भी तकलीफ हो तो तुरंत दांतों के डॉक्टर से मिलें,
2: क्योंकि स्वस्थ मुंह है।

0: गोरिया
1: आकर
0: गोरिया गोरिया आकर आ गोरिया
2: हटो हटो हटो हटो एले गोरिया।
3: प्लास्टिक गोरिया जैसे नादान जानवरों की जान ले सकता है। आप भी छोटी सी शुरुआत कीजिए, प्लास्टिक को अलग डस्टबिन में डाल के शुरू करें एक छोटी सी अच्छाई।
4: भगवान श्री राम कहते हैं, रूप और रुपया पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि गरीबी और बीमारी कभी पूछकर नहीं आती। इसलिए हमेशा विनम्र रहो और जरूरतमंद की मदद करो।
5: कैसे?
6: कर्तव्य।
5: सड़क सुरक्षा का सबसे पहला और सबसे जरूरी पार्ट है कर्तव्य। ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने साथ साथ दूसरों के बारे में भी सोचें। अरे हाँ भाई साहब।

नमस्कार दोस्तों, रेडियो गुंजन धर्मशाला से अब आप सभी सुनेंगे आज का ये न्यूज बुलेटिन। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों की हेडलाइंस पे। हिमाचल में प्राकृतिक जल स्रोतों के संरक्षण के लिए लागू होगा स्प्रिंग शेड मैनेजमेंट मॉडल। वैज्ञानिक मैपिंग के जरिए चिन्हित किए जाएंगे रिचार्ज जोन। प्रदेश की पंचायतों में कार्यरत सिलाई अध्यापिकाओं के नियमितीकरण का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं। 25 साल से सेवाएं दे रही हैं हजारों अध्यापिकाएं। हिमाचल के 44 इंजीनियरिंग छात्र जापान में सीखेंगे अंतरिक्ष तकनीक और रोबोटिक्स। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वर्चुअली दी शुभकामनाएं। सरकारी सेवाओं में पूर्व सैनिकों को 15% आरक्षण। सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से लाखों पूर्व सैनिक लाभान्वित। बाल विवाह की

0: खिलाफ 27 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने का प्रस्ताव। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव का समर्थन किया। गांवों में दूध उत्पादन बढ़ाने और पशुपालकों की आय बढ़ाने पर जोर। सरकार ने दूध खरीद के दाम बढ़ाने की दिशा में उठाए कदम। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में पारंपरिक प्राकृतिक जल स्रोतों जैसे चश्मों, बावड़ियों और नौड़ों को वैज्ञानिक तरीके से मजबूत करने की दिशा में सरकार काम कर रही है। प्रदेश में प्राकृतिक जल स्रोतों की संरक्षण के लिए स्प्रिंग शेड मैनेजमेंट मॉडल लागू किया जाएगा। इसके तहत जल स्रोतों की वैज्ञानिक मैपिंग की जाएगी और उनकी रिचार्ज जोन की पहचान कर उन्हें संरक्षित किया जाएगा। समाचार के अनुसार मानसून के दौरान बादल फटने, भूस्खलन और भारी बारिश जैसी प्राकृतिक घटनाओं से जल स्रोतों को नुकसान पहुँचता है। वहीं पाइपलाइन टूटने और जल स्रोतों में गाद भरने से भी पेयजल आपूर्ति प्रभावित होती है। जल स्रोतों के संरक्षण के लिए स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा और पंचायतों की भी इसमें भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। प्रशिक्षित युवा और कर्मचारी जल स्रोतों के प्रवाह तथा उनकी स्थिति की निगरानी करेंगे। जल स्रोतों की डिस्चार्ज में लगातार कमी आने पर समय रहते संरक्षण के उपाय शुरू किए जा सकेंगे। योजना के तहत जल स्रोतों के आसपास स्वच्छता बनाए रखने, कूड़ा कचरा और गंदा पानी पहुंचने से रोकने तथा संरक्षण कार्यों की निगरानी स्थानीय स्तर पर करने की व्यवस्था भी होगी। सरकार का उद्देश्य केवल जल स्रोतों का संरक्षण करना नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता बनाए रखना और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा करना भी है। हिमाचल प्रदेश की ग्राम पंचायतों में कार्यरत 1493 सिलाई अध्यापिकाओं के संबंध में स्थिति स्पष्ट हुई है। वर्तमान में 1481 अध्यापिकाएं 508 रुपए प्रतिदिन की पारिश्रमिक पर दैनिक आधार पर कार्यरत हैं, जबकि 12 अनुबंध अध्यापिकाओं का मानदेय 1 अप्रैल 2026 से बढ़ाकर 10,500 रुपए प्रतिमाह किया जा रहा है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि 25 वर्ष सेवा पर नियमितीकरण का फिलहाल कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, यद्यपि पंचायत सचिव भर्ती में इनके लिए निर्धारित आरक्षण का प्रावधान खुला है। प्रदेश की 44 मेधावी इंजीनियरिंग विद्यार्थी अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक भ्रमण के तहत जापान में अंतरिक्ष तकनीक और रोबोटिक्स की बारीकियां सीखने रवाना हो रहे हैं। इस दल में 24 छात्र और 20 छात्राएं शामिल हैं, जिनका चयन 5 इंजीनियरिंग कॉलेजों के 650 आवेदकों में से मेरिट के आधार पर किया गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विद्यार्थियों से वर्चुअल संवाद कर उन्हें उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी।
1: पूर्व सैनिकों और युद्ध विधवाओं के कल्याण के लिए सरकार ने कल्याणकारी योजनाओं को गति दी है। युद्ध विधवाओं की बेटियों के विवाह हेतु 50,000 रुपये की सहायता का प्रावधान है और प्रदेश में 1252 वीरता पुरस्कार दर्ज किए गए हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पशुपालकों की आय संवर्धन हेतु ऐतिहासिक कदम उठाते हुए गाय के दूध का समर्थन मूल्य 61 रुपये और भैंस के दूध का 71 रुपये प्रति लीटर तय किया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती की दिशा में मील का पत्थर बताया। संयुक्त राष्ट्र महासभा में बाल विवाह रोकथाम संबंधी वैश्विक प्रस्ताव को भारत का पुरजोर समर्थन प्राप्त हुआ है। बच्चों के अधिकारों, स्वास्थ्य और बालिका शिक्षा की संरक्षण के लिए इस पहल को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है।
2: तो ये थी अब तक की प्रमुख खबरें। एक बार फिर मुख्य समाचार। हिमाचल में प्राकृतिक जल स्रोतों के संरक्षण के लिए लागू होगा स्प्रिंग शेड मैनेजमेंट मॉडल। 25 साल से सेवाएं दे रही सिलाई अध्यापिकाओं के नियमितीकरण का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं। प्रदेश के 44 इंजीनियरिंग विद्यार्थी जापान में सीखेंगे अंतरिक्ष तकनीक और रोबोटिक्स। सरकारी सेवाओं में पूर्व सैनिकों को 15% आरक्षण का प्रावधान। गांवों में दूध उत्पादन बढ़ाने और पशुपालकों की आय बढ़ाने पर सरकार का जोर। बाल विवाह के खिलाफ 27 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने का प्रस्ताव। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। गुंजन रेडियो 91.2 FM सुनने के लिए धन्यवाद।

0: अरे ये क्या कर रहे हो?
1: डॉक्टर मुन्नी सही तो है, हमारा मुंह है हमारी सेहत का आईना। मुंह को स्वस्थ रखने से दांत और मसूड़ों के साथ पूरा शरीर स्वस्थ रहता है। मुंह में पायरिया होने से कमजोर नवजात शिशु, मधुमेह, दिल की बीमारी और मस्तिष्क आघात होने की संभावना बढ़ जाती है। मुंह का स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए दिन में 2 बार ब्रश करें और खाने के बाद कुल्ला।
2: अगर दांत में दर्द हो या कोई भी तकलीफ हो तो तुरंत दांतों के डॉक्टर से मिलें,
1: क्योंकि स्वस्थ मुंह है।

0: गोरिया आकर गोरिया गोरिया आकर आ
1: गोरिया
2: गोरिया।
3: प्लास्टिक गोरिया जैसे नादान जानवरों की जान ले सकता है। आप भी छोटी सी शुरुआत कीजिए, प्लास्टिक को अलग डस्टबिन में डाल के शुरू करें एक छोटी सी अच्छाई।
4: भगवान श्री राम कहते हैं, रूप और रुपया पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि गरीबी और बीमारी कभी पूछकर नहीं आती। इसलिए हमेशा विनम्र रहो और जरूरतमंद की मदद करो।
5: कैसे
6: कर्तव्य?
5: सड़क सुरक्षा का सबसे पहला और सबसे जरूरी पार्ट है कर्तव्य। ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने साथ साथ दूसरों के बारे में भी सोचें। अरे हाँ भाई साहब, अगर सड़क के बीचों बीच इस तरह से ट्रक छोड़ेंगे और चले जाएंगे तो पीछे से स्पीड में आ रही गाड़ी जो है ठोक देगी ना आपको। ये हमारा कर्तव्य है कि हम इस निर्धारित पार्किंग स्पॉट में ही गाड़ी को लगाएं, और अगर किसी कारण बीच सड़क में आपकी गाड़ी खराब हो जाती है तो हमेशा पार्किंग लाइट ऑन करें और वार्निंग ट्रायंगल गाड़ी से थोड़ी दूर जाकर के लगे, ताकि आने वाला जो ट्रैफिक है उसे पता चले कि सामने गाड़ी रुकी हुई है।
7: समझ गए सर।
5: तो याद रखना, कैसे कर्तव्य निभाएंगे तभी तो दूसरों से अपेक्षा रख पाएंगे।
8: चाय मांगी थी, क्या है ये?
9: ग्रीन टी, आपसे यही मिलेगी।
8: भाई मम्मी की इन्फ्लुएंसर वो मिसेस शर्मा ऊट पटांग टिप्स देती रहती है, झेलना हमें पड़ता है।
10: अब क्या देख रहे हो पापा?
8: तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ।
10: किससे?
8: अरे एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है।
10: पापा इन वीडियोस पे ना जाए, अपना रिसर्च खुद करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा।
9: ग्रीन टी नुकसान तो नहीं करती।
11: सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर।
12: 16 सोमवार के व्रत में पता नहीं कौन सी ऐसी गलती हो गई मुझसे जो तुम्हारे जैसा पति मिल गया मुझे।
13: अरे किस्मत वाली हो तुम, तुम्हें अपनी गलती तो पता है, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरे से ऐसी कौन सी गलती होगी जो मेरी तुमसे शादी हुई।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर हम बोल रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से। श्रोताओं, कार्यक्रम है गीत सुहाने नए पुराने, और आज इस कार्यक्रम में आपके साथ हूँ मैं, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

गीत सुहाने नए पुराने, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं मेरे साथ। मैं हूँ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति और आप हमें सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो, रेडियो गुंजन धर्मशाला। फ्रीक्वेंसी है 91.2 FM। गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम में आपके साथ हूँ मैं, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति।

अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहानी नई पुरानी 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

गीत सुहाने नए पुराने, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं मेरे साथ। मैं हूँ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति और आप हमें सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहानी नई पुरानी 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

गीत सुहाने नए पुराने 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं ये कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज आपकी रेडियो होस्ट हूँ मैं ज्योति पठानिया।

0: अरे ये क्या कर रहे हो?
1: डॉक्टर मुन्नी सही तो है, हमारा मुंह है हमारी सेहत का आईना। मुंह को स्वस्थ रखने से दांत और मसूड़ों के साथ पूरा शरीर स्वस्थ रहता है। मुंह में पायरिया होने से कमजोर नवजात शिशु, मधुमेह, दिल की बीमारी और मस्तिष्क आघात होने की संभावना बढ़ जाती है। मुंह का स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए दिन में 2 बार ब्रश करें और खाने के बाद कुल्ला।
2: अगर दांत में दर्द हो या कोई भी तकलीफ हो तो तुरंत दांतों के डॉक्टर से मिलें,
1: क्योंकि स्वस्थ मुंह है।

0: गोरिया आकर, गोरिया गोरिया आकर, आ
1: गोरिया
2: हटो हटो हटो हटो एले गोरिया।
3: प्लास्टिक गोरिया जैसे नादान जानवरों की जान ले सकता है। आप भी छोटी सी शुरुआत कीजिए, प्लास्टिक को अलग डस्टबिन में डाल के शुरू करें एक छोटी सी अच्छाई।
4: भगवान श्री राम कहते हैं, रूप और रुपया पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि गरीबी और बीमारी कभी पूछकर नहीं आती। इसलिए हमेशा विनम्र रहो और जरूरतमंद की मदद करो।
5: कैसे?
6: कर्तव्य।
5: सड़क सुरक्षा का सबसे पहला और सबसे जरूरी पार्ट है कर्तव्य। ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने साथ साथ दूसरों के बारे में भी सोचें। अरे हाँ भाई साहब, अगर सड़क के बीचों बीच इस तरह से ट्रक छोड़ेंगे और चले जाएंगे तो पीछे से स्पीड में आ रही गाड़ी जो है ठोक देगी ना आपको। ये हमारा कर्तव्य है कि हम इस निर्धारित पार्किंग स्पॉट में ही गाड़ी को लगाएं। और अगर किसी कारण बीच सड़क में आपकी गाड़ी खराब हो जाती है तो हमेशा पार्किंग लाइट ऑन करें और वार्निंग ट्रायंगल गाड़ी से थोड़ी दूर जाकर के लग दें, ताकि आने वाला जो ट्रैफिक है उसे पता चले कि सामने गाड़ी रुकी हुई है।
7: समझ गए सर।
5: तो याद रखना, कैसे कर्तव्य निभाएंगे तभी तो दूसरों से अपेक्षा रख पाएंगे।
8: चाय मांगी थी, क्या है ये?
9: ग्रीन टी, आपसे यही मिलेगी।
8: भाई मम्मी की इन्फ्लुएंसर वो मिसेस शर्मा ऊट पटांग टिप्स देती रहती है, झेलना हमें पड़ता है।
10: अब क्या देख रहे हो पापा?
8: तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझ कर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ।
10: किससे?
8: अरे एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है।
10: पापा इन वीडियोस पे ना जाए, अपना रिसर्च खुद करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा।
9: ग्रीन टी नुकसान तो नहीं करती।
11: के व्रत में पता नहीं कौन सी ऐसी गलती हो गई मुझसे जो तुम्हारे जैसा पति मिल गया मुझे।
12: अरे किस्मत वाली हो तुम, तुम्हें अपनी गलती तो पता है, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरे से ऐसी कौन सी गलती होगी जो मेरी तुमसे शादी हुई।

किया तो कीजिए साहब। माना जनाब ने पुकारा नहीं, क्या मेरा साथ भी गवारा नहीं। मुक्तम में बन के चल दिए तन के, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है, वल्ला

0: राहुल, ये प्यार कैसे होता है?
1: प्यार प्यार तो बस हो जाता है।

92.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो आइए श्रोताओं, सुनते हैं सुंदरकांड। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।